मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन माह की नवीं तिथि, तदनुसार 1 अक्टूबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में 5:57 होने को हैं। आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मिडवीप 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य

रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडी वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कहते हैं ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर उस मन में विराजमान है जहाँ करुणा, प्रेम और मानवता का वास है। हम उस परम शक्ति को नमन करें जो हर इंसान में अपनी एक झलक दिखाती है।

जब भक्ति में डूबता है मन तो हर तरफ प्रभु का ही स्वरूप दिखाई देने लगता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारें उस करुणामयी शक्ति को जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं।

गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा दिखाने वाले प्रकाश पुंज हैं। गुरु का आशीर्वाद जीवन में विश्वास, संस्कार और नई राह का संचार करते हैं। गुरु को नारायण का स्वरूप माना गया है क्योंकि गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं।

जिसके सिर पर प्रभु का हाथ हो उसे जीवन की राह में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु तो उन लोगों की भी सुध लेते हैं जिनका इस संसार में अपना कोई नहीं होता।

0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
0: 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीटर वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है विचार विंदु कार्यक्रम, आइए सुनते हैं लाल बहादुर शास्त्री के विचार।
5: ये एक आज एक पॉलिटिक्स की बात हर जगह होना, चाहे वो सीट ऑफ लर्निंग हो और चाहे दूसरी जगह, अगर हम सियासत को राजनीति को हर जगह ले आएंगे और ले जाएंगे, तब फिर हमारी स्टडीज, हमारा एजुकेशन, हमारा स्पेशलाइजेशन एक सभी नुकसान उठाएगा, सभी को धक्का लगेगा। इस वजह से मैं बहुत नम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है कभी झगड़े हो जाते हैं, कभी ज्यादती भी हो जाती है, लेकिन ये जो एक तरीका हमारा आज एक लड़ने का है विद्यार्थियों की तरफ से, एक एक एक एक डिफाइंस का, ये बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बात हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छी नहीं। ये एक ठीक है, गुस्ताखी न हो, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापकगण, ये भी जहाँ तक के पॉलिटिकल थियोरीज वगैरह की बात, जहाँ तक एकेडमिक स्टडीज की बात, जहाँ तक उस तरह के नॉलेज और ज्ञान एक विद्यार्थियों को देने की बात, उसमें इतराज नहीं है, वो ज़रूर दें। लेकिन अगर कभी उनकी तरफ से, यानी वो भी एक आइडियोलॉजिकल माइंडेड हो जाएं, ख़ास एक विचारधारा को एक पक्के तरीके से मानकर और उसको विद्यार्थियों में ले जाने की कोशिश करें, तो मेरी एक बहुत ही नम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये बात ठीक नहीं है, हमारे अध्यापकों के लिए भी और हमारे टीचर्स के लिए भी। उनका तो आज जैसा मैंने कहा वो ठीक, एक अपनी ज़रूर सब बातों को, सभी आइडियोलॉजीज को, पॉलिटिकल साइंस को जो पढ़ाते हैं और एक जनरल इंटरेस्ट में, ठीक है सब उसको जानें, सब पढ़ाएं, सब समझें, लेकिन ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्टडीज का वक्त किसी तरह की एक विचारधारा को घुसाकर उनके दिमाग में बैठा देना, ये फिर उस फ्रीडम, आज़ादी, डेमोक्रेसी के जो सारा हमारा प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाता है। एजुकेशन के, शिक्षा के काल में एक आज़ाद यूनिवर्सिटी, आज़ाद ढंग से सोचे, आज़ाद ढंग से काम करे, विद्यार्थी उसके आज़ाद हों, जो बात चाहें अपने पढ़ने के बाद, जो रास्ता अख्तियार करना चाहें अख्तियार करें, लेकिन एक पढ़ाई के ज़माने में इन बातों में पढ़ना, वो बात उनके लिए अच्छी नहीं। आखिर आज हमारे सारे नेशन के, राष्ट्र के फ्यूचर हैं, भविष्य हैं, सारा भविष्य उनके हाथ में है, उन्हें बनना

0: अभी आप महेंद्र कपूर, जगजीत सिंह, देवाशीष दासगुप्ता और लक्ष्मी शंकर के स्वर में ये भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।

0: एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें बनना है और दूसरे बड़े बड़े जो भी प्रोफेशन या मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सभी, तो ऐसी हालत में आज उनको एक इस तरह से एक स्पेशलाइज तरीके पर यहां से निकालना कि जिससे वो अपने काम को खूबसूरती से कर सकें और देश के, तो एक उसमें बड़ी बात होगी। तो मेरा इतने ही कहना है कि मेहरबानी करके आप अपने एक इस तरह की पॉलिटिक्स जो आज हम पॉलिटिशियंस करते हैं, हम करते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े भी करते हैं, आप उस पर नाराज भी होते हैं, हंसते भी हैं लोग, ये सब हम करें, डिमॉन्स्ट्रेशन भी करें, प्रोसेशंस भी निकालें, लेकिन ये क्यों नहीं मुमकिन है कि आज यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के जो भी डिस्प्यूट्स हैं सब एक शांति से सुलह से तय होंगे। ये क्यों नहीं है कि इरादा एक पक्का कर लें, चाहे वे स्टूडेंट्स हों और चाहे वे यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज हों। कभी कभी खींचातानी हो, मगर एक इस तरह से एक लड़ाई और झगड़े की बात होना एक ये मुनासिब और अच्छी बात नहीं लगती।
1: अभी आप सुन रहे थे लाल बहादुर शास्त्री के विचार। विचार बिंदु कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं इस पखवाड़े के कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर विनोवर शर्मा से अनिल कुमार यादव की बातचीत।

0: देखा भैया, खेती किसानी में समय समय पे हम अपने पंच भैया हरिन के जौन बतावे बदे नई नई तकनीक के जानकारी देवे बदे अपने स्टूडियो में समय समय पे जौन है जानकार भैया लोगन के बुलावत रही थे। तो वहीं में इस पखवाड़े में कृषि कार्य का बाटे यह पर जौन है डॉक्टर विनोबर शर्मा भैया जौन है जानकारी दी हैं, जौन की भैया खेती किसानी के जानकार हैं। तो भैया आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। डॉक्टर साहब, ये बतावें कि इस पखवाड़े में कृषि कार्य जैसे अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा बा, तो एहमन किसान भैया हरे कौन कौन खेती किसानी में का कह सकत हैं, एकरे बारे में बतावें।
1: नमस्कार किसान भाई। इस समय खरीफ की फसल चल रही है और इसमें धान की फसल मुख्य है। धान की फसल में अर्ली जो वैरायटी है अगेती जात की धान की फसल तैयार हो रही होगी, उसकी कटाई का समय आ रहा है। और उसके बाद मध्यम और देर से बोने वाली फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं। तो इन रोगों के में जैसे धान में जीवाणु झुलसा रोग, इसमें पत्तियों के नोक और किनारे सूखने लगते हैं।
0: जी,
1: इसकी रोकथाम के लिए पानी निकालकर एग्रीमाइसिन 75 ग्राम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम या 50 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। इसी के साथ तना छेदक कीट लगते हैं इसमें, जिसके आक्रमण से सूखी बाल बाहर निकलती है, जिसे सफ़ेद बाल भी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइकोग्राम नामक परजीवी को 8 से 10 दिन के अंतराल पर छोड़ना चाहिए। क्लोरोपारिफास 20 EC 1.5 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करते हैं। गंधी बग नामक रोग लगता है इसमें, जिसमें कीटों द्वारा बाली का रस चूस लेने के कारण दाने नहीं बनते हैं और प्रभावित बालियां सफ़ेद दिखाई देती है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान 5% चूर्ण प्रति हेक्टेयर 25 से 30 ग्राम की दर से फूल आने के साथ बुरकाव करते हैं। धान में भूरे फुदके लगते हैं, जिसमें पौधे से रस चूस लेने के कारण पौधे सूख कर गिर जाते हैं तथा फसल झुलसा सी जाती है। इसकी रोकथाम के लिए खेत से पानी निकाल दें। नीम आयल 1.5 लीटर अथवा BPMC 500 मिली प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करते हैं। इसमें चूहे का

0: नियंत्रण भी करना पड़ता है। इसके लिए जिंक फास्फाइड से बने चारे अथवा एल्युमिनियम फास्फाइड की गोली का प्रयोग करते हैं।
1: धान का फसल के बारे में कौन कौन सा रोग लागत हैं अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में, एकरे बारे में बताएं। एक साथे साथे भैया हमें ये जानना चाहब कि जिसे कुछ दलहनी फसल भी लगी है इन खरीफ में, तो उमन जोन है ये प्रथम पखवाड़े में जोन है का उमन कार्य किया जाए, किसान भाई हरे कैसे अपने फसल का सावधानी बरतें, एकरे बारे में बताओ।
0: दलहनी फसल में बहुत महत्वपूर्ण फसल होती है अरहर की, और इसमें अगेती फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम आवश्यक होता है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर मोनोक्रोटोफास 36 EC 800 मिलीलीटर या कार्बाइल 50% घुलनशील चूर्ण 2 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोलकर 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 छिड़काव करते हैं। इसी के साथ दलहनी फसल में मूंगफली है, जो मूंगफली की वृद्धि की अवस्था पर सिंचाई करते हैं। दलहनी फसल में इस तरह से चना है, मटर है।
1: बिल्कुल भैया जोन है जैसे अब कुछ शीतकालीन मक्का या शरदकालीन गन्ना के भी बुआई किसान भाई है अगर करे चाहते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा
0: हाँ
1: बताना।
0: बिल्कुल, इसमें शीतकालीन मक्का के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था और खेत की तैयारी होने पर मक्का की बुआई अक्टूबर के अंतिम अंत में की जा सकती है। इसके लिए संकर प्रजाति के लिए प्रति हेक्टेयर 18 से 20 किलोग्राम और संकुल प्रजाति के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
1: जी, यानी कि बीज की मात्रा 18 से 20।
0: जी, 18 से 20 किलोग्राम और संकुल प्रजाति का जो है 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है।
1: जी, बताएं कि अक्टूबर माह में और कौन फसल के किसान भाई अरे तैयारी बुआई बदे कह सकते हैं।
0: और जो है शरदकालीन गन्ना महत्वपूर्ण है किसान के लिए। इस समय बुआई के लिए अक्टूबर का पहला पखवाड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है,
1: जी,
0: और इसमें बुआई के लिए पिछले वर्ष जो शरद ऋतु में बोए गए गन्ने से बीज प्राप्त कर लेते हैं, और बुआई जो है शुद्ध फसल में 75 से 90 सेंटीमीटर तथा आलू, लाही या मसूर के
1: जी
0: साथ मिलवा फसल में 90 सेंटीमीटर पर करते हैं।
1: जी जी
0: 1 हेक्टेयर बुआई के लिए 60 से 70 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है, और उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करते हैं। यदि परीक्षण न हुआ हो तो बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फेट और 60 किलोग्राम पोटास का प्रयोग करते हैं।
1: जी
0: बीज उपचार के बाद ही बुआई करना चाहिए। ये 250 ग्राम एरिटन या 500 ग्राम एगलाल 100 लीटर पानी में घोलकर उससे 25 कुंटल गन्ने के टुकड़े उपचारित किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही है, आप बताएं कि भैया किसान भैया हरिन के चाहिए कि जो उन्हें बीज उपचार जरूर कर लें,
0: जी,
1: यानी कि बीज उपचार करे से उनके आधा रोग बीमारी ख़त्म हो जाता है,
0: बिल्कुल
1: तब
0: बिल्कुल।
1: बहुत बढ़िया। और ही साथे साथे एक बात डॉक्टर साहब और बताएं कि जो उन्हें माटी के जांच किसान भाई हरे जरूर करा लें,
0: मृदा
1: माटी
0: परीक्षण जरूर।
1: हाँ माटी के जांच कराए से काबे कि उनका कौन पोषक तत्व तो का जरूरत बा, कितनी मात्रा में देवे बा, ये सब चीज़ के जानकारी हो जाता है, तब बहुत बढ़िया बताएं। डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहब कि जैसे अक्टूबर का पखवाड़ा चलत बा, तो यहाँ ये तोरिया का कैसे जो है खेत का तैयारी करें, कैसे बुआई करें, एकरे बारे में बताएं।
0: बिल्कुल, तुरिया फसल मुख्य रूप से सब्जी के उपयोग में लाया जाता है, और बुआई के 20 दिन के अंदर सिंचाई निराई गुड़ाई कर दें, और साथ ही सघन पौधों की को निकाल कर पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। सितंबर में बोई गई फसल में बुआई के बाद 25 से 30 दिन पर पहली सिंचाई कर दें तथा प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 108 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण आयल फसल है, ये सरसों की फसल है, राई है।
1: मन कैसे जोन है किसान भाई हरे कह कि राई सरसों का अब धीरे धीरे जोन है अक्टूबर का समय आई गए बाटे, तो एमन राई सरसों है साथे साथे चना मटर है, एकर कैसे खेत की तैयारी करें एकरे बारे में बताओ।
0: राई सरसों की बुआई के लिए माह का प्रथम पखवाड़ा सबसे उपयुक्त होता है। इसके लिए किसान भाई को समय से बुआई के लिए जो है सर्वोत्तम प्रजाति की सरसों का निर्धारण करना चाहिए। इसके लिए वरुणा है, नरेंद्र राई, 8501 है, रोहिणी तथा देर से जो बुआई के लिए आशीर्वाद व वरदान अच्छी प्रजातियां आती हैं।
1: जी।

0: बुआई 45 से 15 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर गहरी कूड़ों में करते हैं। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करते हैं। यदि परीक्षण न हुआ हो या किसान भाई परीक्षण कराने में असमर्थ हैं तो प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग कूड़ों में करते हैं या अंतिम जुताई के समय भूमि में मिला देते हैं। फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा प्रति हेक्टेयर 60 किलोग्राम गंधक का प्रयोग आवश्यक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आलू के साथ मिलवा फसल के लिए आलू की 3 कतार के बाद राई की 1 कतार बोए जाते हैं। बुआई के 20 दिन के अंदर घने पौधों को निकालकर लाइन में उनके साथ आपस की दूरी 15 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। इस तरह से किसान भाई राई की फसल पर अपना नियंत्रण रख सकते हैं और अच्छी उत्पादन पा सकते हैं। इसी के साथ साथ चना की भी फसल महत्वपूर्ण होती है और चना की बुआई माह के दूसरे पखवाड़े में करनी चाहिए और इसके लिए महत्वपूर्ण प्रजातियां का चयन करना आवश्यक होगा, जैसे पूसा 256 और रोधी राधे के 850 आदि तथा ऊसर क्षेत्र में बुआई के लिए करनाल चना एक अच्छी प्रजातियां हैं। काबुली चना की चमत्कार पूसा 1003 शुभ्रा अच्छी किस्में आती हैं। बुआई के समय कूड़ में या अंतिम जुताई के समय 100 से 150 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। मटर की फसल ये महत्वपूर्ण है। मटर की बुआई माह के दूसरे पखवाड़े में करने की तैयारी करते हैं और प्रजातियां इसकी रचना पंत मटर 5, अपर्णा मालवी मटर 2, मालवी मटर 15, शिखा एवं सपना अच्छी प्रजातियां हैं।
1: बिल्कुल भैया, आप इस पखवाड़े में कृषि कार्य इक्का बाटे किसान भाई हरे कैसे करें जोन है कि अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में अपने खेती बाड़ी में कैसे खेती किसानी करें जोन है, बहुत बढ़िया से बताएं और यह जानकारी देवे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे इस पखवाड़े के कृषि कार्य विषय पर डॉक्टर विनोबा शर्मा से अनिल कुमार यादव की बातचीत। कृषि जगत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। आइए सुनते हैं डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव।
1: आज के समय हम एक डिजिटल युग में रह रहे हैं। जब भी हर व्यक्ति, जनरली अगर बाहर देखा जाए तो हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है, और आजकल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी हमारे जीवन शैली का हिस्सा हो चुके हैं। हम शायद 18 घंटे जगते हैं तो उसमें से 16 घंटे जो है हम लोग कुछ ना कुछ मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या टीवी का प्रयोग करते हैं। तो आँखों में ये जो लगातार जो टीवी या लैपटॉप का जो स्क्रीन देखते रहने से आँखों में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं, इसलिए ये हमारा बहुत ज़रूरी है कि हम आँखों की देखभाल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, टीवी देखते हैं, पढ़ाई के लिए भी और खेलने के लिए भी, लेकिन ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से उनकी आँखों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अब क्या क्या मोबाइल या ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से क्या क्या समस्याएँ हो सकती हैं? सबसे ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, डिजिटल आई स्ट्रेन। अगर बच्चा लगातार स्क्रीन देखता रहता है तो उसकी आँखें जलने लगती हैं, सिर दर्द हो जाता है और सब कुछ धुंधला सा दिखने लेता है। ऐसे में बच्चा बहुत चिड़चिड़ा भी हो जाता है लेकिन अपना फ़ोन नहीं छोड़ता, अपना स्क्रीन टाइम नहीं छोड़ता। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पहले तो फ़ोन ना दें, और अगर देना हो तो उसका समय निश्चित कर लें कि बच्चे को हमें आधे घंटे के लिए फ़ोन देना है या एक घंटे के लिए फ़ोन देना है। दूसरा, जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन या मोबाइल स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो जाने की वजह से जो उसमें से ब्लू रेज निकलती हैं वो दिमाग में रात में सोने के लिए सही संकेत नहीं देती हैं। इससे बच्चों को नींद नहीं आती या नींद बहुत देर से आती है, तो इससे बच्चों में जो इंसोम्निया की परेशानी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बहुत ज़्यादा पास की चीज़ें देखने से, कम लाइट में या धूप में ना खेलने से विटामिन डी डिफिशेंसी तो बहुत कॉमन है ही, साथ में लगातार कॉन्टिन्यूसली पास

0: की चीज़ें देखने से बच्चों को एक बीमारी मायोपिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसमें बच्चे को पास की चीज़ें देखने में दिक्कत होती है और इसमें चश्मा लग जाता है, बच्चों को दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं। डिजिटल आई सिंड्रोम ये एक ऐसा मिला जुला प्रभाव है जो ज़्यादा स्क्रीन से जुड़ी कई समस्याओं को एक साथ दिखाता है। इसके लक्षण होते हैं जैसे आँखों में बहुत थकान रहती है, आँख लाल हो जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, नींद नहीं आ पाती, बच्चा चिड़चिड़ा रहता है। दूसरा, कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन देखने से एक और बीमारी होती है जिसे कि हम ड्राइनेस कहते हैं, आंखों का सूखापन कहते हैं। मोबाइल स्क्रीन देखने के दौरान बच्चों की पलक कम झपकती है और उस रेस की वजह से जो मोबाइल स्क्रीन से निकलती है या जो स्क्रीन से निकलती है उससे आंखों में ड्राइनेस की समस्या भी बहुत कॉमन हो गई है। स्क्रीन की तेज रोशनी से लगातार देखने से आंखों में बहुत ज़्यादा पानी निकलने की समस्या भी है। कॉन्टिन्यूसली बच्चा पलक कम झपकाता है, बहुत तेज़ लाइट देखता रहता है, इससे भी आंखों में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ रही है। कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, बच्चों के थकान के कारण बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं और अपना किसी भी कार्य में उनका ध्यान नहीं लगता है। तेज रोशनी से या सूरज की रोशनी आंखों में चुभने लगती है। इसके अलावा हम कैसे स्वस्थ रखें, कुछ आसान से उपाय हैं। एक नियम है 20-20-20, इसमें ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 फीट की दूरी पर 20 सेकंड तक अगर देखते हैं तो इससे आंखों को काफ़ी आराम मिलता है। अगर किसी भी व्यक्ति का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो उसको इस नियम का ज़रूर पालन करना चाहिए, हर 20 मिनट पे 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए देखें। स्क्रीन टाइम को कंट्रोल रखें, 5 साल से छोटे बच्चों को कोशिश करें कि मोबाइल फोन ना दें जिससे कि उनकी आदत ना लगे, और अगर बड़े बच्चे हैं तो उनका एक टाइम फिक्स कर दें, 1 घंटे से 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन नहीं देखने देना चाहिए या जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। बच्चों को बाहर धूप में खेलने के लिए भेजें, दिन में कम से कम बच्चा 1 से 2 घंटे धूप में खेले, इससे आंखें तो मजबूत होती हैं, मायोपिया की परेशानी भी कम होती है और चश्मा लगने का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही साथ विटामिन डी डिफिशियंसी जो कि बहुत कॉमन हो गई है स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चा बाहर नहीं जाता है, वो भी कंट्रोल किया जा सकता है। ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड में मोबाइल को ऑन करें ताकि आंखों पर कम दबाव पड़े। हर 6 से 12 महीने में बच्चों की आंखों की जांच कराएं, खासकर अगर वो बहुत सारा समय तक स्क्रीन के सामने रहता है। सही लाइटिंग सिस्टम का उपयोग करें, बहुत तेज या बहुत कम रोशनी में स्क्रीन देखने में आंखों पर जोर पड़ता है। स्क्रीन के पीछे या कमरे के पीछे प्राकृतिक या सौम्य लाइट रखें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अपराजिता चौधरी की वार्ता, बच्चों की आंखों पर मोबाइल स्क्रीन का दुष्प्रभाव। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी और शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, दोनों कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 7 बजे सुनेगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 7:10 पर फिल्मों से भजन प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर कमला बोस का गायन और दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति होगी अभय कांत तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर आप सुनेंगे नीरज शुक्ला के स्वर में भजन। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 10:05 पर। 10:30 पर लोकगीत के कलाकार होंगे भरत लाल, नीलम शर्मा और राम प्रसाद और साथी। सुबह 11 बजे कार्यक्रम एक ही कलाकार प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम किस्सा गोई। दिन में 12:30 पर आपकी पसंद प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें सुनेंगी नम्रता श्रीवास्तव की कहानी मानसिक शांति में सकारात्मक सोच, साथ ही सरोज सिंह के गाय लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5:00 फिल्म संगीत। युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई

सुनेंगे उषा कुमारी से दीपक राय की बातचीत। विषय होगा समावेशी फसल बीमा योजना। शाम 6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा किसानवाणी, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम, रात 8:30 पर सबरस और रात 9:30 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी जानकारी हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा. अथ वार्ताः. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति. सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति. अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनांकात् प्रारब्धानां आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापन सूचकः भविष्यति. षड्विंशत्यधिक नवदशशततमे वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति. श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति. मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुं अनुमोदनं प्रदत्तम्. केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयं गृहीतः.
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था. उस फैसले को इसमें लागू किया गया है. वीट बार्ली ग्राम लेंटिल्स रेपसीड मसूर मस्टर्ड और सेफ्लावर इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी.
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां सर्षपस्य 13.4 चणकस्य 83 गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्. एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता. येन राज्येषु केन्द्र शासित प्रदेशेषु च 35.1 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति. भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक केरलम माहे आंतरिक कर्णाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता. ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता. विभागेन उक्तं यत् रायल सीमा आंतरिक कर्नाटक

0: ओडिशा अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन चत्वारि सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि, अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य षष्टिः अभवत्, यस्मिन् दश सुवर्ण पदकानि, एकविंशति रजत पदकानि तथा एकोनत्रिंशत् कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकहि पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय द्वे अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8-0 पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीटिंग वेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रीराम चरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्रीराम की बाल लीलाओं से आनंदित अयोध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। उन्हीं दिनों महामुनि विश्वामित्र अपने आश्रम में जप तप यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विघ्न डालते। मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है। अतः एक दिन वह राजा दशरथ की राजसभा में पहुंचे।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। संगीत सतीश भाटिया का था। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फिल्मों से भजन। लीजिए सुनिए चार धाम फिल्म का ये भजन। हरिहरन की आवाज़ है, संगीत दिया है सुरेंद्र कोहली ने और रचना है उदय शंकर की।

लीजिए अब सुनिए देव फिल्म में अभिजीत को। संगीत आदेश श्रीवास्तव का है, रचना है निदा फाजली की।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए की स्वीकृत। मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी खरीद। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को होगा मतदान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी।
1: इसलिए 1,86,000 करोड़ रुपीस का ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। इस प्रोग्राम में 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और लाभकारी मूल्य मिलेगा। केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सहित देश के 3 राज्यों में प्रमुख दलहन

0: और तिलहन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 5,547 करोड़ 99 लाख रुपए को मंजूरी दी है। यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा हिस्सा तय करते हुए कुल 3,992.57 करोड़ रुपए की खरीद को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसके तहत राज्य में 3,937.70 करोड़ रुपए मूल्य की 4,66,000 मीट्रिक टन तुअर और 54.87 करोड़ रुपए मूल्य की 6,250 मीट्रिक टन मूंग की खरीद समर्थन मूल्य पर की जाएगी। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले का उद्देश्य बाजार भाव में गिरावट से किसानों को बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है।

0: से किसानों को बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 509 दिव्यांग जन को 666 सहायक उपकरण वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 17 लाख से अधिक दिव्यांग जनों की डिजिटल पहचान को मजबूत किया है।
2: 17 लाख से अधिक जो दिव्यांग जन है उनकी डिजिटल पहचान को मजबूत करने का कार्य किया है और इन्हें उनका कार्ड भी उपलब्ध करवाया है। हमारा प्रयास है कि 2026-27 को इस जो वर्ष है इस वर्ष में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में दिव्यांग जनों को पर्याप्त मात्रा में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम के लिए शिविर लग सके।
1: समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों ने कल लखनऊ में राज्यसभा चुनावों के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने रिटर्निंग अधिकारियों के समक्ष कल अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत किए। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कैसे आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से इस सपने को वास्तविकता में बदला गया है।
3: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
4: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
3: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त कमोडोर श्रीकांत केसनूर ने कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत ने बड़ी प्रगति की है।
5: मैं समझता हूँ कि पिछले 10-12 साल में बहुत बढ़ावा मिला है आत्मनिर्भरता को डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस प्रोडक्शन में और इंडिजिनाइजेशन में। जहाँ पे हम आर्म्स को इम्पोर्ट करते थे, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं।
3: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पिछले दिनों हुई बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण बदायूं और बलिया में गंगा, बाराबंकी में घाघरा तथा बलरामपुर में राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कुशीनगर में बड़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के बाद राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने जिला प्रशासन से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में भी सरयू नदी उफान पर है। वहां के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 6 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान रबी

0: फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट के फैसलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। केंद्र सरकार ने प्रदेश में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मूल्य समर्थन योजना के तहत की जाएगी खरीद। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में दिव्यांगजनों को बांटे सहायक उपकरण। कहा, सरकार ने दिव्यांगजनों की डिजिटल पहचान को किया मजबूत। और राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 16 अक्टूबर को होगा मतदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कमला बोस का ख्याल गायन राग है गुर्जरी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कमला बोस का ख्याल गायन, राग था गुर्जरी तोड़ी। आपके साथ तबला संगत कर रहे थे अनूप कुमार बैनर्जी और हारमोनियम पर भीमेश्वर दयाल। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक

0: एक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
1: आयुष्मान भारत पीएम जय
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर

0: बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
1: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
2: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि, बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
3: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
2: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरूएकार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने पर भारतीय पायलट स्मिथ मछार को हकीकी हीरो करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में गुवाहाटी में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया और 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सालाना तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ये प्रोग्राम साल भर जारी रहने वाली उन तकरीबात के अख्तिताम की अलामत होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर को 1926 में यूपीएससी के क्याम के 100 साल मुकम्मल होने की याद में शुरू हुई थी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यूपीएससी का 100 साल यादगारी सिक्का, एक यादगारी डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया उनवान से एक किताब का इजरा करेंगे। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के स्टेक होल्डर्स शिरकत करेंगे जिनमें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अराकीन, भारतीय हुकूमत के सीनियर हुकाम, माहिरीन तालीम, यूपीएससी के हुकाम और दीगर शामिल हैं। ये तकरीब यूपीएससी की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली 2 रोज़ा तकरीब का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन का इनेकाद किया गया था। मुमताज मुकर्रीन ने तकरीब से खिताब किया जिसके बाद मुख्तलिफ मौजूआत पर पैनल मुबाहसे हुए। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने मार्केटिंग सीजन 2027-28 के लिए तमाम रबी फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमतों MSP में इजाफे की मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी फराहम करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फैसला किसानों को उनकी पैदावार की मुनासिब और मुनाफा बख्श कीमत यकीनी बनाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि MSP में सबसे ज्यादा इजाफा जाफरान की कीमत में 675 रुपये फी क्विंटल किया गया है। इसके बाद राई और सरसों की कीमतों में 413 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: वजीर मौसूफ ने कहा कि मसूर दाल की कीमत में 390 रुपये फी क्विंटल, जौ की कीमत में 136 रुपये फी क्विंटल, चने की कीमत में 83 रुपये फी क्विंटल और गेहूं की कीमत में 25 रुपये फी क्विंटल का इजाफा किया गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने दिल्ली पुलिस के जरिए ट्रैफिक के बंदोबस्त के इंटेलिजेंट निज़ाम ITMS प्रोजेक्ट के नफाज को भी मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 1,789 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसमें टैक्स भी शामिल है। जनाब अश्विनी वैष्णव ने मजीद कहा कि काबीना ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर GEC के तीसरे मरहले के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है।

0: सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 26 जून को चिनाब और अंजीखट पुलों का इफ्तिताह करने के बाद कहा था कि ये रेलवे पुल भारत की इंजीनियरिंग सलाहियत की अलामत और जम्मू और कश्मीर में राब्ते को मजबूत करने में एक संगे मेल की हैसियत रखते हैं। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में तामीर किए गए हैं। चिनाब रेल ब्रिज दरियाए चिनाब से 359 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और ये दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़ रेलवे का मेहराब पुल है। अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल रेलवे पुल है जो कि 96 केबल्स पर कायम है। इन पुलों से न सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक रेल रबता मजबूत हुआ है बल्कि लोगों और अशिया की नकल व हमल में भी बेहतरी आई है। नीज सयाहत और इकतसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है। इन पुलों से कश्मीर से ज़री बागबानी और दस्तकारी की अशिया को तेज़ी से मुल्क भर की मार्केटों तक पहुंचाने में भी सहूलत पैदा हुई है। कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक बागबान तजम्मुल अहमद का कहना है कि इन पुलों की तामीर से रेल रबता मुमकिन हुआ है जिसकी वजह से सेब पैदा करने वाले किसानों के लिए अपनी पैदावार को मुल्क के दीगर हिस्सों तक पहुँचाना आसान हो गया है।
2: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
1: श्रीनगर से अशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
3: मर्दों के क्रिकेट में कल रात गुवाहाटी के बिरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज से बल्लेबाजी करने को कहा और वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए जो एक रोजा क्रिकेट मैचों में उसका अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने 43 ओवर्स और 3 गेंदों में महज 2 विकेट खोकर जीत का निशाना आसानी से हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 133 गेंदों पर धुआंधार 233 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। रोहित शर्मा ने 75 गेंदों पर 101 रन स्कोर किए जो एक रोजा मैचों में उनकी 35वीं सेंचुरी है। शुभमन गिल एक रोजा मैचों में सबसे तेज रफ्तार डबल सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने महज 117 गेंदों पर यह कारनामा अंजाम दिया। उन्हें अपनी शानदार इनिंग्स के लिए मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली परवाज की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग और पायलटों के दरमियान झगड़े की वजह सामने आने से मुतालिक खबर को शह सुर्खी बनाया है। अखबार इंकलाब की सुर्खी है वजीर आजम मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान बातचीत, तजारत, दिफा और अहम टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल। पटाखों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, मुकम्मल पाबंदी लगाना नामुमकिन, ये खबर भी अखबारात में सफ़े अव्वल पर है।
3: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में यूपीएससी की सत्साला तकरीबात में शिरकत करेंगे। मरकजी काबीना ने 2027-28 के मार्केटिंग सीजन के लिए रबी की फसलों के वास्ते कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफा किया है। सरकार साहिली इलाकों में मादनियाती वसाइल को बरुए कार लाने की खातिर आज साहिली इलाकों के मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी का अमल शुरू कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से कबल पटाखों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के इम्कान को रद्द कर दिया है और मुतवाजन रवैये की वकालत की है। सऊदी अरब के हुकाम ने दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवाज के कैप्टन पर चाकू से हमला करने और हवाई जहाज को गिराने की कोशिश करने की बिना पर ओमान के साथी पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 174 अफराद की जान बचाने

0: करने पर भारतीय पायलट स्मिथ मचार को हकीकी हीरो करार दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: देश के अपने स्वदेशी नेटवर्क BSNL की 26वीं वर्षगांठ पर आपके लिए है विशेष ऑफर। सिर्फ ₹1 में BSNL सिम पाइए, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा, 100 SMS और 24 दिनों की वैधता। ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक, तो देर किस बात की। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC पर जाएं और इस खास ऑफर का लाभ उठाएं। आपका BSNL, हमारा BSNL।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। सभी श्रोताओं को सोनम का प्यार भरा नमस्कार। हेलो श्रोताओं, कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। श्रोताओं, आज का हमारा विषय जो है वो है बहुजन दिवस। आज है 1 अक्टूबर और आज मनाया जाता है बहुजन दिवस। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सुनते हैं नीरा त्रिपाठी जी का भेजा हुआ ये सुविचार। जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का अकाउंट साझा ही नहीं किया। जब टोटल किया तो समझ आया कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस रहता नहीं। इसी क्रम में इन्होंने एक सुविचार और भेजा है हमें। भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी संभल जाती है और बात संभालने से रिश्ते संभल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीरा त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही अच्छा और प्यारा सा सुविचार हमें भेजा। श्रोताओं, अब आते हैं अपने विषय पर। हमारे समाज में बुजुर्गों को मार्गदर्शक और अनुभवों का खजाना माना गया है। वृद्धजन किसी भी परिवार और राष्ट्र की नींव होते हैं, जिनका पूरा जीवन अपनों की भलाई और परवरिश में बीत जाता है। बदलते सामाजिक ताने बाने और संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण आज कई वृद्धजन अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। इसी स्थिति में सुधार लाने के लिए 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात करेंगे वृद्धजन दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 1990 में घोषित इस दिन का उद्देश्य बहुजनों से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके मान सम्मान तथा अधिकारों को बताना है। दुनिया भर में वृद्धों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, भेदभाव, उपेक्षा और अन्याय को रोका जा सके, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। श्रोताओं, वृद्ध हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार हैं, परंतु अवस्था ढल जाने के पश्चात कई बार इन्हें समाज में गैर जरूरी मान लिया जाता है। एक व्यक्ति जो आपके समाज में एक संसाधन के तौर पर कार्य कर रहा था, अचानक ही समाज पर बोझ बनने लगता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम कम पढ़ाई, मोबाइल और तकनीक में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कभी कभी अपने घर के बुजुर्गों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। कार्यक्रम में बातें और भी होंगी, आपको सुनवा रहे हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं वृद्ध जन दिवस की। हमारा थोड़ा सा समय उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। उनसे बात करना, उनकी पुरानी यादें सुनना, उनके साथ चाय पीना, ये सभी छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। हमारे बुजुर्ग जीवन की ऐसी पाठशाला हैं जहाँ किताबों से नहीं, अनुभवों से सीख मिलती है। आज तकनीक हमारे हाथ में है, लेकिन जीवन का अनुभव उनके पास है। जीवन के कई चक्र होते हैं, बाल्यकाल, यौनकाल, प्रौढ़काल और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में मनुष्य कमज़ोर हो जाता है, उसका शारीरिक बल कम हो जाता है, सुनने देखने की शक्ति में कमी आ जाती है, वह बातें भूलने लगते हैं, उन्हें बहुत सी बातें याद ही नहीं रहती। ऐसे समय में उन्हें अपने परिवार की बहुत आवश्यकता होती है, उन्हें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने परिवार की प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे समय में उन्हें अपने परिवार का साथ ना मिले तो वे टूट जाते हैं, उनका मनोबल कम हो जाता है। हमें बचपन से ही घर में शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वृद्धजन हमारे घर की नींव हैं। वृद्धजन का समाज हमारे समाज के लिए पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार होता है। हमें उस पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान संदर्भों के साथ उपयोग करना सीखना चाहिए। इससे उनकी उपयोगिता भी लगातार बनी रहेगी और वे खुद को उपेक्षित महसूस नहीं करेंगे। इस बात पर तो ये गीत बनता है।

0: यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या योगदान है। यह समाज और सरकार को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम वृद्धों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। भारत सरकार ने भी वृद्धजनों के लिए कई योजनाएं और माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम बनाए हैं, जिनका उद्देश्य उनकी रक्षा करना है। यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता और घर के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करें, उनकी बातें सुनें, उनकी सेहत का ध्यान रखें और उन्हें महसूस कराएं कि वे हमारे लिए कितने मूल्यवान हैं। वृद्धजन हमारे समाज का अतीत और वर्तमान दोनों हैं। उनका आशीर्वाद परिवार और राष्ट्र की मार्ग में समृद्ध प्रशस्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन करने का दिन है कि हम अपने बुजुर्गों का वह मान सम्मान और प्यार दे सकें जिसके वे हकदार हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर। और अब आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे मिलेंगे नए विषय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी सोनम को दीजिए अनुमति। नमस्कार प्रयागराज से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि

0: आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
6: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म संगीत। आपको सुनवा रहे हैं तमाशा फिल्म का ये गीत, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। संगीत दिया है AR रहमान ने, रचना है इरशाद कामिल की।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए खुदगर्ज फिल्म का ये गीत, मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाज़ों में। संगीत दिया है राजेश रोशन ने और रचना है इंदीवर की।

अभी आपने सुना खुदगर्ज़ फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फर्रुखाबाद और हरदोई जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फर्रुखाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गौरव यादव का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद जनपद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पुलिस लाइन स्थित बाढ़ राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम स्थल पर 96 बाढ़ पीड़ितों को 1,20,000 की चेक, 66 बाढ़ पीड़ितों को पट्टे की जमीन का प्रमाण पत्र, सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर बाढ़ राहत किट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि फर्रुखाबाद के 102 गांव के बाढ़ पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी है। जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ित बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए बाढ़ राहत शिविर में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है जिससे चिकित्सीय सुविधा में कोई रुकावट न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी से सिल्ट निकालकर तटबंध बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा जिससे बाढ़ आपदा नियंत्रित की जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने का कार्य जल्द शुरू होगा जिससे फर्रुखाबाद जनपद एक हब बनेगा। अच्छी सड़कों का जाल प्रदेश को मिल रहा है। डबल इंजन की सरकार किसानों के साथ है। किसान फसल बीमा सम्मान निधि क्रय केंद्र समेत स्थापित कर रही है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की बाढ़ में फसल नुकसान को लेकर जिला प्रशासन सर्वे कर रहा है। डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने जनपद का एक दिवसीय दौरा किया। कानून व्यवस्था एवं विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक के उपरांत उन्होंने जनपद के बाढ़ प्रभावित गांवों का स्थलीय निरीक्षण किया। मंत्री जी ने बताया कि सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक मदद की जा रही है। भूमि के पट्टे आवंटित किए जा रहे हैं। बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है।
2: समस्या अगर कोई है तो उसका समाधान उन क्षेत्रों का हम लोगों ने दौरा किया अपने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ जहां बाढ़ की स्थितियां उन लोगों को जिनके आवास पूरी तरह बाढ़ में बह गए थे जमीन का आवंटन के साथ साथ 1,20,000 रुपए प्रति आवास के हिसाब से हमारे फर्रुखाबाद जिले के जिलाधिकारी जी के द्वारा किया गया।
1: सेवा संकल्प अभियान के तहत पांचाल घाट गंगा घाट पर लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर नागरिकों को जन जागरूकता का संदेश दिया गया। इसके उपरांत उन्होंने याकूतगंज स्थित गौशाला का सघन निरीक्षण कर पशुओं के चारा पानी स्वास्थ्य और परिसर की स्वच्छता का जायजा लेते हुए अधिकारियों को बेहतर व्यवस्थाओं के कड़े निर्देश दिए। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद वर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी व क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2027 के दृष्टिगत ईवीएम एवं वीवीपैट के प्रथम स्तरीय जांच FLC 17 सितंबर 2026 से कलेक्ट्रेट परिसर ईवीएम वेयर हाउस में प्रारंभ हो गई है। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अधिकृत इंजीनियरों द्वारा संपन्न कराई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने बताया कि नियमानुसार केवल FLC में सफल मशीनों का उपयोग ही चुनाव में किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं चुनाव आयोग स्तर से की जा रही है। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी FLC के अवलोकन हेतु आमंत्रित किया गया है जिससे नामों की पुष्टि उनके राज्य मुख्यालय द्वारा की जा चुकी है। फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर विधानसभा में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के तत्वाधान में नमो सेवा अनकही कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। 4 दिवसीय इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कला व संस्कृति के माध्यम से जन जन तक सेवा विरासत और विकास का संदेश पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दलों ने मनमोहक लोकगीत पारंपरिक लोक नृत्य और प्रभावी नाट्य मंचन के जरिए उत्तर प्रदेश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत किया। इसके साथ ही कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा सामाजिक जागरूकता और जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी भी सरल अंदाज में साझा की। स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। जनहित और सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देने के लिए ऐसे आयोजन जनपद की विभिन्न विधानसभाओं में क्रमबद्ध आयोजित किए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा सेवा ही संकल्प अभियान के अंतर्गत पंचायत स्तर पर ग्रामीण समुदाय की जन सहभागिता के साथ सफाई फूलों के कचरे से खाद बनाने का कार्यक्रम विशेष ग्राम चौपालों का आयोजन कर ठोस अपविष्ट प्रबंधन नियम 2026 और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों को बताया गया। साथ ही विकास कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण जनमानस के जीवन पर आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुंचाया गया है।

0: फरुखाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
1: सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जनपद के 17 विद्यालयों में करियर काउंसलिंग एवं विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों में करीब 30 अधिकारियों ने प्रतिभाग कर 6,115 छात्र छात्राओं को विभिन्न करियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के अवसरों की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक भी मौजूद रहे। वेणीमाधव इंटर कॉलेज में मुख्य विकास अधिकारी नेहा ब्याडवाल ने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया, योग्यता, विषय चयन और तैयारी की रणनीति समझाई। उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करने और रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने की सलाह दी। अन्य विद्यालयों में अधिकारियों ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कानून, चिकित्सा, कृषि प्रशासन, पुलिस एवं अन्य क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं की जानकारी दी तथा विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग के नवनियुक्त 3,446 प्राविधिक सहायकों ग्रुप सी को नियुक्ति पत्र वितरित किए। जनपद स्तर पर यह कार्य डॉक्टर राजेश कुमार, उप कृषि निदेशक हरदोई एवं इंद्रजीत यादव, जिला कृषि रक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा कराया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कृषि प्राविधिक सहायकों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं है, उन्हें कृषि की आधुनिक तकनीकों को किसानों के खेत तक पहुँचाने और किसानों को उनका लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि कृषि प्राविधिक सहायकों को नियुक्ति में आरक्षण एवं रोस्टर का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप शाही तथा राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बिलग्राम मल्लावा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनप्रतिनिधियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें आपसी सहयोग, प्रेम और सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। नवविवाहित जोड़ों एवं उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना से जरूरतमंद परिवारों को सहारा मिलने के साथ ही समाज में सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिल रहा है। हरदोई जिले में चुनाव का समय नजदीक आते ही अवैध शस्त्रों की तस्करी शुरू हो गई है और असलाह तस्कर सक्रिय हो गए हैं। हरदोई पुलिस को मिल रही सूचना के आधार पर पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर जिले में अवैध असलाह निर्माण, बिक्री व परिवहन करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत स्वाट सर्विलांस, एसओजी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना पिहानी पुलिस टीम ने थाना प्रभारी श्याम नारायण सिंह ने व संयुक्त अधिकारियों के नेतृत्व में पिहानी स्थित एफसीजी ई गोदाम के पीछे अवैध असलाह बिक्री करने वाले गिरोह के होने पर नाकाबंदी की और पुलिस ने कड़ी घेराबंदी कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तलाशी में उनके पास से 5 पिस्तौल, देशी 32 बोर व 10 मैगजीन तथा 900 रुपए की नकदी बरामद हुई। नवागत जिलाधिकारी राहुल पांडे ने 22 सितंबर को पदभार ग्रहण करने के बाद 23 सितंबर को कलेक्ट्रेट परिसर का भ्रमण कर विभिन्न पटलों एवं कार्यालयों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कर फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। डीएम ने संयुक्त कार्यालय, नजारत संग्रह, भूलेख, जिला निर्वाचन कार्यालय, अभिलेखागार, जनसुनवाई, आईजीआरएस, शस्त्र अनुवाद, जिला प्रोविजन कार्यालय तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय समेत विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित पटल पर किए जा रहे कार्यों, लंबित पत्रावलियों और अभिलेखों की जानकारी भी ली। उन्होंने लंबित पत्रावलियों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने तथा अभिलेखों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। सभी पटलों पर पटल सहायक के नाम और पदनाम की पट्टिका लगाने, कलेक्ट्रेट परिसर में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए। इसके बाद जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न क्षेत्रों से आए फरियादियों की समस्याएं गंभीरतापूर्वक सुनी। जनसुनवाई में कुल 64 शिकायतें प्राप्त हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण, नियमानुसार एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि फरियादियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने अपने पटल से संबंधित कार्यों में समयबद्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश भी दिए।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

किसी नगमे में हमें मोहब्बत की पहली दस्तक सुनाई देती है, किसी में जुदाई का दर्द, किसी में दोस्ती की गर्म जोशी और किसी में ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का हौसला। ऐसे ही नगमों और अशार का एक नाम है, मजरूह सुल्तानपुरी।

0: आज की पेशकश आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से।
1: आदाब सामे। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं और कुछ आवाजें वक्त गुजरने के साथ और भी गहरी होती चली जाती हैं। कुछ नगमे सिर्फ सुने जाते हैं और कुछ नगमे हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं।

1 अक्टूबर 1919 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था असरारुल हसन खान। आगे चलकर यही असरारुल हसन खान उर्दू अदब की दुनिया में मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से पहचाने गए। क्या हो?

उन्होंने लखनऊ के तकमीलुल तिब कॉलेज से यूनानी दवाओं की तालीम हासिल की और कुछ अरसे हिकमत के पेशे से भी वाबस्ता रहे, लेकिन शायद कुदरत ने उनके हाथों में नब्ज़ शनास तबीब बनने से ज़्यादा दिलों की धड़कनों को लफ्ज़ों में ढालने का हुनर लिखा था। शायरी का शौक़ बढ़ता गया, मुशायरों में शिरकत शुरू हुई और रफ्ता रफ्ता ये शौक़ उनकी ज़िंदगी का मकसद बन गया।

मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी, जी हाँ वही जिगर, जिन्होंने कहा ये इश्क नहीं आसां, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उनसे वाबस्तगी ने मजरूह के शेरी सफ़र को एक नई सिमत अता की। जिगर की रहनुमाई में मजरूह के फ़न ने वो पुख्तगी हासिल की जिसने आगे चलकर उन्हें उर्दू शायरी की एक नुमाया आवाज़ बना दिया।

फिर एक दिन एक मुशायरा, जिस मुशायरे में मौजूद थे फिल्मी दुनिया के मारूफ हिदायतकार A.R. कारदार। मजरू की शायरी ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। फिर मजरू को मौसीकीकार नौशाद के सामने ले जाया गया तो नौशाद ने उनका इम्तिहान लेने के लिए एक धुन सुनाई और उसी वजन पर कुछ लिखने को कहा। मजरू ने उसी वक्त शेर कहा, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के। नौशाद उनके कलाम से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्हें फिल्म शाहजहां के लिए साइन कर लिया गया। इस फिल्म में उनकी कलम से कई यादगार नगमे सामने आए। कभी कभी इम्तिहान लेने वाला खुद भी नहीं जानता कि उसके सामने बैठा

ये सिर्फ एक फिल्मी नगमा नहीं था, ये मजरूह के फिल्मी सफर की इब्तिदा थी। शायरी से फिल्मी नगमे तक फिल्मी दुनिया में नगमा निगारी के अपने तकाजे थे। यहाँ शायरी को मौसीकी, मंजर, किरदार और कहानी सबको सामने रखकर लिखना होता था। मगर मजरूह की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने इन तकाजों के दरमियान भी अपनी शायरी की लताफत को जिंदा रखा। उनके यहाँ मोहब्बत है तो नज़ाकत के साथ, जुदाई है तो दर्द के साथ, दोस्ती है तो अपनाइयत के साथ, और ज़िंदगी है तो अपनी तमाम तरंगीनियों के साथ। शायद यही वजह है कि उनके लिखे हुए नगमे फिल्मी पर्दे से निकलकर लोगों की ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले गए।

मजरूह की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी बेबाक शायरी उन्हें कैदोबंद तक ले गई। 1950 ईस्वी की दहाई के आगाज में उन्हें एक नज्म के हवाले से गिरफ्तार किया गया। उन पर हुकूमत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज शायरी का इल्ज़ाम आयद किया गया और उन्हें कैद की सज़ा हुई। ये वाकया इस बात की गवाही देता है कि उनके लिए शायरी महज खूबसूरत अल्फाज का खेल नहीं थी, शायरी उनके लिए अपने अहद से मुकालमा करने का एक वसीला भी थी। अब आइए मजरूह के उस सफ़र की तरफ जहां उनके अल्फाज मौसीकी के साथ मिलकर करोड़ों दिलों तक पहुंचे। कभी आर कभी पार, फिल्म आर पार।

इन नगमों में एक नयापन है, एक शोखी है, एक शहरी जिंदगी की तेजी है और अल्फाज में वो रवानी है जो मौसीकी के साथ घुल मिल जाती है। लेकिन मजरूह की तख्लीकी दुनिया सिर्फ एक रंग तक महदूद नहीं थी। वक्त बदल रहा था, फिल्मों की जबान बदल रही थी, मौसीकी के अंदाज बदल रहे थे, नौजवान नस्ल के ख्वाब और तरजीहात बदल रही थीं, और मजरूह, उन्होंने वक्त के इस बदलते हुए मिजाज को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसे अपनी शायरी में जगह भी दी।

0: जहां एक तरफ मजरूह सुल्तानपुरी ने राज कपूर, शम्मी कपूर और देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए गाने लिखे, वहीं पीढ़ियां बदली और आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक के गाने भी मजरूह साहब ने ही लिखे।
1: पापा।

यही एक बड़े फनकार की पहचान होती है, वो वक्त के साथ चलता है मगर अपनी शनाख्त खोए बगैर। एक तरफ वो लिखते हैं, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, और दूसरी तरफ नई नस्ल के लिए लिखते हैं, पापा कहते हैं बड़ा ना

करेगा। जिस शायर ने केएल सहगल के अहद में लिखना शुरू किया था, वो कई दहाइयों बाद नई नस्ल की जबान भी बोल रहा था। यही मजरूह का कमाल था। मजरूह की एक बड़ी खूबी ये भी थी कि वो नए तजुर्बात से घबराते नहीं थे। वो मौसीकी के रंग बदलने के साथ अपने लफ्ज़ों के रंग भी बदल लेते थे। लेकिन असल मजरूह कहाँ है? शायद इस सवाल का जवाब हमें उनकी गज़लों में मिलता है। वही मजरूह जो फिल्म के लिए लिखते हैं, अपनी गज़लों में कहीं ज़्यादा संजीदा और गहरे नज़र आते हैं। उनके अशार में रिवायती शायरी की खुशबू भी है और जदीद इंसान की तन्हाई और बेचैनी भी। उनके चंद मशहूर अशार हैं, हम हैं मताए कूचो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, कुछ बता तू ही नशेमन का पता, मैं तो ऐ बादे सबा भूल गया, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे कोई हमारा न रहा, शब इंतज़ार की कश्मकश में ना पूछ कैसे सहर हुई, कभी एक चिराग जला दिया कभी एक चिराग बुझा दिया। और फिर वो शेर जो मजरूह के नाम के साथ सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कितनी अजीब बात है कि ये शेर सिर्फ उनकी शायरी का हिस्सा नहीं रहा बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी की दास्तान बन गया। सुल्तानपुर से शुरू होने वाला सफ़र मुशायरों से गुजरता हुआ फिल्मी दुनिया तक पहुंचा और फिर करोड़ों सामईन और नाजरीन के दिलों तक पहुंचा।

0: 1993 ईस्वी में मजरूह सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वो इस एजाज से सरफराज होने वाले पहले नगमा निगार थे। 24 मई 2000 को मजरूह सुल्तानपुरी इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शायर कहाँ रुखसत होता है? शायर तो अपने लफ्ज़ों में ज़िंदा रहता है, किसी पुराने रेडियो से आती हुई आवाज़ में, किसी महफिल में पढ़े गए शेर में, किसी आशिक की ज़बान पर, किसी दोस्त की याद में, और कभी अचानक किसी राह चलते शख्स के होठों पर मैं अकेला ही चला था। तब एहसास होता है कि मजरूह हमसे दूर नहीं हुए, वो आज भी मौजूद हैं, अपने लफ्ज़ों में, अपने अशार में, अपने नगमों में और हमारी यादों में। मजरूह सुल्तानपुरी को याद करना सिर्फ पुराने फिल्मी नगमों को याद करना नहीं है, उन्हें याद करना उस दौर को याद करना है जब नगमों में शायरी हुआ करती थी, जब शायरी में ज़िंदगी हुआ करती थी, और जब एक शायर अपने फ़न को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने अहद और आने वाली नस्लों के लिए भी तख्लीक करता था। मजरूह ने हमें मोहब्बत के नगमे दिए, दोस्ती के नगमे दिए, जुदाई के नगमे दिए, ज़िंदगी के नगमे दिए, और साथ ही ये यकीन भी दिया कि अच्छे लफ्ज़ों की उम्र बहुत तवील होती है। सुल्तानपुर से निकला एक नौजवान मुशायरे तक पहुंचा, मुशायरे से सिनेमा तक पहुंचा, और सिनेमा से निकलकर हम सब की यादों का हिस्सा बन गया। शायद इसी सफ़र का नाम है मजरूह, और शायद इसीलिए उनका ये शेर आज भी उनके पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत खुलासा महसूस होता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी कारवां के साथ मैं शाज़िया ख़ान आपसे इजाज़त लेती हूँ। आदाब।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम। मीडियम वेव के मीटर पर इस वक्त आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई।

0: ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं नीरज शुक्ला। आइए सुनते हैं इनके स्वर में तुलसीदास का ये भजन।

अभी आप नीरज शुक्ला के स्वर में भजन सुन रहे थे। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी

0: सी अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी होगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DAD के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकीय पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल है जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपये प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपये प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। न्यायाधीश MM सुंदरेश और PB वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान की सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कभी कभी किसी शख्स की एक झलक ही दिल में खास जगह बना लेती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। नज़रों का मिलना, दिल का धड़कना और उस पल का खूबसूरत एहसास। तो आइए प्यार और खूबसूरत एहसासों से

सजे इसी गीत के साथ महसूस करते हैं उस पल को। पेश है फिल्म जन्नत टू का ये गीत, जिसे गाया है राहत फतेह अली खां ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है संजय मासूम।

दुनिया में हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसे खूबसूरत एहसास को आवाज़ देता यह प्यारा सा गीत आपको सुनवा रहे हैं सुल्तान फिल्म से, जिसे गाया है सलमान खान ने, रचना है विशाल शेखर की और रचना है मनोज यादव, इरशाद कामिल की और संगीत है विशाल शेखर का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सुल्तान फिल्म का ये गीत। सलमान खान की आवाज़ थी, संगीत दिया था विशाल शेखर ने और रचना थे इरशाद कामिल की। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में पहली बार दिल को छूते हैं। पहली मुलाकात, पहली नज़र, इन पलों की खूबसूरती हमेशा याद रहती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत सनम रे फिल्म से, जिसे गाया है अमाल मलिक, अरमान मलिक और पलक मुक्षल ने। संगीत दिया है अमाल मलिक ने, रचना है मनोज यादव की।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दिल को छू लेते हैं। किसी अपने की मौजूदगी ज़िंदगी के हर रंग को और भी खुशनुमा बना देते हैं। तो श्रोताओं, इन्हीं मीठे रंगों में रंगते हुए सुनते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है प्रीतम ने और रचना है इरशाद कामिल की।

दोस्ती का रिश्ता ज़िंदगी के उन खूबसूरत रिश्तों में से एक है जहां बिना कहे भी समझ लिया जाता है। एक सच्चा साथी हो तो मुश्किल राहें भी आसान लगने लगती हैं, खुशियों का मज़ा दोगुना करते हैं। सुनते हैं इस फिल्म का गीत जिसे हमने लिया है त्रिशूल फिल्म से, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीत दिया है खय्याम ने, रचना है साहिल लुधियानवी की।

इसी गीत के साथ है फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम को न्यूज़ ऑन AIRI पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं भरत लाल और साथी, नीलम शर्मा और राम प्रसाद और साथी। पहले आपको सुनवाएंगे भरत लाल और साथी के गाए ये देवी गीत।

अभी आप राम प्रसाद और साथियों के स्वर में ये देवी गीत सुन रहे थे। लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज बात उस लफ्जों के जादूगर की जिसने हिंदी फिल्मी गीतों को ऐसी जबान दी कि मोहब्बत भी मुस्कुराने लगी, जुदाई भी गुनगुनाने लगी और जवानी ने भी अपने लिए गीत ढूंढ लिए। नाम था मजरू सुल्तानपुरी।

आज एक ही कलाकार में लफ्ज़ों के जादूगर की बात, नाम मजरूह सुल्तानपुरी। उनके भीतर का शायर फिल्मों से बहुत पहले जाग चुका था, मुशायरे से उनकी पहचान बनी और फिर उनकी मुलाकात फिल्मी दुनिया के उन लोगों से हुई जिन्हें उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना।

मजरू साहब के गीत सुनकर अक्सर ऐसा लगता है कि गीत पर्दे पर ख़त्म हुआ, मगर उसकी कहानी हमारे भीतर अभी

अभी भी चल रही है। उन्होंने कई दशकों तक फिल्मी गीतों की दुनिया को अपने शब्द दिए, लेकिन इतने लंबे सफ़र के बाद भी उनकी कलम में उम्र की थकान नहीं आई।

मजरू साहब की कलम में मोहब्बत थी, शरारत थी, दर्द था, दर्शन था और सबसे बड़ी बात ज़िंदगी थी।

नई पीढ़ी आई, नई धुनें आई, सिनेमा बदला, गीतों का अंदाज बदला, लेकिन मजरू साहब के शब्द लोगों की जबान पर बने रहे।

सन 1993 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और वो ये खिताब जीतने वाले पहले गीतकार बने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज के कलाकार थे मजरू सुल्तानपुरी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किस्सा गोई। लीजिए सुनिए ताई इसरी की कहानी का दूसरा भाग। कहानीकार हैं कृष्णा चंदर, वाचन स्वर हैं नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

0: पास खामोशियाँ तो कभी जिंदा दिली की उमंग।
1: क्या बात है। और दोस्तों, आज अपने इस प्रोग्राम में जिस अफसाना निगार की जज्बाती और कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी को चुनकर आप सबके साथ साझा करने के लिए हम आए हैं, उनकी कहानी में रोमानियत और यथार्थ का अद्भुत समन्वय मिलता है। जब अपनी बात करते हैं वो, तो मालूम होता है कि उसमें तो झलक सारे समाज की बातों की दिखाई दे रही है।
0: बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब मुझे लगता है कि साथियों को थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि इतनी सारी बातें कह दी और नाम नहीं बताया। तो देखिए साथियों, हम बेहद कामयाब लोकप्रिय कहानीकार कृष्णचंद्र साहब की बात कर रहे हैं, जिनके कृतित्व के बारे में लिखते हुए उर्दू अदब के सशक्त हस्ताक्षर अली सरदार जाफरी साहब ने बखूब कहा। सच्ची बात तो ये है कि कृष्णचंद्र की नस्र पर मुझे रश्क आता है। वो बेईमान शायर है जो अफसाना नगार का रूप धर के आता है और बड़ी बड़ी महफिलों और मुशायरों में हम सब तरक्की पसंद शायरों को शर्मिंदा करके चला जाता है। वो अपने एक एक जुमले और फकरे पर गज़ल के अशआर की तरह दहाद लेता है और मैं दिल ही दिल में खुश होता हूँ कि अच्छा हुआ कि इस जालिम को मिसरा मौजू करने का सलीका ना आया, वरना किसी शायर को पनपने न देता।
1: कितनी खूबसूरती के साथ एक एक के जो शब्द थे वो सीधे दिल तक उतर रहे थे कि किसी की तारीफ का ये तरीका भी हो सकता है, वो भी बेमिसाल लाजवाब सा नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, कृष्णचंद्र उर्दू फिक्शन की वो कद्दावर शख्सियत हैं जिनकी कला में विविधता, रंगारंगी, ताजगी, रोमानियत, वास्तविकता, विद्रोह, हास्य और व्यंग सभी कुछ शामिल दिखाई देते हैं। उन्होंने दर्जनों उपन्यास और लगभग 500 से अधिक कहानियाँ लिखीं और आज हम उन्हीं की लिखी दिल को छू लेने वाली एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है ताई इसरी। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
0: ग्रैंड मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से लौटने पर पहली बार उसकी मुलाकात ताई इसरी से हुई थी। ताई इसरी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। वो शादीशुदा होकर भी एक तरह से कुंवारी थी। उनका शौहर जालंधर में रहता था और ताई इसरी लाहौर में, मगर अकेली होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को पूरे भरपूर अंदाज में जिया।
1: मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी का फाइनल कोर्स कर रहा था और अपने बड़े भाई की शादी पर चंद रोज के लिए लाहौर आ गया था। यही शाही मोहल्ले के करीब कूचा ठाकुर दास भी हमारा जहां आबाई घर था। मेरी मुलाकात पहली बार ताई इसरी से हुई।
0: ताई इसरी हमारी सगी ताई तो ना थी, लेकिन ऐसी थी कि उन्हें देखकर हर एक का जी उन्हें ताई कहने के लिए बेकरार हो जाता था। मोहल्ले के बाहर जब उनका तांगा आकर रुका और किसी ने कहा, लो ताई इसरी आ गई, तो बहुत से बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें इन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। दो तीन ने सहारा देकर ताई इसरी को तांगे से नीचे उतारा, क्योंकि ताई इसरी फरबानदाज थी और चलने से या बातें करने से या महज किसी को देखने से ही उनकी सांस फूलने लगती थी।
1: दो तीन रिश्तेदारों ने एक बारगी अपनी जेब से तांगा के किराए के पैसे निकाले, लेकिन ताई इसरी ने अपनी फूली हुई सांसों में हंसकर सबसे कह दिया कि वो तो पहले ही तांगे वाले को किराए के पैसे दे चुकी हैं। और जब वो यूं अपनी फूली सांसों के दरमियान बातें करती करती हंसी तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई।
0: दो तीन रिश्तेदारों का चेहरा उतर गया और उन्होंने पैसे जेब में डालते हुए कहा, ये तुमने क्या किया ताई, हमें इतनी सी खिदमत का मौका भी नहीं देती हो। इस पर ताई ने कोई

0: जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने करीब खड़ी हुई एक नौजवान औरत से पंखी ले ली और उसे झलते हुए मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ताई इसरी की उम्र 60 से कम न होगी। उनके सर के बाल खिचड़ी हो चुके थे और उनके भरे भरे गोल मटोल चेहरे पर बहुत अच्छे लगते थे। उनका फूली फूली सांसों में मासूम बातें करना तो सबको ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखें बड़ी गैर मामूली नजर आईं। उन आंखों को देखकर मुझे हमेशा धरती का ख्याल आया है, मीलों दूर तक फैले हुए खेतों का ख्याल आया है। इसके साथ साथ ये भी ख्याल आया है कि इन आंखों के अंदर जो मोहब्बत है इसका कोई किनारा नहीं, जो मासूमियत है इसकी कोई थाह नहीं, जो दर्द है इसका कोई दरमा नहीं।
1: मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी औरत के चेहरे पर नहीं देखी जो इस कदर वसी और बेकनार हो कि जिंदगी का बड़े से बड़ा और तलख से तलख तजुर्बा भी उनके लिए एक तिनके से ज्यादा हैसियत ना रखे। ऐसी आंखें जो अपनी पिनाइयों में से सब कुछ बहा ले जाए, ऐसी अनोखी माफ कर देने वाली, दरगुजर कर देने वाली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ताई इसरी ने कासनी शाही का घाघरा पहन रखा था जिस पर सुनहरी गोटे का लहरिया चमक रहा था। उनकी कमीज बसंती रेशम की थी जिस पर जरी के फूल कढ़े हुए थे। सर पर दोहरे मलमल का किरमिजी दुपट्टा था, हाथों में सोने के गोखरू थे। जब वो घर के दालान में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर मच गया। बहुएं और खालाएं और नंदे भावजे, मौसियां और चाचियां सब ताई इसरी के पांव छूने को दौड़ी। एक औरत ने जल्दी से एक रंगीन पीढ़ी खींचकर ताई इसरी के लिए रख दी और ताई इसरी हंसते हुए उस पर बैठ गई और बारी बारी सबको गले लगाकर, सबके सर पर हाथ फेर कर सबको दुआ देने लगी।
0: और उनके अकरीब हीरो महरी की बेटी सूत्री खुशी से अपनी बाछें खिलाए जोर जोर से पंखा झल रही थी। ताई इसरी घर से रंगीन खपच्ची की एक टोकरी लेकर आई थी जो उनके अखदमों के उनकी पीढ़ी के पास ही पड़ी थी। वो बारी बारी से सबको दुआएं देती जाती और खपच्ची वाली टोकरी खोलकर उसमें से एक चवन्नी निकाल कर देती जाती। कोई 100 चवन्नियाँ उन्होंने अगले 20 मिनट में बांटती होंगी। जब सब औरतें और मर्द, लड़के और बच्चे, वाले उनके पांव छूकर अपनी अपनी चवन्नी ले चुके तो उन्होंने अपनी थोड़ी ऊंची करके पंखा झलने वाली लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तू कौन है? मैं सूत्री हूँ, बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया। आए हाय, तू जय किशन की लड़की है, मैं तो भूल ही गई थी तुझे। आजा आजा, गले से लग जा।
1: ताई इसरी ने उसको गले से लगा लिया, बल्कि उसका मुंह भी चूम लिया। और जब उन्होंने उसे अपनी खपच्ची वाली टोकरी से निकालकर चवन्नी दी तो घर की सारी औरतें कहकहे मारकर हंस पड़ी और मौसी करतारो अपनी नीलम की अंगूठी वाली उंगली नचाकर बोली, ताई ये तो जय किशन की बेटी सूत्री नहीं है, ये तो हीरो महरी की बेटी है।
0: हाय, मैं मर गई, ताई इसरी एकदम घबरा कर बोली, उनकी सांस फूल गई। हाय, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, मैंने उसका मुंह भी चूम लिया है, अब क्या करूं? ताई इसरी ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान निगाहों से मोहरी की बेटी सूत्री की तरफ देखा जो अब इस तरह धुतकारे जाने पर सिसकने लगी। यकायक ताई को उस पर रहम आ गया, उन्होंने फिर उसे बाह से पकड़कर चिमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तो तू अनजान है,

0: तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन में तो परमेश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है? मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना ही पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? एक चवन्नी और ले।
1: ताई इसरी से दूसरी चवन्नी पाकर महरी की बेटी सूत्री अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। ताई इसरी ने एक बाजू उठाकर पूरे दालान में गुजरती हुई हीरो महरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए पानी रख दे, तुझे भी एक चवन्नी दूंगी। इस पर सारी महफिल लोटपोट हो गई। ताई इसरी को कई लोग चवन्नी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया युधराज ने ताई इसरी से शादी की थी, उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही थी। सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया युधराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थी कि जब उनकी शादी गांव की इस सीधी साधी लड़की से हुई, तो शादी के पहले रोज ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद ना आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, मगर किसी तरह की सख्ती नहीं करते थे।
0: ताया युधराज हर माह 75 रुपए उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी, अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी। और ताया युधराज जलंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई कई साल अपने गांव नहीं जाते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैके वालों ने ये भी चाहा कि उनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई उसके लिए भी राजी न हुई। वो ऐसे इन्हिमाक से अपने ससुराल के लोगों की खिदमत करती रहीं कि ससुराल वाले खुद उन्हें अपनी बेटी और बहू से ज़्यादा चाहने लगे। ताया युधराज के बाप मानकचंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई इसरी के सुपुर्द कर दी थी और सास भी इस हद तक चाहने लगी थी कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकालकर ताई इसरी की तहवील में दे दिए थे।
1: वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता कि जवानी में कैसी रही होंगी, मगर ताई इसरी को देखकर कभी ये ख्याल भी ना आया। हमेशा यही ख्याल आता कि ताई इसरी शायद बचपन से बल्कि जन्म से ही ऐसी पैदा हुई होंगी। पैदा होते ही उन्होंने अपनी माँ को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में ये भी कहा होगा, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए ये लो एक चवन्नी। शायद इसीलिए अपने शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया युधराज हमारे रिश्तेदारों की नज़र में शराबी कबाबी थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई इसरी की जिंदगी बर्बाद न करना चाहिए था। मगर जाने क्या बात थी कि ताई इसरी को कतन अपनी जिंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था।
0: उनके तर्ज अमल से मालूम होता था, जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के सुख और दुख में शामिल होने और खिदमत करने के लिए तैयार नजर आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ कोई गम हो और उसमें हिस्सा ना बटाए। ताई इसरी के शौहर अमीर थे, मगर वो खुद तो अमीर न थी। 75 रुपए जो उन्हें माहवार मिलते थे, वो उन्हें हमेशा दूसरों पर खर्च कर देती थीं। मगर वो सस्ते जमाने के 75 रुपए थे, इसीलिए बहुत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। मगर लोग उनसे उनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से सिर्फ प्यार नहीं करते थे, ऐसे ही बहुत से मौके

0: ले आते थे जब ताई इसरी की जेब में एक छदाम तक न होता था। उस वक्त भी लोग बेमज़ा न हुए, बल्कि यही कहते हुए सुने गए कि ताई इसरी के चरण छू लेने से ही दिल को शांति मिल जाती है।
1: मगर जितनी अच्छी ताई इसरी थी, ताया युधराज उतने ही बुरे थे। 30 बरस तक तो उन्होंने ताई इसरी को अपने माँ बाप के घर गांव में ही रखा, और जब उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया, घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए, शादियां करके और अपने घर बसा के दूसरी जगहों पर चले गए, तो उन्हें ताई इसरी को भी जालंधर बुलवाना पड़ा। मगर यहाँ ताई इसरी चंद दिनों से ज़्यादा न रह सकी, क्योंकि पक्का बाग के मुअज्जिद पठानों की एक लड़की से ताया युद्ध ने याराना गाँटने की कोशिश की थी। नतीजे में उन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई इसरी से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे जिंदा छोड़ दिया है, अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चली जाओ, वरना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ताई इसरी इस वाकये के चंद रोज बाद ही ताया को लेकर लाहौर आ गई।
0: मोहल्ला वंजारा में उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ भी ताया युधराज का व्यापार चंद महीनों में चमक गया। इसी असनाए में उन्होंने शाही मोहल्ले की एक तवाइफ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, और होते होते ये अक़स्सा यहाँ तक बढ़ा कि मुस्तक़ल तौर पर इसी लक्ष्मी के घर रहना शुरू कर दिया था और मोहल्ला वंजारा में ख़दम तक न धरते थे। लेकिन ताई इसरी को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्हें इस अमल का इत्ता सा भी मलाल हुआ होगा। ये वो ज़माना था जब ताया युधराज और लक्ष्मी तवाइफ का क़स्सा जोरों पर था। उन्हीं दिनों हमारे बड़े भाई की शादी हुई। शादी में ताया युधराज तो शरीक न हुए, लेकिन ताई ने रिश्तेदारों, मेहमानों और बारात की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिया।
1: उनकी खुश मिजाजी से पेचीदा गुत्थियां भी सुलझ गईं, चेहरे पर चढ़ी हुई तेवरियां उतर गईं और जबान शिकनों से साफ और मुनव्वर होती गई। इसमें ताई की कोशिश का कोई दखल न था। सुकून की शुआएं गोया खुद ब खुद उनके जिस्म से फूटती थीं। उन्हें देखते ही हर एक का गुस्सा उतर जाता, पेचीदा से पेचीदा उलझने खुद ब खुद सुलझ जाती, घर भर में बशाशत बिखर जाती। ऐसी थी ताई इसरी। मैंने ताई इसरी को कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किस्मत का गिला करते नहीं देखा। हाँ, एक बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, और वो वाकिया उसी शादी से मुतालिक है।
0: बड़े भाई साहिब तो रात भर शादी की बैरी पर बैठे रहे। सुबह के 5 बजे शादी के बाद लड़की वालों ने अपने घर के हाल को जहेज का सामान दिखाने के लिए सजा दिया। पुराने जमाने थे, उस जमाने में सोफों की बजाय रंगीन पीढ़ियाँ दी जाती थीं और मुनक्कश पायों वाले पलंग दिए जाते थे। उस जमाने में ड्राइंग रूम को बैठक या दीवान खाना कहा जाता। मेरे बड़े भाई के ससुर मिलिट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चूँकि वो पहले हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने जहेज में बहुत कुछ दिया था और सारी ही नए फैशन की चीज़ें दी थीं। हमारी बिरादरी में पहली बार जहेज में सोफ़ा सेट दिया गया। सारी बिरादरी में उस सोफ़ा सेट की धूम मच गई। दूर दूर के मोहल्लों से भी औरतें अंग्रेजी पीढ़ियों को देखने के लिए आने लगी। ताई इसरी के लिए भी सोफा सेट देखने का पहला मौका

0: था। पहले तो बड़ी हैरानी से उसे देखती रही, उस पर हाथ फेर कर मन ही मन कुछ बड़बड़ाती रही। आखिर उनसे रहा न गया तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, वे काका, इसको सोफा सेट क्यों बोलते हैं?
1: अब मैं इसका जवाब क्या देता, सर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ताई।
0: अच्छा, तो इसकी दो कुर्सियां छोटी क्यों हैं और वो तीसरी कुर्सी लंबी क्यों है?
1: मैं फिर लाजवाब हो गया, खामोशी से इनकार में सिर हिला दिया। ताई देर तक सोचती रहीं, फिर यकायक जैसे उनकी समझ में कुछ आ गया, उनका चेहरा उनकी मासूम सी मुस्कुराहट से रोशन हो गया। बोल उठी,
0: मैं बताऊं?
1: बताओ ताई।
0: देखो, मेरा ख्याल है कि ये लंबा सोफा इसलिए बना है जब दोनों मियाँ बीबी में सुलह हो तो वो दोनों इस लंबे सोफे पर बैठें, और जब उन दोनों में लड़ाई हो तो अलग अलग इन दो छोटे छोटे सोफों पर बैठें। सचमुच ये अंग्रेज बड़े अकलमंद होते हैं, जब ही तो हम पर हुकूमत करते हैं।
1: ताई की दलील सुनकर महफिल में एक जोरदार कहकहा पड़ा, मगर मैंने देखा कि ताई ये सोचकर और बात कहकर चुप सी हो गई। क्या उस वक्त उन्हें अपना और अपने खाविंद का झगड़ा याद आया था? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जब गौर से उनकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया हो।
2: दोस्तों, आज हमने कृष्णचंद्र साहब द्वारा लिखी कहानी ताई इसरी का पहला भाग सुना।
1: नेहा जी,
3: जी,
1: जब ये कहानी हम लोग पढ़ रहे थे
3: जी,
1: तो बहुत सारी बातें जहन में आ रही थी कि हमारी भी मुलाकात हमारे जीवन काल में, हमारे रिश्ते नाते जो हैं या आसपास का जो हमारा माहौल होता है उसमें कितने लोग हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं। कुछ लोग जहन में बस जाते हैं, कुछ बस के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रूह में उतर जाते हैं। तो मुझे लगता है ताई इसरी का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो इसी तरह की विशेषताओं से भरा हुआ है जो जहन में होते हुए दिल में उतरता है और फिर रूह में समा जाता है। आप क्या कहेंगी?
0: सच कहूँ, जब मैं कहानी पढ़ रही थी ताई इसरी, तो पहले तो लगा कि ताई इसरी क्या है, लेकिन जैसे ही पढ़ती चली गई मुझे समय का भान नहीं रहा और एक खास तरह का भाव पहली बार मैं महसूस कर रही थी कि क्या शब्दों को पढ़ने के साथ हम उस भाव में डूब सकते हैं क्या? तो शायद कैरेक्टर में ये दमखम होता है और जो कहानीकार होते हैं वो इस तरह से शब्दों को रचते हैं कि हम वही भाव महसूस कर सकते हैं, जो कि ये कहानी आज़ादी से पहले की बात है इस कहानी में, और हम आज आज़ादी के जो इतने बरस बीत चुके हैं तभी भी हम वो हूबहू भाव को महसूस करते हैं। वो सफ़ेद बालों वाली महिला जिसके झोली में सबके लिए दुआएं हैं, हाथों से जिसके बरकत बरसती हो, आँखों से नूर बरसता हो।
1: बिल्कुल सच कह रही हैं। और नेहा जी, उत्सुकता बहुत सारी हमारे दोस्तों के जहन में, दिलो दिमाग में भी चल रही होगी कि आगे ये कहानी किस मोड़ की तरफ जाएगी। तो उसके लिए तो थोड़ा सा विराम की ज़रूरत है, एक सप्ताह का वक्फा लेना है हमें भी। और एक सप्ताह के बाद जब हम आएंगे तो हम सुनेंगे ताई इसरी का दूसरा भाग। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो समय हो रहा है विदा लेने का। तो नेहा जी
3: जी,
1: अब चलते हैं और दोस्तों से कहते हैं नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किस्सा गोई। कहानीकार थे कृष्णा चंदर और वाचन स्वर थे नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले

0: साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
0: भारत एशियाई खेल 2026 के 12वें दिन पदक तालिका को बढ़ने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर रहा है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं होनी है। भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखुयांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said over the 100-year journey of UPSC, the generations, governments, technology and syllabi have changed, but the trust in this institution remains as unwavering as ever. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, Mr. Modi stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office, but to public service. He said today, 21st century India is moving forward with a new work culture and its core principle is pro-people, proactive, good governance.
3: Hamari civil services se bhi naye badlav ki maang karti hai. इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
2: The program marks the culmination of year-long celebrations that commenced on the 1st of October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926.

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 4 बजे आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। 12:15 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित जसराज का गायन प्रसारित किया जाएगा।

12:30 पर सुने कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति है मधु कुमार की। 1:15 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट, जिसमें आज सुनवा रहे हैं नम्रता श्रीवास्तव की बातचीत मानसिक शांति में सकारात्मक सोच। 2:30 पर सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

शाम 5 बजे सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम और शाम 5:15 बजे युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युव वाणी।

शाम 6:30 पर किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर, जिसमें उषा कुमारी से दीपक राय की बातचीत सुनिएगा। समावेशी फसल बीमा योजना। 7:45 पर सुने सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं नीरज शुक्ला जी। रात 8 होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम और रात 8:30 पर कार्यक्रम सबरस।

रात 9:30 बजे सुने गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों की सूचना। इंद्रोता देवी पत्नी झिंगुरी पट्टी प्रतापगढ़ से सूचित करती हैं। सरिता देवी जिनकी उम्र 30 वर्ष, इकहरा बदन, चेहरा लंबा, रंग सांवला है, लंबाई 5 फीट, ये 25 जुलाई 2026 शाम 4 बजे से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर इंद्रोता देवी पत्नी झिंगुरी पोस्ट पट्टी को सूचित करें। नन्हेलाल पुत्र नाथविंद ग्राम रसुला पट्टी प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं। रियाविंद जिनकी उम्र 13 वर्ष है, इनकी लंबाई 4.5 फीट, रंग सांवला, इकहरा बदन है, ये 9 अगस्त 2026 शाम 6 बजे से लापता हैं। इनके बारे में सूचना मिलने पर नन्हे लाल को सूचित करें। मोबाइल नंबर 9453390972। ये थी खोए हुए व्यक्तियों की सूचना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित जसराज से राग भीम पलासी में ख्याल।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में संघर्ष एक ऐसी चीज है जो उठते बैठते सोते जागते हर समय हमारे साथ रहता है, यानी हर चीज में संघर्ष। अपना सामान पाना हो तो भी संघर्ष, अपना अधिकार पाना हो तो भी संघर्ष, जीवन जीने के लिए भी संघर्ष। यानी संघर्ष के लिए एक गाना मुझे याद आता है कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो भाई, ये संघर्ष भी कुछ इसी तरह से साया बनकर हर इंसान की जिंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और फिर कहा गया है ना, जब कूद पड़े हो दंगल में फिर मंगल क्या अमंगल क्या, सामना सबका करना है फिर कंकड़ क्या और पत्थर क्या, किस्मत के भरोसे तुम अंबर के तारे मत देखो, यदि जीत सुनिश्चित करनी है तो पांव के छाले मत देखो।

मत देखो तुमने कितनी रातें जागकर काटी, क्योंकि मेहनत करने वालों का संघर्ष ही है साथी। और इसके बाद हम आ गए अपने कार्यक्रम के पहले गीत की तरफ, और इस पहले गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति, श्रीजी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, हंडिया से प्रेमचंद यादव, महेंद्र यादव, रेखा यादव, आयुष और अनन्या, प्रतापगढ़ से राजेंद्र और प्रभाकर तिवारी, दादनपुर प्रयागराज से विकास और नीतीश आर्या, मीरापुर से शिवानी और इनके परिवार के अन्य सदस्य, पुलिस लाइन प्रयागराज से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, बाला कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य, आप सभी सुनना चाहते हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस समय श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। इस कार्यक्रम में अगर आप अपनी पसंद के गीतों को सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं एक नंबर जिस पर आप अपने संदेश लिखकर भेज सकते हैं, फिल्म का नाम और गीत के बोल। साथ ही आप जिनके नाम भी लेना चाहते हो उनके नाम भी इसमें लिख सकते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 800-492-6250। नंबर एक बार फिर से 800-492-6250। और इस कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार और बृहस्पति

दीवार को दिन में 12:30 बजे किया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने कार्यक्रम की तरफ। एक उम्र तक आते आते लगता है कि अकेले रहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हर भीड़ अपनापन नहीं देती और हर साथ जिंदगी आसान नहीं करता। कभी कभी अकेलापन कुछ अलग सा लगता है, कुछ को लगता है ये तो नरक हो गया है, हम बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन कम से कम वहाँ दर्द तो आपका होता है, किसी के झूठे वादों का नहीं। ना ही नकली मुस्कानें होती हैं, ना ही बदलते चेहरे और ना ही रिश्तों के पीछे छिपा स्वार्थ। बस आप होते हैं, आपका सच होता है और उसे स्वीकार करने की आपकी अपनी हिम्मत। इसलिए कभी भी अकेले होने से मत डरिए, क्योंकि गलत लोगों के बीच में खो जाने से लाख दर्जे अच्छा है अकेले रहना। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे ही गीत की तरफ। आवाज़ है मुकेश की और गाना तो आपको समझ में ही आ गया होगा, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। तो इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी ज्योति प्रहलाद और मुरली वर्मा, रतलाम से जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश, हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, गुजरात से धीरज बी रवारी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना। फिल्म का नाम है संबंध।

अगला गीत सुनवाने से पहले सुनिए ये पंक्तियाँ। बेवकूफी सही मगर थोड़ी ना समझ ही रहने दो, नहीं जाननी हर बात मुझे, कुछ सवालों को अनजान ही रहने दो, नहीं तोड़ने ये खूबसूरत सपने, कुछ ख्वाबों को ख्वाब ही रहने दो, नहीं भरनी पूरी किताब अपने सपनों से, कुछ पन्नों को अधूरा ही रहने दो। तो आते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है। तो इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। छत्तीसगढ़ से छुन्नूलाल, अनीता, पुष्पा श्रीनिवास, अंजू, योगिता, रज्जन साहू और इनके परिवार के अन्य सदस्य। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

कितनी खूबसूरत सी ये पंक्तियां हैं कि हम सब अपने अपने मौसम लेकर चलते हैं। किसी की बातों में धूप होती है तो किसी की आंखों में बरसात। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अगर आप पास बैठें तो मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। शायद इसलिए हर रिश्ता प्रेम नहीं होता, कुछ लोग बस सुकून होते हैं। हर मुलाकात कहानी नहीं बनती, कुछ मुलाकातें ठहराव भी बन जाती हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, और ये फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस। इस गीत की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की है। सदर बाजार राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। औरंगाबाद से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके। छोटी बलिया मुंबई से अहमद बाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, आशु और इनके परिवार के अन्य सदस्य। कालेगांव से श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राधे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश सर्वत, कल्पना सानवी, प्रणाली और इनके परिवार के अन्य सदस्य। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गाना।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए प्रेरित हों।
1: हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है और नागरिकों की सेवा करना सबसे जरूरी है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल और एकीकरण पर बहुत जोर दे रही है। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर श्री सिंह ने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत कर दिया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर और कुशल हो जाएगा। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने का आग्रह किया।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए।

0: यह तभी संभव है।
1: दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। फाइनल शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। एशियाई खेल 2026 में भारत ने नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश ने आज मंगोलिया के गंखू यांग गनबातार को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराकर पुरुषों के 97 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। गणेश ने कांस्य पदक के प्लेऑफ में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सिंह, यूपी के इंचार्ज विनोद तावड़े, सभी शरीक इंचार्ज और पार्टी के कई सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान राज्यसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। चारों शरीक इंचार्जों को काम के नए शोबे देने का भी मंसूबा है। अपने दो रोज़ा दौरे के दौरान तावड़े अवध और कानपुर इलाकों की अलग अलग मीटिंगें भी करेंगे। वज़ीराज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफ़र कौम की खिदमत के अज़्म और मुसलसल अवामी खिदमत के जज्बे से चल रहा है। खिदमत और अच्छी हुक्मरानी के इस विज़न के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत के हदफ की सिमत में काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी बाख्तियार बनाने के ज़रिए हुकूमत के ये इकदाम लोगों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली ला रहे हैं। आज हमारी खसूसी सीरीज़ में हम इस पर बात करते हैं कि किस तरह ये ख्वाब आत्मनिर्भर भारत के ज़रिए हकीकत में तब्दील हुआ है।
1: आत्मनिर्भर भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी शुरुआत साल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका उद्देश्य देश में उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI, कृषि अवसंरचना कोष, मेक इन इंडिया और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता जैसी योजनाओं के जरिए देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर पिछले साल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आत्मनिर्भरता विकसित भारत की नींव है।
2: एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ, और जब आत्मनिर्भरता खत्म होने लगती है तो सामर्थ्य भी निरंतर क्षीण होता जाता है। और इसलिए हमारे सामर्थ्य को बचाए रखने, बनाए रखने और बढ़ाए रखने के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत अनिवार्य है।
1: आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य एक मजबूत, सक्षम और संकटों का सामना करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना है, ताकि वह अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सके और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सके। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाजवादी पार्टी के दो उम्मीदवारों ने कल लखनऊ में राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। इनमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी शामिल हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब ग्रामीण बहनें सुने अपना कार्यक्रम पनघट।

0: गंगा, अरे हम तो उसे कहा राम राम।
1: राम राम जया बहनी और पनगढ़ सुने बैठी सब बहनी हरन के गंगा और
0: जया के
1: राम राम, राम। और बताओ जय बहनी का हालचाल।
0: देखो दोनों तरफ से जो ने हालचाल की चिंता रही है,
1: बिल्कुल
0: पूछो हम वो पूछे,
1: सखी के हालचाल न ले तब के कहे हालचाल ले।
0: हाँ देखा हमार हालचाल तो अच्छा है गंगा, तू बतावा तुहार का हालचाल है।
1: हमार तो बहनी देखा एकदम बढ़िया बा। जय बहनी आज देखा कि कुछ लोग केवल देश हित के बारे में सोचते हैं, कहां से कि उनके जीवन के उद्देश्य होते खाली देश के हित हो जाए।
0: बिल्कुल सही, और गंगा सही कहूँ तू ये बात कि यदि आज यदि तो बात की हम बात समझ पाई है तो जौन तू हमसे कहे चाहो तो ये बात है कि देखा कल है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का गांधी जयंती पूरा देश मनावत है।
1: हाँ 2 अक्टूबर ऐसा तारीख जैसे जेका खाली हम सब कैलेंडर पे दर्ज एक दिन के रूप में ना देखित बहनी, ये दिन हमें याद दिलावत है कि एक शख्स जे बिना तलवार लिए एक साम्राज्य के सामने सत्य की ताकत खड़ी की।

0: बिल्कुल सही। और देखा, गंगा गांधी जी के बारे में तो जितना हम लोग चर्चा करी उतना कम है। कहे से कि देखा, उनकर जो उन भी एक-एक जो उन्हें बात माँ देश हित मतलब दिखाई देत रहा, उनके हर एक मतलब चीज़ में हम लोग देश हित देखत रहे। इतना कुछ उन देश के लिए करे नहीं कि ओका जितना सोचा जाए या समझा जाए और कहा जाए वो कम है।
1: वो बिना हिंसा के अहिंसा के साथ, है ना,
0: बिल्कुल
1: बिना मतलब
0: अहिंसा।
1: शस्त्र उठाए, देखा वो इंसान के जगह अहिंसा के कमजोरी ना है बल्कि सबसे बड़ी शक्ति बनाए।
0: बिल्कुल
1: उनका व्यक्तित्व जो वो सादगी से भरा रहा, वो सादगी के आपन आभूषण बनाए और सत्य के आपन जीवन,
0: बिल्कुल
1: है ना। तो आज हम सभी बात करें महात्मा गांधी जी के, कल है गांधी जयंती 2 अक्टूबर के, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो गांधी जी के जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में भय रहा। जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी इनके नाम रहा। आगे चल के ये पूरी दुनिया के लिए महात्मा गांधी के नाम से जाने गए।
0: बिल्कुल सही। और देखा गंगा, गांधी जी सत्य का केवल बोले की चीज नहीं बल्कि जीवन जीए के प्रयोग मानत रहे। यही कारण उनकी आत्मकथा का नाम सत्य के प्रयोग रखा हुआ। और
1: बिल्कुल
0: देखा वे जो उन्हें स्वच्छता और स्वतंत्रता जितना ही महत्वपूर्ण मानत रहे, उनका कहना रहा कि देखा साफ सफाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है।
1: बिल्कुल बनी गांधी जी, देखा कहते रहे ना कि उनके जीवन ही जैसे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, कितनी सरल बात है, लेकिन शायद यह वाक्य उनके सबसे बड़ी खूबसूरती रही कि
0: बिल्कुल
1: वो खाली भाषण ना दियन, वो अपने जीवन में वही विचारन के जिये के कोशिश कहन,
0: बिल्कुल
1: जैसे कि बात दूसरे जोन बात दूसरे से करत रहन है। लेकिन देखा आज की दुनिया में जब हर किसी के पास आपन बात साबित करे के जल्दी बा, जब बहस में जीतब अक्सर सच जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जात है, छोटी छोटी बात गुस्से में बदल जात है, तब गांधी जी के सत्य और अहिंसा के विचार हमें कहत है कि हर लड़ाई लड़ब जरूरी ना होत, हर
0: बिल्कुल
1: जवाब तुरंत देब जरूरी ना होत, हर असहमति दुनिया दुश्मनी ना होते।
0: बिल्कुल। और
1: तो
0: देखा दुश्मनी, देखा वो जो उन्हें गांधी जी जो रहे और देखा शांति में विश्वास रखत रहे, है ना। तो जब वो बात जैसे उनका लगे कि कोनो सामने वाला व्यक्ति है इसे ओके मतलब उनका ऐसे लगे कि वो अच्छा नहीं है या अच्छी सोच नहीं है या कोनो बात ऐसी है जो हमका वो मतलब गलत तरीके से बोले चाहते, तो हमेशा ओके सामने जो उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपन बात रखत रहे और उनका ये समझावत रहे कि देखा हमेशा लड़ाई कर भी हर समस्या का समाधान नहीं,
1: बिल्कुल
0: शांति से भी कई समस्या का समाधान हम सब लोग निकाल सके थे।
1: निकाल सके थे। और भारत की आजादी की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी ना हुई बहनी, ये करोड़न भारतीयों के संघर्ष की कहानी है, जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा, विद्यार्थी, हर वर्ग के लोगन स्वतंत्रता आंदोलन में अपन भूमिका निभाएन। देखा गांधी जी लोगन के एकजुट करे के प्रयास किएन और स्वतंत्रता आंदोलन के जन आंदोलन के स्वरूप दे में महत्वपूर्ण भूमिका
0: भूमिका निभाएं।
1: निभाएन। जैसे
0: बिल्कुल
1: कि देखा असहयोग आंदोलन हो गए, नमक सत्याग्रह हो गए, भारत छोड़ो आंदोलन हो गए, ये खाली इतिहास के किताबन के अध्याय न हो, एकरे पीछे लाखों लोगन के साहस, त्याग और संघर्ष जुड़ा हुआ।
0: बिल्कुल। और देखा गंगा एक बात और कि देखा हम सब लोग जानी थी कि गांधी जी का हम सब लोग बापू भी कह के बुलावत रहे,
1: हाँ
0: कहे से देखा ये उनका प्रेम का नाम रहा। और देखा
1: बिल्कुल
0: उनमा इतना प्रेम भरा रहा कि देखा कोनो भी आम इंसान ऐसे तो रहे इतने बड़े मतलब पद पर और इतना कुछ देश के लिए करें लेकिन इतने सरल इतने सीधे कि लोग
1: बिल्कुल
0: जब उनके आसपास रहें तो उनका कभी ये महसूस ही ना हो कि बहुत बड़ा कोनो आदमी है। इतने
1: बिल्कुल
0: आपका अपने
1: उनके जीवन हमें सबके ही बतावत है कि महान करे के लिए दिखावा जरूरी ना है ना।
0: बिल्कुल
1: उनका पहनावा देखा कितना सरल रहा, उनके
0: बिल्कुल
1: जीवन शैली कितनी सरल रही, लेकिन उनके विचारन की ताकत असाधारण रही, है
0: बिल्कुल सही।
1: ना।
0: और देखा जो उन्हें हमारे जो महात्मा गांधी रहे जो बापू रहे, आज़ादी की लड़ाई भी देखा लड़े, सत्याग्रह आंदोलन भी चलाए, अहिंसा के लिए कितना कुछ करें, और
1: बिल्कुल
0: आज़ादी में भी उनके हमारे सबके देश की आज़ादी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो
1: बिल्कुल
0: देखा जो उन्हें उनकी बात जितनी की जाए इस गंगा अपने पनघटे पे उतना कम है, पर देखा उनका याद करब इतने, कल उनकी जयंती है तो पर याद करब हम सब लोगन का चाहिए कि देखा उनका नमन करा जाए उनके बारे में, मतलब उदिन कल का दिन उनके लिए पूरा दिन

0: मतलब कौन, वैसे तो कहा जाए गंगा देखा जाए तो एक दिन काफी नहीं
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल।
0: ना।
1: गांधी जी की सबसे बड़ी ताकत शायद यह रही कि उन लोगों के खाली आजादी के लिए ना बल्कि अपने भीतर के बदलाव के लिए भी प्रेरित करते हैं।
0: बहुत बिल्कुल सही, गंगा देखा उजो ने कितना कुछ करे लोगन के लिए, तो इतने इतना कुछ करेने की देखा, मतलब भुलाया जाए नहीं सकत, देश के लिए लोगन के लिए इतना आम मतलब बन के वो काम करे नहीं कि जो ने सब कुछ उनके लिए जितना भुला जाए वो कम है।
1: साधारण व्यक्तित्व के साथ और असाधारण प्रतिभा के साथ वो हमें सबके सीख दिए कि दिखावा ही सब कुछ ना हो, दिखावा
0: बिल्कुल
1: से ज्यादा कर्म जरूरी है।
0: देखा बिल्कुल। और देखा जौन समय गांधी जी रहे उतने समय देखा कि जौन हमार जौन विरोधी सरकार रही या जौन भी रही देखा उनके प्रति भी कभी भी कोनो मतलब हिंसा के भाव नहीं
1: हाँ,
0: रखे
1: अंग्रेजन के
0: है ना।
1: खिलाफ एकदम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करके और
0: लोगन के साथ देखा नमक हाँ नमक आंदोलन में भी देखा कितना कुछ हो शांतिपूर्ण तरीके से अपन बात रखब। वैसे सही बात है कि मतलब उनसे उनके वो जब ऐसे लोग हमार जो ने प्रमुख लोग हैं तो ऐसे लोगन से हम सब लोगन का भी सीख लेकर चाहिए कि देखा हिंसा तो बहुत आम बात है पर जब अहिंसा के साथ अपनी बात रखा जाए कोनों के सामने तो कहे नहीं कैसा भी कोई भी व्यक्ति हो कहे ना पिघल जाए।
1: बिल्कुल। तो यही के साथ ही अब देखा इतनी अच्छी जानकारी वाली बात भी, और यही के साथ ही अब चलो तो हम एक ठो गवनई बढ़िया से सुनाए दे
0: बिल्कुल।
1: सरोज सिन्हा बहनी से।
0: तो
1: चलो
0: चला
1: सुना
0: सुना
1: जाए।
0: जाए।

0: देखा गंगा
1: कितना इंतजार रहा ये गाने में
0: देखा ये जब पिया दूर चल जाते तो देखा याद तो आवती, ये बात तो सच है। और देखा जब अब अपने पनघटे पे एक थे वार्ता है, और वार्ता है मानसिक शांति में सकारात्मक सोच, तो और देखा वार्ताकार है नम्रता श्रीवास्तव बहनी। तो चलो गंगा जाना जाए कि मानसिक शांति से सकारात्मक सोच ये दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए,
1: चलो सुना जाए, बहनी हरण भी सुने।
2: बनाए रखना जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाने के लिए बेहद जरूरी है। जब हमारा मन शांत होता है तब सकारात्मक विचारों को आकर्षित करना और उन्हें जीवन में उतारना बहुत आसान हो जाता है। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें कुछ मुख्य पहलू, दैनिक आदतों और मनोवैज्ञानिक तरीकों पर ध्यान देना होगा। हमारा मन अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में भटका रहता है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो मन की अनावश्यक ऊर्जा बचती है जो सकारात्मकता में बदल जाती है। जब भी मन विचलित हो गहरी और लंबी सांस ले, यह आपके सोच को सकारात्मक में बदल देती है। हमारा मन अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो हमारे पास नहीं है। इसके विपरीत रोज सुबह या रात को सोने से पहले उन 3-5 चीजों की सूची बनाएं जिसके लिए आप भगवान या जीवन के प्रति आभारी हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से मस्तिष्क का ध्यान कमियों से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होता है जिससे मन में गहरी शांति और सकारात्मकता आती है। अपने विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें। एक दर्शक की तरह देखें कि आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, जैसे मैं यह नहीं कर पाऊंगा, उसे तुरंत एक सकारात्मक या कठिन है लेकिन मैं सीख सकता हूं और कोशिश कर सकता हूं, जिससे आपकी नकारात्मक सोच घटेगी। हम दिन भर सोशल मीडिया, न्यूज़ या टीवी पर जो देखते हैं उसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है। सकारात्मक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें। ऐसे लोगों की संगति से बचें जो हर बात में कमियां निकालते हैं या गॉसिप करते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जिससे आपकी सोच तथा विचार भी सकारात्मक बनी रहे, जिससे आपका मानसिक संतुलन बना रहता है। हम अक्सर दूसरों के प्रति बहुत दयालु होते हैं लेकिन खुद के प्रति बहुत सख्त। जब आपसे कोई गलती हो तो खुद को कोसने की बजाय एक अच्छे दोस्त की तरह समझाएं, जिससे आपके खुद के प्रति आत्मविश्वास बना रहे। रोज सुबह खुद से कहें, मैं शांत हूँ, मैं सक्षम हूँ और आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन अवसरों से भरा है। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच रखने के लिए हमें एक और बात पर ध्यान देना चाहिए जो है शारीरिक तथा मानसिक संतुलन बनाए रखना। कम से कम 7-8 घंटे की नींद ले। थका हुआ दिमाग कभी भी शांत तथा सकारात्मक नहीं हो सकता। थके हुए शरीर में क्रोध अत्यधिक तेजी से विकास होता है जिससे जो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए वह भी हमसे हो जाता है। इसलिए हर एक इंसान को 7-8 घंटे की नींद अत्यधिक

अधिक आवश्यक होती है, जिससे हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। मानसिक शांति और सकारात्मक कोष ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में मिल जाए, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही मन को शांत और सकारात्मक रखने के लिए रोज इन अच्छी आदतों का अभ्यास करना पड़ता है। मन की शांति और सकारात्मक सोच एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक मन में उथल पुथल रहेगी, तब तक सकारात्मक विचार टिक नहीं सकते। शांत मन हमारे विचारों को फिल्टर करने की क्षमता रखता है। यह आपको किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने की शक्ति देता है। जितने आपके विचार शांत रहेंगे, आपके विचार उतने ही सकारात्मक रहेंगे। जब आप शांत मन से लगातार सकारात्मक सोचते हैं, तो मस्तिष्क में खुशी और शांति के रासायनिक मार्ग मजबूत होते जाते हैं। मनोविज्ञान में इस तकनीक का उपयोग नकारात्मक सोच के पैटर्न को तोड़ने के लिए किया जाता है। दिन भर हमारे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश ऑटोमेटिक होते हैं। शांत बैठकर अपने विचारों पर ध्यान दें। जब भी कोई निराशाजनक विचार आए, उसे बीच में ही पकड़े और उन विचारों को सही तरीके से शांत मन से समझाएं तथा सुलझाएं, जिससे आपका मन स्थिर तथा खुश रहे। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक एक घंटे पहले फोन तथा सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें। सुबह का पहला घंटा आपके अवचेतन मन के लिए सबसे संवेदनशील होता है। ऐसी किताबें, लेख या वीडियो देखें जो आपके ज्ञान, समझ और आत्मबल को बढ़ाए, जिससे यह समझ आए कि महान लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी सोच तथा विचारों को किस प्रकार सकारात्मक बनाए रखा था। उन गॉसिप बहसों और चर्चाओं से खुद को दूर कर लें जिनका आपके जीवन या विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है। बड़ी सफलताओं के अलावा जीवन की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, जैसे सुबह की ताजी हवा, पीने के लिए साफ पानी, इंटरनेट की सुविधा या किसी अजनबी की एक छोटी सी मुस्कान। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच के लिए रोज रात को सोने से पहले डायरी में विस्तार से लिखें कि आज आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ और क्यों। जब आप विस्तार से लिखते हैं, तो आपका मस्तिष्क उन सकारात्मक पलों को दोबारा जीता है, जिससे मानसिक शांति और गहरी होती जाती है। हम दुनिया से जितना बात करते हैं, उससे कहीं ज्यादा खुद से बात करते हैं। हमारी आंतरिक आवाज ही हमारी किस्मत तय करती है। जितना आप खुद से सकारात्मक सोचेंगे, उतना ही आपका मन शांत तथा खुश रहेगा। शांत मानसिक स्थिति में बोले गए वाक्य सीधे अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, मैं भीतर से शांत, स्थिर और सुरक्षित हूँ। परिस्थिति कैसी भी हो, मेरी मानसिक स्थिति शांति मेरी अपनी जिम्मेदारी है। हर चुनौती में विकास का नया अवसर है। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए, तो खुद को अपराधी ना माने। खुद से वैसे ही बात करें जैसे आप किसी रोते हुए छोटे बच्चे या अपने सबसे प्रिय मित्र को समझाते वक्त करते हैं। ऐसा करने से भी आपका मन शांत अत्यधिक हो जाता है तथा खुद के प्रति नकारात्मक सोच का भाव उत्पन्न नहीं होता। मन में आने वाले विचारों को अच्छे या बुरे का टैग ना दें। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने और जाने दें। लंबे समय तक मन में ना रखें ताकि आपके विचार सकारात्मक ही बनी रहे। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, जो शरीर और मन को रिलैक्स करता है। भोजन करते समय शांत रहें, टीवी या फोन ना देखें। सात्विक तथा ताजा भोजन मन में सत्गुण, शांति और पवित्रता को बढ़ाता है। हफ्ते में कुछ समय पार्क में बिताएं, हरी घास पर नंगे पैर चलें या पौधे की देखभाल करें। प्रकृति की अपनी एक शांत तरंग होती है जो हमारे भीतर सकारात्मकता का विचार करती है।

0: है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब सकारात्मक रहना आसान है। असली परीक्षा तब होती है जब चीजें आपके मुताबिक नहीं होती है। जो स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार कर लें। विरोध करने से मानसिक अशांति बढ़ती है। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि वास्तविकता को मानकर आगे की रणनीति बनाना है। किसी भी समस्या को दो भागों में बांटें, जो आपके हाथ में है, आपका प्रयास, आपका नजरिया, आपकी मेहनत, जो आपके हाथ में नहीं है, दूसरों का व्यवहार, परिणाम, भूतकाल और भविष्य। मानसिक शांति की स्थिति में सकारात्मक सोच को गहराई से स्थापित करना एक कला और विज्ञान दोनों है। जब मन शांत होता है तब वह एक उपजाऊ भूमि की तरह होता है। आप उसमें जैसे विचार बोएंगे वैसी ही आपकी मानसिक स्थिति बनती जाएगी। जब तक आपका मन की स्थिति नकारात्मक विचारों से घिरी रहेगी तब तक आप अपने मन की स्थिति सोच विचार को सकारात्मक नहीं बना सकते। इसलिए अपने मन को शांत रखने के अच्छी अच्छी किताबें, ज्ञान भरी बातों को स्वयं के अंदर जब आप ग्रहण करते हैं तब आपका मन शांत तथा सकारात्मक विचारों से भर जाता है और आप मानसिक शांति में संतुलन बनाए रखते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। जीवन में हर रोज हम ऐसे लोगों से टकराते हैं जो अपने शब्दों या कर्मों से हमें आहत करने की कोशिश करते हैं। कभी अपशब्द, कभी उपेक्षा, कभी जलन भरी नजरें, लेकिन सच्ची शक्ति तब जागृत होती है जब हम इन सबको पार कर शांत रहते हैं। यह मन की वह मजबूती है जो बाहरी तूफानों को अपनी धुन पर नचाती है। मजबूत मन वाला व्यक्ति न केवल खुद खुश रहता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा देता है।
1: गंगा,
2: हाँ बहनी,
1: देखा नम्रता श्रीवास्तव बहनी कितने अच्छे से बताई कि देखा
2: बिल्कुल
1: सकारात्मक सोच का यदि अपने ऊपर हावी रखा तो मानसिक शांति के लिए कहूँ और जाए ना पड़ी, है ना।
2: बिल्कुल यही नाते सबका सकारात्मक सोच के साथ है जिंदगी में आगे बढ़े के चाहिए तो सब अच्छा अच्छा हुई।
1: तो देखा अब यही सकारात्मक सोच के साथ कसना एक गीत सुन लिया जाए।
2: बिल्कुल सुना जाए।
1: और सुनावा थी सरोज सिन्हा बहनी।
2: बिल्कुल।

0: गंगा
1: हाँ बहनी,
0: देखा गीत कितना अच्छा रहा ना।
1: बिल्कुल अच्छा रहा। देखा इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी, इतनी बढ़िया बढ़िया गीत गो नहीं पन घटे पे हो दुआ। तो हम सोचे कि आज अपने रसोईया घर में काओबा।
0: देखा आज अपने रसोईया घर में चटाकेदार मटाकेदार सब कुछ है। और
1: अरे
0: देखा सबसे पहले तो देखा तो का बताई आज उन्हें खूब चटकदार है मटर की भरवा पूड़ी।
1: तो भाई इतनी देर से खूब माकदबा बतावा, हम सोचे थे काओ माकदबा इतनी तेज।
0: बिल्कुल। और देखा हम लाए भी है इसलिए हमका लगा कि कसना आज पनघटे पे भी बता दिया जाए। पर
1: बिल्कुल
0: एक
1: बतावा, हम खात रही हमें दे दे, तू बतावत रहा बहनी हरन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पर तू एक बात और जान ला कि
1: हाँ
0: मटर की भरवा पूड़ी जो हम लाए है एक
1: हाँ
0: 7 जून चटाकेदार चीज है, वो है सिंघाड़े का अचार।
1: अरे वाह, देखा मुंह में पानी आएगा सुनते।
0: हाँ तो ला तू खा और तब तक
1: हाँ
0: हम अपनी बहनी लोगन से बताए।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: बतावा।
0: देखा मटर की भरवा पूड़ी जो है बहुत आसान है। अपने पास यदि मटर है तो का अपना छील के मटर निकाल लिया, ओके बाद ओका धोई लिया और हल्का सा बफाई लिया। ठीक है बफाई के ओका जो ने कुछ लोग देखा बफाई के बनावे थे, कुछ लोग हल्का सा तेले में छोंक भी ले थी
1: हाँ
0: तो जो ने थोड़ी सोंधी हो जात
1: सोंधी
0: है।
1: हो जाती।
0: तो जैसे मन करे तो जो ने जैसे कढ़ैया वाला जो ने छोंक दिया उसमें हींग डाल दिया, जीरा डाल दिया, मिर्चा डाल दिया और मटर डाल दिया, नमक डाल दिया। ओके बाद जो ने
1: और
0: नमक
1: अगर
0: डाल,
1: मिल जाए तो हरियर धनिया और हरियर लहसुन भी काट काट के डाल दिए तो वो
0: हाँ
1: टेस्ट और बढ़
0: बिल्कुल
1: जाए।
0: बिल्कुल। और देखा जब ये खूब अच्छा सा हल्का सा पक जाए मटर तो जो उन्हें एका खूब थोड़ा सा पहले जब हो जाए तो निकाल के रख दा। और फिर जो उन्हें खूब आटा सान ला। आटा में जो उन्हें थोड़ा सा मुलायम मुलायम भरे के लिए मुलायम होए के लिए उमा चाहे तो थोड़ा सा घी या जो उन्हें कोनो तेल डाल दा तो जो उन्हें खूब अच्छी
1: मोइंग डाल दो
0: हाँ
1: कुछ।
0: मोयन डाल दा तो जो उन्हें और हल्का सा नमक और डाल के खूब अच्छे से खूब टाइट आटा मतलब कर ला।
1: गूंदना।
0: हाँ देखा इतना टाइट रहे कि बस मटर की पूड़ी फटे ना, है ना, ज्यादा टाइट कर दे वो तो फट जाए।
1: बिल्कुल
0: तो इतना आटा सान लो और बस एक किनारे रख दा। ओके।

0: बाद जो उन्हें हम लोग एक ही तैयारी कर लिया। अब देखा तो का बता दे सिंघाड़े का अचार भी। सिंघाड़े का अचार बनावे के लिए सबसे पहले का करेगा, सिंघाड़ा लेका है खूब अच्छे से धोए का है, और धोए के बाद ओका जो है एक कुकर में बफाए लेका है। बफाए के बाद हमार जो अचार का मसाला होता है, जैसे मंगरेल होता है ना, जीरा होता है, धनिया होता है, सौंफ होता है ना, लाल मिर्चा होता है ना,
1: जितना
0: तो
1: मसाला
0: जितना
1: अचारे में
0: मसाला
1: पड़ते।
0: अचारे में पड़ा था, हींग लैला, थोड़ा सा लहसुन लैला, तो ये सब लई के खूब अच्छे से, मिर्चा लैला, तो ये सब जो है खूब अच्छे से भून के पीस ला। पीसे के बाद जो हमार जो बफावा हुआ जो सिंघाड़ा है ओका जो ओमा जो ने तेल और ये जो मसाला है लपेट के थोड़ी देर के लिए कांचे का बर्तन में भर के कुछ देर के लिए चाहा तो धूप में रख दा। और बस ओका ये वाला जो अचार होता है गंगा, ये बहुत आसान होते, तुरंत खाए सकत हो।
1: अच्छा,
0: और एका बस ऐसे बनाए के रख ला, और बस एका तुरंत पूड़ी के साथ खा। आप देखा पूड़ी कैसे बनावे का, जो मटर हम लोग बस बफाए के निकाले ओका खूब अच्छे से मीस दा। मीसे के बाद जो ने अपना भरावन तैयार हो गया। कुछ मसाला अगर ऊपर से डाले का तो थोड़ी सी हरी वो धनिया डालना, हरी धनिया तो डालिंद, ओके साथ साथ जो ने खड़ी धनिया भुनी वही ओका डाल दा। थोड़ा सा जो मसाला सिंघाड़े के अचार वाला है वही थोड़ा सा मसाला उमा डाल दा, और डाल के खूब अच्छे से मीस के जो आटा साने हा कढ़ैया चढ़ावा, उमा तेल डाला, और बस वो जो मटर है ओका भर भर के खूब बढ़िया कुरकुरी पूड़ी निकाल दा, और सिंघाड़े के अचार के साथ खा।
1: अरे वाह, कितना बढ़िया बतावा। हम तो खाए एकदम मन तृप्त हो गया, और हमार बहनी हरण एक जरूर बनी है। अब कहे से कि सुनत सुनत सबके मुंह में पानी आएगा।
0: अरे हमरे मुंह में भी पानी आएगा, देखा बस
1: बताओ
0: लगे देखे।
1: बताओ। तो चला एक जो बढ़िया से यहीं पे एकदम चटाकेदार मन के खुश कर दे वाला फिल्मी गीत सुना जाए, नदिया के पार से हेमलता जी की आवाज में।
0: चला सुन लिया जाए, बहनी हरण भी सुने।

0: गंगा
1: हाँ बहनी।
0: दिखा जोनी गीत रहा, जब जब हम सुनी थी है ना, दिखा अपने शादी के फेरे की मतलब याद आए
1: याद आए
0: जाते।
1: जाते ना। बिल्कुल
0: हर
1: दिखा।
0: फेरे में पंडित जी एक वचन सुनावा थी और दिखा नाता जन्म जन्म के जुड़ जाते
1: जुड़े
0: है
1: जाते हैं,
0: ना।
1: बिल्कुल सही।
0: तो
1: तो देखा हमरो सबके नाता पनघट से एकदम कायदे से जुड़ा हुआ। तो एक संदेश यही पे बहनी हरण के सुनाई दिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, चला बहनी अरिन भी सुने।
2: जहाँ बातन में होत है अपनेपन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहाँ मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ई हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आप पनघट का हिस्सा बनी है।
0: हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
1: हमारा ईमेल एड्रेस है
3: pangatprogram@therateofgmail.com। स्पेलिंग है PANGHATPROGRAMEET@gmail.com। pangatprogram@therateofgmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सब के
4: बेसब्री से इंतजार रही।
0: गंगा
1: हाँ बेनी,
0: देखा हम सब लोगन का भी अपनी बहनी लोगन के संदेश के बेसब्री से इंतजार हमेशा रहा थे।

0: बिल्कुल रहा था। देखा हम सबे आई थे यही था से कि बहनी हरन भी कुछ प्रतिक्रिया दी हैं। हमने जोन प्रोग्राम जाते हैं अपने पनघटे से गीत गौने सब कुछ लेके प्रतिक्रिया के इंतजार रहा थे। और
1: बिल्कुल
0: देखा पनघटे पे आए के बाद जाएगी
1: जाए
0: तो बिल्कुल
1: मन
0: मन है करना कि लागत है कि
1: बिल्कुल
0: बतियात रहे बहनी हरन से बातें ना खत्म होते। लेकिन देखा जाए के तो पड़ी
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हाँ। और
0: कहे
1: देखा
0: से कि
1: घड़ी
0: समय
1: इशारा भी
0: बोल
1: कर रहे
0: तो चलो बहनी हरन से विदा लिया जाए। राम राम
1: राम
0: बहनी
1: राम
0: हरन।
1: बहनी अरेन।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थीं अपना कार्यक्रम पनघट। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: strikes as an act of aggression. Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasises integrated financial systems for defence management and resource utilisation. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress. And in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है उसे UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि UPSC ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि UPSC के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। UPSC के अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और UPSC ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय

0: मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
2: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करा दिया था।
3: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
2: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले

0: रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री

0: पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मूरज जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
1: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
1: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गांव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है श्रोताओं, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, रेखा, धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
2: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
1: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओं एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते

0: हैं आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओं, मेघालय यानी मेघों का घर।
1: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओं, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग, एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओं, अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओं कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी, नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओं दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था,
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गांव के लोग भी वहां आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं, किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति, नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो, तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है,
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती,
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ, आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
1: जी।
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ, अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता।

0: कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
1: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
1: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
5: ना नहीं, अरे इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
6: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
4: हाँ मेघा, दिखा देना नंदिनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
7: प्लीज मेघा,
6: दिखा दो।
8: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
9: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
8: चलो चलो चलो चलो।
10: गुड मॉर्निंग मैडम।
3: गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों

0: आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
1: बहुत अच्छी।
2: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
0: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
3: जी मैडम।
0: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
3: धन्यवाद मैडम।
0: क्या मिला पुरस्कार में?
3: जी
4: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
0: अच्छा,
4: कह रही थी मैडम के सामने नहीं खोलूंगी।
0: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
3: लीजिए मैडम।
0: हाँ, इसको खोलते हैं। हाँ। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
5: अरे किताब भी नहीं है।
0: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
3: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
0: मेघा, ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
5: सैनिकों के बारे में?
3: सैनिकों के बारे में है।
4: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
0: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
3: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
0: अच्छा।
3: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
0: वाह,
2: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
0: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
5: सैनिकों को करनी होती
3: है। बहादुर है हमारे सैनिक।
4: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
2: मुझे भी।
4: इसके बाद में नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
3: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
4: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
0: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
4: रास्ता है?
0: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना? अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
3: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
0: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
3: जी मैडम।
6: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
3: जी मैडम।
0: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
3: मैडम, बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
0: क्या बात है।
4: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
3: बताती हूँ सुनो। परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
4: वाह।
0: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
3: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
0: शाबाश।
3: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
4: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
3: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
7: ओ मैडम जी।
0: जी मोहन भैया, क्या बात है? आ जाइए आ जाइए।
7: मैडम जी, आपसे कोई मिलने आया है? कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
0: ओह हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
7: ठीक है जी।
0: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
3: जी मैडम।
0: मेघा, देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
5: बहुत वीरता का काम।
4: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा

0: कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
1: काश काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौजी अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन। वाह
2: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
0: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
3: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
4: नमस्ते सर।
5: नमस्ते बच्चों।
3: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
4: जी मैडम।
5: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
4: धन्यवाद सर।
5: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
4: धन्यवाद सर।
5: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
4: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
5: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
3: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
5: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
6: एक हिंदुस्तान।
5: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई। हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
7: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
5: सर मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
8: शाबाश जांबाजों, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, फायर फायर।
5: और

0: दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
1: सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है, लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए।
0: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
1: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है, लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
0: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए, हमला भी हुआ, पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
1: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे। फायर!
0: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
1: जवानों, आगे बढ़ो, एक दुश्मन बचना नहीं पाए, आगे बढ़ो, फायर!
0: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया। पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे। उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भराया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी, जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्युनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई। लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
2: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
3: यस सर, शाबाश।
2: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
2: जी
0: मैं आपका और खास तौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहां बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए

0: कि इन बच्चों ने इस विषय पर जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की।
1: जी,
0: इन बच्चों से मिलकर मुझे विश्वास हो गया कि ये वीरों की कक्षा है और इनमें भी कहीं ना कहीं कोई परम वीर छिपा है। क्यों बच्चों, ठीक कहा ना?
2: यस सर।
0: अच्छा, अब मैं चलता हूं।
1: जी।
0: अच्छा बच्चों, जय हिंद।
2: जय हिंद।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या,
1: प्रसून
0: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
1: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: मीडियम, अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। हमारी पहली सभा अब संपन्न होती है। अगली सभा में 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे प्रसारण एफएम 100.3 पर जारी रहेंगे। तब तक सुनते रहिए विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

नमस्कार, पेशा एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। वस्तु और सेवा कर संग्रह में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 2,03,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वह राजपत्र अधिसूचना फर्जी है, जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के पास स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान गतिविधि का आयोजन कर रहा है। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंचा और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस किरुसिंकल नोबेल के ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए जल्द हाजिर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आकाशवाणी
1: नंदन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है, और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं, और किस तरह से जोश का माहौल वहाँ बना होता है मैदानों में, यहाँ हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुँचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट 3 कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज़ एंड अंडर 15 बॉयज़। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में, और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम, जो एक रिमोट लोकेशन से आती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज़ था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जब वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज़, वो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को, और CISC की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे, अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत रोमांचक था।
0: जी, कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है, और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं, और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेज से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह

0: सिखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है। आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना, अगर उसकी बात की जाए, अतुलनीय रहा। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों एक मिसाल हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्होंने 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाज़ों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इस सेकेंड एडिशन की बात करें, और सेकेंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना, तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन, उसकी क्या खास बात थी, और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
1: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था। दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा पूरा सम अप करें तो अराउंड 45,000 पीपल रैन ऑन दैट डे।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है, अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है। सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है?
1: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं। तो उनका विजन था कि सेखों साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो वो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें। इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म दे के इसको आगे बढ़ाएं।
0: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ, कहते हैं ना, कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
1: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
1: जैसे कि मैंने बताया सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागेंगे। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आएँ तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आएँ तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएँ तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहाँ रन होगा, बट ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस और अक्रॉस इंडिया जैसा हमने पिछली बार किया था।
0: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायु सेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
1: आप बिल्कुल कह सकते हैं हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। इस बार

0: आर 94th एयर फोर्स डे है एंड एयर फोर्स डे वीक इज गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ एयर फोर्स डे सेलिब्रेशन है।
1: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयर फोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
0: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उस नंबर को पाना चाहेंगे।
1: जब हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है और इस मिसाल को कायम कर रही है। सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026, इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कन्हैयालाल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे, और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है?

0: आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है seikhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिंदगी, यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी। थर्ड एडिशन में आप ज़रूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल ज़रूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान हैं?
1: हाँ, अब आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको, हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहाँ पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ, 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहाँ पहुँच जाएँ। और एज़ फार एज़ फैसिलिटीज़ कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
0: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आप पहुँचें?
1: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन अरेना में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है, और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, दे वर इन्जॉइंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज़ जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक। तो इस फैसिले को ज़रूर अवेल करें।
0: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है, या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं?
1: इन्हें दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं,
0: जो आ रहे हैं बिल्कुल आसमान जितना बड़ा
1: आसमान
0: है।
1: स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आएं और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।

वाह क्या बात है। तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज़्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएँ और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर बनेगी, ज़रूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए ज़रूर पहुँचें। और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

0: कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी की। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सतेंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एनरूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहीं उड़ाएं मैदान जंग कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं तो वो सारी तितलियां उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: वाह क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी है?
1: आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपो चल रहा है तो हम बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सतेंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस

0: इसलिए कहूँगा मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिना से हो जाती है, वहीं पे से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, छोटा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं। बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, वो अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा
1: क्या बात
0: इन
1: है,
0: टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग। हमारी
1: वाह,
0: एयर वॉरियर ड्रिल टीम है, वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है, वो परफॉर्म करेगी, एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज़। तो आप, एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी ज़रूर देखने।
1: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर।
0: पर जैसा
1: अच्छा
0: आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
1: बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और उस आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगला एडिशन और भी सुखद होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए, और विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा ज़रूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
0: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है,
1: वाह,
0: जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है। तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे ख़त्म होना, एक ही दिन करना। तो ये हमारे प्रिसीजन को हम सबको, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम, इतना हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं, बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
1: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन, समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है, सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती हैं।
0: जब भी हम आई थिंक एक मंच पे एक ही चीज डिस्कस कर रहे
1: वाह
0: हैं।
1: क्या बात है, और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे। परचम आप लहरा रहे हैं लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में लेकर दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से, और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना इन कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
0: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, मतलब कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो। तो हमारे 21K, 10K और 5K तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज़ मिलेगा, एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पे होगी JLN में। एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
1: डिफेंस पर्सनल सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं,
0: हर हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है। जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया है तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे।
1: जी
0: कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है।
1: जी क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के या डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहाँ आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है और हमेशा अपने आप को गियर अप करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक

0: सक्षमता कितने मायने रखती है? क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
1: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडरगो। उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है और हम उसको कंसिडर करते हैं। अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है।
0: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल्स के संबंध में पूछना चाहूँगी। वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं, उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेज में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
1: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं। वो अपना अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जाएंगे वहाँ पे बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
0: वाह, क्या बात है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमां छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है, और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026।

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय वायु सेना जो हर साल, यूँ कहूँगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतो कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है। ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ मतलब वो कहते हैं ना गूज बम्प्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा। मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लड लाइट वहाँ पे है। हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम। तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और ज़मीन पे भी तारे दिखेंगे। तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखता ही जाए।
0: वाह क्या बात है, आपने कहीं ना कहीं कहते हैं रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना उनकी आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं, मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है। आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी। भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे। अब बात करें, और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अर्जित कर सकें। हमें भारतीय वायु सेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मर्तबा फिर आएंगे। अगर हम बात करें वहाँ जिस तरह की फैसिलिटीज़ आपने जैसे बताया कि यहाँ पर की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5K का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा

0: बताना चाहूंगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटियंस दिल्ली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है, नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं नॉर्मली 7 सवा 7 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं और उस टाइम सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज फार एज 10K गोज़ तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है वहाँ पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है उसी रूट पे रहेगी।
1: बहुत खूब। तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ लूँ।
0: अरे बिल्कुल
1: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं
0: हाँ,
1: उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है?
0: ये
1: कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
0: काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसपे शेखो साहब की फ़ोटो है सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक शेखो का पैच जो नॉर्मली जैकेट से है उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीने आएंगे उसको सुखाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार हमने रिबॉक के साथ कोलेब्रेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
1: बहुत खूब। एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुँच जाऊँ जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूँ। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एफओस मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
0: तो
1: एक
0: किसी का
1: सब
0: ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
0: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है, जब जैसे ही आप एंट्री करेंगे हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आपकी रेस ख़त्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट दिया है मैंने, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो अब मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
0: काश ऐसा हो पाता, बड़ी नॉन ट्रांसफरेबल है।
1: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा
0: बिल्कुल
1: कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं, और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदेश आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश शिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नज़ाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है, यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है, मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम, तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार भी इन्होंने संदेश नाम भेजा है, और चंपावत तमिलनाडु टनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है, आज समय कम है लेकिन संदेशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।

0: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से। हमने देखा है कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज़ की वजह से डिप्राइड होते हैं, किसी किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज़ हो जाते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं। तो ये शो करता है कि हाँ, ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे शेखो साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का, और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
1: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी, आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है।
0: काफ़ी योगदान रहता है, मैं कहूँगा बराबर तो नहीं, मगर 60-40 की रेशियो तो 100% रहती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खास तौर पर विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है, और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहाँ पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
0: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं,
1: जी
0: अब साउथ टू नॉर्थ चलते हैं।
1: जी
0: तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम में पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
1: वाह, तो आप कहीं से भी हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त तो हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवान हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी, तो हम धनकर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
0: अगर आप गूगल पे डालेंगे sekhoifmarathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूँगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
1: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूं ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं हथकड़ी फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत है बप्पी लहरी का।

विश्वात्मा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, साधना सरगम की आवाज़ थी, गीत आनंद बख्शी का था और संगीत वीजू शाह का। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं खून भरी मांग फिल्म का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने। गीतकार हैं इंदिवर और संगीतकार राजेश रोशन।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
4: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है, आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: देश के अपने स्वदेशी नेटवर्क BSNL की 26वीं वर्षगांठ पर आपके लिए है विशेष ऑफर। सिर्फ ₹1 में BSNL सिम पाइए, अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 1 GB डेटा, 100 SMS और 24 दिनों की वैधता। ऑफर सिर्फ 12 अक्टूबर तक, तो देर किस बात की। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSE पर जाएं और इस खास ऑफर का लाभ उठाएं। आपका BSNL, हमारा BSNL।
0: प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। यहाँ गाफिल का मतलब बेपरवाह और सोए हुए इंसान से है, और सैर शब्द का असली अरबी अर्थ है यहाँ पर है पार्क में घूमने से नहीं, बल्कि फारसी में इसे कहा जाता है दूर दराज की यात्राएं करना, यानी सूफीज्म हम देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन।
1: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट कार्यक्रम युवाणी, मेरे यानी उन्नति
0: और मेरे यानी पूजा यादव के साथ।
1: किसी ने सच ही कहा है, दुनिया एक किताब की तरह है और जो लोग एक ही जगह ठहरे रहते हैं वो इस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ पाते हैं। सोचिए सुबह की पहली किरण जब बर्फीले पहाड़ की चोटी को छूती है तो कैसा लगता होगा, या समुद्र में उठती गिरती लहरों के पास खड़े होकर ठंडी हवा के झोंके महसूस करना कैसा होता होगा।
0: ये सब कुछ पर्दे पर देखना अलग बात है, लेकिन वहाँ खुद मौजूद होना एक अपने आप में जादू है। लेकिन उन्नति, अब ये सवाल है कि आखिर घूमना फिरना जरूरी क्यों है।
1: पूजा, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे और अपने श्रोताओं को भी मौका देंगे कि वो इसके बारे में सोच सके, लेकिन उससे पहले आओ सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को आज का पहला गीत।

0: तो उन्नति, हम ये
1: हम्म,
0: बात कर रहे थे कि क्यों खास है घूमना फिरना, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब पहले तुम बताओ।
1: जब भी ऐसा होता है कि हम अपने घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलते हैं, तो आप सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाते, बल्कि नए अनुभवों की एक पूरी दुनिया में कदम रखते हैं। हर नया रास्ता, हर अनजान चेहरा आपके पास एक नई कहानी छोड़ जाता है।
0: रोज़मर्रा की वही पुरानी ज़िंदगी में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। सफ़र में जब आप किसी अनजान जगह की खिड़की से बाहर देखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ सुनते हैं। घूमना सिर्फ दुनिया को देखना नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से खोजना भी है।
1: बिल्कुल, जब आप अलग अलग जगहों के लोगों के साथ चाय पीते हैं, उनके साथ हंसते हैं और उनकी संस्कृति को करीब से देखते हैं, तो मन के सारे पूर्वाग्रह और शिकायतें गायब हो जाती हैं। दुनिया आपको अपनी सी लगने लगती है।
0: ट्रैवलिंग यानी यात्रा करने का आभास, इसका आसान मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन अगर गहराई से समझें तो ट्रैवलिंग सिर्फ जगह बदलने का नाम नहीं, बल्कि इसके कई सारे मायने हैं।
1: जैसे नए एक्सपीरियंसेस लेना, नई जगहों को देखना, वहाँ का खाना चखना और नए लोगों और उनकी संस्कृति को करीब से जानना।
0: और खुद से मुलाकात, रोज़मर्रा की भाग दौड़ और तनाव से दूर होकर हम अपने मन को सुकून दे पाते हैं और

0: को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीखने का जरिया भी होता है। सफ़र इंसान को बहुत सी चीज़ें सिखाता है, जैसे नई परिस्थितियों में ढलना, धैर्य रखना और चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना।
0: जवानी का जोश, पैरों में ताकत और आँखों में नए सपने, ये सब कुछ हमेशा नहीं रहते। जिम्मेदारियों का बोझ और ढलती उम्र में एक दिन पाँव में बेड़ियाँ डल ही जाती हैं। इसीलिए जब तक जेब में थोड़ा सा भी हौसला है ना, और सीने में धड़कता हुआ दिल, तब तक रुकना कैसा।
1: तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम अपने चर्चा में बात करते हैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, तो हमारा एक ये भी मकसद रहता है कि हम आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव भी ज़रूर बताएं।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी कड़ी में हम आपको बता दें कि आज यानी कि 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: ये दिन समाज में उन बुजुर्गों को समर्पित है जिन्होंने कड़ी मेहनत, अनुभव और संघर्षों से हमारी आने वाली पीढ़ियों की नींव रखी है।
1: बुजुर्ग समाज को समाज और परिवार के लिए किसी मार्गदर्शन से कम नहीं होते। हमारे नैतिक मूल्य, संस्कार, पारिवारिक परंपराएं और सांस्कृतिक धरोहर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
0: और हमें उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: आई थिंक एक हमारा खुद का एक्सपीरियंस तो बाय द एज हमें मिलता रहता है, बट पहले अलर्ट कहीं ना कहीं हमारे जो एल्डर्स होते हैं वो हमें कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आमतौर पर वो हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि समय की कीमत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। तो शायद हमारी ओपिनियंस मिले या ना मिले, लेकिन अगर वो कुछ भी बताने या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए।
1: बिल्कुल पूजा, और जैसे कि हमने बुज़ुर्गों की बात की, तो हमारा जो सबसे पहला सबसे इनिशियल इंटरेक्शन जो होता है बुज़ुर्गों से, वो हमारे बचपन में होता है, हमारे चाइल्डहुड में होता है। जब भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम अपनी दादी या नानी के घर पर सबसे पहले जाना चाहते हैं। हम वहाँ पर जाते हैं तो हमारी दादी नानी हमें कितनी सारी नई नई कहानियाँ सुनाती, कितनी सारी हमें सीखने वाली चीज़ें बताती हैं, और हमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी बताती है जो हमें इंस्पायर कर सकें।
0: बिल्कुल, और वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम ये आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी बुजुर्ग आपके आसपास हैं, आपके घर में हैं, आप भी उनका ख्याल जरूर रखिए।
1: बिल्कुल।

0: सो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि गाना आपको पसंद आया होगा, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा कुछ डिफरेंट चीजें लेकर आते हैं अपने कार्यक्रम में, तो आज हमने शामिल की है कहानी। कहानीकार हैं ओमजाज सिंह, तो आइए सुनते हैं कहानी।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ओमजाज सिंह और आज हम कहानियों की चर्चा करेंगे। हम सब कहानियों से बने हैं और हम सब में अनेक कहानियां हैं। हर इंसान, हर जीव, हर वस्तु की अपनी कहानी है। तो बात यदि कहानियों की शुरू हो ही गई है, तो बात किताब की भी क्यों ना कर लें। किताब की कहानी की क्या बात है, पूछो किताबों से तो कुछ गुनगुनाती हैं। किताब की धूल से भी खुशबू कुछ यूं आती है। बुजुर्ग किताब अनंत किस्से सुनाती है। सुनो, क्या तुम्हें भी किताब बुलाती है? नई किताब में सपने हजार हैं, बच्चे की कक्षा कल है, पर किताब तो अभी से तैयार है। सुनो जरा, क्या किताब की आवाज है? किताब की कहानी की क्या बात है, किताब की कहानी की क्या बात है। मैं जो कहानी कहने जा रही हूँ, वो शायद कोई ऐसी गहन कहानी नहीं है जो आपको विचार में डाल दे। शायद यह आपको विचार से मुक्त कर कुछ क्षणों के लिए आपको आपके बाल्यकाल, आपके बचपन में ले जाए। कॉपी किताब की दुकानों में जो किताबें और कॉपियों की सुगंध होती है, वह एक नवजीवन की सुगंध होती है। कितने ही बच्चों ने वहाँ से पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, रंग इत्यादि जाने क्या क्या अपने जीवन के न जाने कितने सपने पूरे करने के लिए खरीदे होंगे। कितने माँ बाप अपने बच्चों को पहले दिन स्कूल भेजने का सपना लिए वहाँ जाते होंगे। तो यही स्टेशनरी की दुकान होती है जो अपने अंदर न जाने कितनी कहानियाँ लिए चली आ रही हैं। यह दुकानें छोटी रही होंगी चाहे बड़ी, बच्चों की आँखों से देखिए या आँखों में बचपना ला कर देखिए, देखिएगा ज़रूर। अच्छा, मोहल्ले की एक बहुत पुरानी किताब की ऐसी ही दुकान है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। कहानी में एक मुख्य पात्र हैं जिसे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और एक दादा हैं। तो कहानी यूँ है कि दुकान तो इतनी पुरानी है कि शायद मोहल्ले के अंकल आंटी लोग भी अपने बचपन में विद्यालय की कॉपी किताबें यहीं से ले जाते होंगे। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, पर हर सामान

मिल ही जाता है। स्कूल के प्रोजेक्ट के सामान से लेके कॉलेज के असाइनमेंट तक का हर सामान, A to Z सब कुछ मिल जाता है। ईंट की दीवार है जिसपे कुछ जगह प्लास्टर है और कुछ जगह ईंट अभी दिख रही है, पर कुछ भी कहो, दुकान में घर जैसा कुछ तो है। यह दुकान एक बूढ़े दादा की है, कद में मध्यम कद के हैं, चेहरे में गुस्सा, स्वाभिमान, शांति और बालपन सब झलकता है। बाल थोड़े सफेद हैं, दादा की उम्र हो गई है, पर फिर भी बच्चे से लगते हैं। अब कैसे लगते हैं पता नहीं, बस लगते हैं। उनके क्या ही कहने, अक्सर जब भी देखो किताब पढ़ते या बेचते ही दिखते हैं, खाली बैठे तो शायद उन्हें कभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरे लिए तो वह दादा है, पर सोचता हूँ तो समझ आता है कि वह भी कभी बेटा थे, फिर भैया हुए, फिर अंकल जी, फिर अब दादा। इंसान का नाम तो नहीं बदलता, पर ये संबोधन के शब्द बदलते रहते हैं, और नाम से ज़्यादा ये वही इंसान है। खैर, अब दादा की बात करते हैं। समय के सफ़र के दौरान दादा ने कितने ही स्टेशन देखे होंगे। दादा अगर किताब होते तो अपनी दुकान की पुरातन कहानियों की या इतिहास की किताबों के संग्रह की एक सुंदर किताब अवश्य होते हैं। वैसे हम लोग उन्हें किताब वाले दादा भी कहते हैं, और किताब वाले दादा कहते हैं कि सामान तो मेरे समय का हुआ करता था। देखो, इसी मेज पर कभी मैंने इस दुकान की शुरुआत की थी। जेब में पैसे कम हुआ करते थे। यह मेज इस दुकान की पहली नींव है, मेरा पहला साथी। गिनती की कुल 10 किताबें लाया होगा, वह बिक गई तो 20 किताबें लाया, वह भी बिक गई। तब तो मैं समझ गया कि भाई दुकान तो अब चल पड़ी है। तब से आज का दिन है कि इतनी किताबें इस दुकान में है कि उसकी गिनती के लिए एक किताब लानी पड़ी है। मेरे जितना बूढ़ा तो मेरा यह मेज भी होगा। हाँ, एक दो बार इसकी थोड़ी मरम्मत की जरूरत जरूर पड़ी है, लेकिन ये आज भी मेरे दुकान के साथ पूरी पार्टनरशिप में है। इसी मेज पर बैठे बैठे मुझे यह पता ही नहीं चला कि ये समय पता नहीं कब बीत गया। किताबें पढ़ने का बड़ा शौकीन था मैं, लेकिन जेब ने धोखा दे दिया। परिवार की मजबूरियों ने हाथ में से किताब छीन ली, पर मैं भी बड़ा जिद्दी था। सोचा, किताब तो छोड़ूंगा नहीं, कलम भी अब हाथ में उठा ही ली है, तो इन्हें भी अब क्यों छोड़ूं? तो क्यों ना अपना भविष्य लिखने की जगह कलम को ही अपना भविष्य बना लूं और दूसरों को अपना भविष्य लिखते देखूं। सच कहूंगा, शुरू शुरू में लगता था कि काश दुकान के इस तरफ नहीं, दुकान के उस तरफ होता मैं, दुकान पर मैं आया होता, काश मैं विद्यालय जा रहा होता, काश की ये किताब मैं अपनी कक्षा के लिए ले रहा होता, काश की ये खाली कॉपी मैं खरीद रहा होता। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ समय के साथ सामान्य सा लगने लगा। मैं अपने आसपास देखा तो देखा कि मैं तो यही चाहता था कि मैं किताबों के एक ढेर में बस बैठा रहूं, तो मैं वहीं तो हूं, इसमें क्या बुरा है? दिन भर किताबों के इर्द गिर्द रहना ही तो मेरा स्वप्न था। किताबें पढ़ता रहता हूं और बेचता भी हूं, कुछ पैसे भी आते हैं और मज़ा तो खूब आता है। ये कहकर दादा दुकान समेटने लगे, पर आज दादा की मुस्कुराहट कुछ अलग थी। ऐसा लगा मानो आंसुओं को बहने से मना करते करते उन्हें हंसी आ रही हो। दादा को देखकर हम सब ने पूछा कि दादा, कल दुकान कितने बजे खुलेगी? कुछ कलम, कुछ कॉपी, किताब आदि लेनी है, पर मैं लिस्ट घर पर भूल आया हूँ, तो कल आके ले लेंगे। दादा ने कहा कि बेटा, कल शायद दुकान न खुले। तो हमने कहा, तो परसों आ जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? और मैं पूरी बात बोल भी नहीं पाया कि दादा ने बोला, मेरा मतलब था कि बेटा शायद कल से दुकान ना खुले। जो सुना उस पर विश्वास कर पाना कठिन था, पर फिर भी पूछना तो जरूरी था कि ऐसा क्यों। दादा को कोई कारण खुद भी शायद पता न था। शायद दादा अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहते थे कि वह थक चुके हैं, क्योंकि उन्हें कभी थका हुआ तो किसी ने नहीं देखा था। तो शायद वह यही चाहते थे उनके जानने वाले या जान ही न सके कि इस व्यक्ति में थकने का भी कोई सिस्टम है भी कि नहीं। तो मैं भी कुछ और पूछ न सका। रास्ते में सोचते सोचते कि कुछ दिन पहले दादा से मैंने शायद एक कलम ली थी जिसमें मैंने 2-4 रुपए कम करवाए थे, वो सही था या नहीं था। खैर, सोचते सोचते घर आ गए। रात में नींद तो आ नहीं रही थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, कल जाके देख लेंगे, शायद दादा फैसला बदल दें। काश कि ऐसा हो जाए, या हो सकता है अपनी बरसों पुरानी आदत के चलते दुकान खोलने के समय खुद ही आ जाएं। खैर, उत्सुकता में सुबह सुबह थोड़ा जल्दी ही नहा धोकर दादा की दुकान के सामने जाकर खड़े हो गए। काफी देर तक

0: खड़ा रहा कि शायद दादा आ जाए, शायद दादा आ जाए। मन तो मनाता रहा, शायद यह दादा का कोई मजाक हो, काश मजाक ही हो। दादा की दुकान का बंद दरवाज़ा शायद आज पहली बार देखा था, और देखते देखते मैंने देखा कि दादा आ रहे हैं। और यह देखकर मैं कुछ कह न सका, पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, और शायद दादा को मेरी सवाल सूची के बारे में पता था। दादा मुझे देखकर मुस्कुराते रहे। दादा ने जल्दी से दुकान का शटर खोला और कहा, बताओ बेटा क्या चाहिए? बेटा बताओ, लिस्ट लाए हो कि नहीं? नहीं, आज भी भूल गए। मैंने कहा, दादा लेकिन दादा आप तो मेरी बात बीच में काटते ही दादा ने कहा कि कल की बात कल की, कल पर ही छोड़ दो। अपने दोस्त को भी कोई भूलता है क्या? ये बताओ, क्या है कि ये दुकान, ये किताबें मेरे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं। बुलाने लगे मुझे तो मुझे आना पड़ा। अब क्या करूँ, कभी छुट्टी का दिल करेगा तो वो भी कर लेंगे, इसमें क्या है? ये दिल की और दिमाग की बात है, और दिक्कत यह है कि दोनों सही है और दोनों गलत है। तो मैं तो यही मानता हूँ, ये पल पल की बात है। अभी की कहानी है जिंदगी, कल तो बीत गया, आने वाला कल क्या है किसे मालूम। किताब का यही पन्ना अभी पढ़ना है जो सामने खुला है। बस करो, अब ये सब बात बस करो, चलो जल्दी से लिस्ट दिखाओ क्या क्या लेना है। स्कूल की छुट्टी होने वाली है, बच्चे आ जाएंगे, तो ये मत कहना बिल्कुल कि क्या दादा देर हो रही है, मेरा सामान पहले दो। बस कहानी बस यही थी। शायद आप सब कहीं ना कहीं इस कहानी से जुड़ पाए होंगे। हम सब के कॉलोनी में, मोहल्ले में, घर के आसपास कोई तो ऐसी स्टेशनरी की पुरानी दुकान अवश्य होगी। खैर, इसी कहानी को रखते हुए मैं आप सबको सहृदय नमस्कार करना चाहती हूँ। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी कहानी ओमजा सिंह की आवाज़ में, और हमें उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाएंगे लेकिन इस गीत के साथ।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के खास सेगमेंट में, जो कि है प्रेरणा पुंज। और आज के प्रेरणा पुंज में हम बात करने वाले हैं बाबा आमटे की। बाबा आमटे भारत के एक महान समाज सेवक, स्वतंत्रता सेनानी और कुष्ठ रोगियों यानी लेप्रेसी पेशेंट्स के पुनर्वास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक महान व्यक्तित्व थे।
6: उनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। बचपन में उन्हें प्यार से बाबा कहा जाता था, जो बाद में उनकी पहचान बन गया। और साथ ही साथ आपको बता दें, उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और एक सफल वकील के रूप में काम करना शुरू किया।
5: एक दिन सड़क पर उन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति को देखा जो अत्यंत दयनीय स्थिति में था। उस समय लोग कुष्ठ रोग को छुआछूत की बीमारी मानते थे और मरीजों का सामाजिक बहिष्कार कर देते थे।

0: इस घटना ने बाबा आमटे के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने उसी क्षण अपने वकालत के पेशे से और सुख सुविधाओं को छोड़कर समाज सेवा का मार्ग चुना और आनंद वन की स्थापना की।
1: 1949 में बाबा आमटे ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर ज़िले में आनंद वन की स्थापना की। आनंद वन केवल कुष्ठ रोगियों का इलाज केंद्र नहीं था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर देने वाली एक कर्मभूमि बनी।
0: यहाँ रोगियों को कृषि, हस्तशिल्प और आत्मनिर्भर बनाने के कार्यों के बारे में बताया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था।
1: उन्होंने समाज से कुष्ठ रोग से जुड़ी भ्रांतियों को खत्म करने के लिए खुद रोगियों का इलाज किया और उनके साथ रहे, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और आदिवासियों के अधिकारों के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर के साथ सक्रिय भूमिका भी निभाई।
0: और बात करें पुरस्कार और सम्मान की, तो उन्हें पद्मश्री, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, पद्म विभूषण और गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 फरवरी 2008 को बाबा आमटे का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और आनंदवन आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल पूजा, और देखो जैसा कि हम जानते ही हैं कि हम अपने श्रोताओं के लिए हर एपिसोड में कितनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम उनके लिए कितनी सारी चीज़ें लेकर के आते हैं।
0: बिल्कुल, हम बहुत रिसर्च करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें कुछ बेहतर दें,
1: हम उन्हें कुछ ऐसा बता सके जो उन्हें इंस्पायर कर सके, कुछ ऐसा बता सके जो उनके काम में आए। तो अब मुझे लगता है कि हम अपने कार्यक्रम के कहीं ना कहीं अंत पे जा रहे हैं, तो चलते चलते हम अपने श्रोताओं को एक और गीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आज की फास्ट लाइफ में हम यूथ पढ़ाई, जॉब्स, करियर और स्क्रीन टाइम में इतने बिजी हो गए हैं कि सबसे ज़रूरी चीज़ को कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, और वो है हमारी हेल्थ।
1: बिल्कुल सही कहा पूजा, और किसी ने सही कहा है, जान है तो जहान है। अगर हमारी बॉडी ही फिट नहीं होगी तो हम कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, उस सक्सेस को हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, इसलिए हमारे यूथ्स के लिए कुछ टिप्स हैं जिनका वो ध्यान रखें तो अपनी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। जैसे कि खान पान का ध्यान रखें, फास्ट फूड, जंक फूड वगैरह नहीं खाना है। अच्छा उन्नति, ये बेसिक चीज़ है, पता सबको है, जंक फूड
1: बिल्कुल
0: नहीं खाना है, लेकिन
1: हाँ,
0: मन नहीं मानता। तुम्हें ऐसा नहीं लगता?
1: बिल्कुल भी नहीं मानता मन। जब भी हमारे पास पैसे होते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले जाता है कि हमें आज ये अपनी फेवरेट चीज़ खानी है।
0: हाँ
1: और तो और पूजा, इसके साथ तुम ये भी देख सकती होगी जैसे कितनी जल्दी मौसम बदल रहा है। पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी, उसके बाद फिर लगातार कितनी
0: बारिश
1: बारिश
0: और
1: हुई।
0: मौसम सच में बहुत ज्यादा खराब हो गया था।
1: और फिर साथ में वायरल, तो इन सब का जो मिला जुला कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा बॉडी भी नहीं समझ पा रहा है कि हम इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करें।
0: और उन्नति, हम खाने का तो ध्यान रखते हैं लेकिन पानी नहीं पीते। तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं मिस हो रही है हमारी?
1: बिल्कुल, हमें खाने पीने के साथ साथ खुद को हाइड्रेटेड भी उतना ही रखना चाहिए।
0: तो इन सारे टिप्स के साथ मुझे यानी पूजा यादव को
1: और मुझे यानी उन्नति को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी

0: ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 तक का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि देश भर के लोग इस आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विद्यार्थी दायित्वपूर्ण नागरिकता और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना साकार करने और स्वच्छ, हरित तथा स्वस्थ भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि विमान यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन स्मिथ मच्छर के असाधारण साहस और सूझबूझ पर देश को अत्यधिक गर्व है। श्री नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है। सरकार ने पात्र दिव्यांगजनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करने और उनके नवीनीकरण से जुड़े दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के इस्तेमाल के लिए विशेष रूप से बनाए गए वाहनों और दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी में पंजीकृत वाहनों को छूट वाला फास्टैग जारी किया जाएगा। ये सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर दी जाएगी। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ। निफ्टी 199 अंकों की गिरावट से 22,422 पर दर्ज हुआ। खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम पोर्टल पर फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशनल्स मॉड्यूल शुरू किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना और उन्हें आगे बढ़ाना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। नौकायन में पुरुषों की स्किफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने और कुश्ती में नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन के 97 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांस्य पदक हासिल किया। स्क्वाश में महिला और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 32 कांस्य पदकों के साथ 65 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाइयों को सुनवाएंगे उषा कुमारी से दीपक राय की बातचीत, समावेशी फसल बीमा योजना। हिंदी कार्यक्रम में 7:31 पर निशा यादव की कहानी होगी सुनहरी सांझ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनिएगा नीरज शुक्ला के स्वर में भजन। रात 8 बजे गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सुनिएगा रूपक स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत महात्मा गांधी। लेखक हैं नर्मदेश्वर उपाध्याय। रात 9:30 पर गजलों का कार्यक्रम होगा कहकशा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर आपको सुनवाएंगे पंडित जसराज का गायन। ये थे इस सभा के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल दिन में 3:30 से आप सुनेंगे गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा एवं भक्ति संगीत कार्यक्रम का गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति नई दिल्ली से सीधा प्रसारण। रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से करेंगे। सुबह 6:20 पर होगा हमारा साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम गांधी चर्चा। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को सुनवाएंगे राम दुलारे प्रसाद से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत, चने और मटर की उन्नत खेती। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 6:45 पर डॉक्टर राधा मोहन मिश्र की वार्ता होगी दांतों में ध्यान देने योग्य बातें। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर, दिन में 12:15 पर और रात्रि 10:30 पर सुनिएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन। नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 8:45 पर। सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे न्यूट्रिशियन डॉक्टर छाया मिश्रा से अभिनव प्रज्ञ पांडे की बातचीत का दूसरा भाग। लोकगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 10:30 पर गायक कलाकार रघुराज सिंह और साथी। एक 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा गृह लक्ष्मी। बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया होगा शाम 5 बजे और युवाणी कार्यक्रम में 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे मेघना मिश्र की वार्ता गांधी एक सोच। शाम 7:31 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा में गांधी दर्शन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:45 पर सुनिएगा आकाश पाल के स्वर में भजन। अक्षयवट कार्यक्रम में रात 8:30 पर आपको सुनवाएंगे चित्रगुप्त श्रीवास्तव से विनय श्रीवास्तव की बातचीत, विषय है वृद्धावस्था और सामाजिक जीवन। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात 9:30। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। उपासना, जिनकी उम्र है 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग सांवला, इकहरा बदन, चेहरा लंबा है। ये दिनांक 20 जून 2026 से डुडुही सराय इनायत प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें बाल किशन से, जिनका मोबाइल नंबर है 7518479237। अजय कुमार, जिनकी उम्र है 59 वर्ष, कद 5 फुट 8 इंच, रंग सामने

वाला चेहरा लंबा मजबूत जिस्म है। आगे के दो दांत इनके टूटे हुए हैं। ये दिनांक 16 जुलाई 2026 से तिलक नगर अल्लाहपुर प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें आयुषी वर्मा से, जिनका मोबाइल नंबर है 9569191633। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9569191633। सुनीता यादव, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा सामान्य है। ये दिनांक 11 जुलाई 2026 से गुजराती मोहल्ला थाना अतरसुइया प्रयागराज से लापता हैं। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर आप संपर्क करें जितेंद्र कुमार यादव से, जिनका मोबाइल नंबर है 8810787688। नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं, 8810787688। ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: लोक सेवा आयोगस्य शतवार्षिकी यात्रायां जन विश्वासः अक्षुण्णः अस्ति। जन सहभागितायाः संवर्धनाय श्वः देशव्यापी विशेष ग्राम सभाः समाहूयन्ते। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन रक्षा प्रबन्धाय एकीकृत वित्तीय व्यवस्थायाः आवश्यकता प्रोदीरिता। नागरिक विमानयन मन्त्रिणा वैमानिकस्य कैप्टन स्मिथ मच्छारस्य शौर्यस्य भूरिशः प्रशंसा विहिता। अपि च क्रीडा वार्तासु, एशियाई क्रीडासु भारत पुरुष हॉकी दलेन पाकिस्तानं पराभूय अंतिम स्पर्धायां प्रवेशः समधिगतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे संघलोकसेवा आयोगस्य शताब्दी समारोहं सम्बोध्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी व्यजिज्ञापत् यत् राष्ट्रं परिष्कारार्थं द्रुतगत्या त्वरितम् अग्रे सरति। अतः परीक्षासञ्चालिकाः संस्थाः अपि राष्ट्रानुकूलपरिष्कृतकार्याणि कुर्युः। प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् लोकसेवासु तादृशः एव युवानः समागच्छेयुः येषां लक्ष्यं न तु केवलं पदप्राप्तिः प्रत्युत निष्कामभावेन लोकसेवा वर्तते। असौ व्याहरत् यत् एकविंशतिशतकस्य भारतं नवीनकार्यसंस्कृत्या सह अग्रे याति। श्रीमोदिना प्रतिपादितं यत् परीक्षा न तु काचित् सामान्यम् अनुष्ठानम् अपि तु यूनां भाविजीवनप्रवाहेन सह सम्बद्धा अस्ति। परीक्षासु कतिपयानां मासानामपि विलम्बः यूनां कृते अतीव कष्टकरो भवति। अतः परीक्षाव्यवस्था समयनिश्चयता सिद्धान्तं दृढतया अनुसरेत्।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: श्री मोदी ना प्रतिपादितम यत् संघ लोक सेवा आयोगस्य शतवर्षीयायां यात्रायां युगानि प्रशासनानि तंत्राणि पाठ्यक्रमाः च परिवर्तिताः। तथापि अस्यां संस्थायां जनसाधारणानां श्रद्धा विश्वासः अद्य यावत् तथैव अविचलः अक्षुण्णश्च वर्तते। श्वः गान्धीजयन्त्यावसरे अशेषे हि देशे विशेषग्रामसभाः समाहूयन्ते। पञ्चायतानां सुदृढीकरणाय सार्वजनिकसेवानां परिष्कारार्थं ग्रामीणभारते जीवनस्य गुणवत्तां परिष्कारार्थं च लक्ष्यीकृतानां परिवर्तनशीलशासनपरिष्काराणां तथा उपक्रमाणां विषये च ते चर्चां विधास्यन्ति। ग्रामीणाभिवृद्धिमन्त्रालयः अवोचत् यत् एताः विशेषग्रामसभाः 26,000-27,000-वर्षयोः पीपल्स प्लान कैंपेन PPC सबकी योजना सबका विकास इत्यस्यापि आरम्भं विधास्यन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां रक्षालेखादिवससमारोहम् अधिकृत्य भाषमाणः रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अब्रवीत् यत् तिसृषु सैन्यशाखासु या समवायसमन्वयभावना प्रवर्त्यते सा एव रक्षालेखाविभागस्य वित्तीयतन्त्रे अपि समन्वेतव्या। मन्त्रिप्रवरेण प्रोक्तं यत् यदि वित्तीयप्रणाल्यः अपि एकीकृतरूपं भजेरन् तर्हि समग्रं रक्षाप्रबन्धनं सुतरां कुशलं समर्थं च सेत्स्यति। असौ राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रियस्तरयोः गुणवत्तायुक्तलेखापरीक्षणस्य सर्वोत्तमाः रीतिः अङ्गीकर्तुं जगति च एधमानानां मानदण्डैः सह समन्वयं रक्षितुं रक्षालेखाविभागं सप्रश्रयम् अबोधयत्।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
0: संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणी।

0: क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर।

पंचो राम राम। हम कई किसान भाई देखा है यहाँ इस समय जौन बा खेती किसानी में खरीफ के जौन मुख्य फसल धान भैया बा कुछ जने के भैया जौन अक्सर लगाए रहन प्रजात अक्सर वाली रही वो पाकत बाटे है तो भैया हो कुछ जने के बाल निकलत बे कुछ निकल ही आई बे तो ऐसा समय में देखे मौत भाई पहले से अपन तैयारी कर लें धान कटाई मड़ाई के हाँ और करे बिक्री के जौन बाटे है कि एकरे साथे साथे जौन बा खेती किसानी में साग सब्जी भी लगाए बाटन किसान भाई बोए बाटन ओका भी अगर निकलत बाद बाजार ले जाए। एकरे अलावा जौन खेत खाली यहाँ अब रबी की तैयारी भी शुरू हो गई खास कल के चना मटर आलू ये सब को बुवाई के तो करे लिए खेत बढ़िया से तैयार करें। एक बात और कि किसान भाई इनके खुशहाली के लिए अपन सरकार तमाम तरह का योजना लेके आवत रहा था ऐसे तमाम योजना बाटी नो हमें एक योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना और दूसरा है भैया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो नहाई है वो आप सब जाना था कि सब किसान भाई खाता खुला बाटे है कुछ किसान भाई नहीं खुलवाए रहन तो ये जनधन योजना ऐसा है कि बैंक में खाता खुला था मुन ऐसा खोले जाते हैं किसान भाई तो उनका कुछ ना कुछ पैसा जमा करे के पड़ा था और हमेशा पैसा रखे के पड़ा था मुन एहमे जौन बाटे है न्यूनतम जौन का खातिन पैसा रखे वो शून्य बाटे में बिल्कुल पैसा ना रखे बाटे है और 10 साल के उम्र से ज़्यादा के लोग ये खाता खुलवा सकत हैं। ये खाता खुल जाए से बड़ा फायदा ये बा भैया हो रुपए कार्ड मिलत है जे पे का कहा 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी रहा था साथे लाख जौन बाटे जौन भी सरकारी अनुदान पेंशन ये सब मिलत लाभ मिलत है वो सीधे खाता में आवत है। तो किसान भाई जे भी ना खुला बा जनधन योजना के तहत अपने नज़दीकी बैंक में जाए के आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जौन हो उसके माध्यम से खुलवा सकत हैं। इत रही जोन बाटे है प्रधानमंत्री जनधन योजना का बात स्वच्छ भारत मिशन में या हो ग्रामीण में एकरे लिए देखे गांव गांव में शौचालय बना जाइए साफ सफाई पे ध्यान दी जाए कहे से तमाम तरह के बेरामी भी ऐसे फैल रहते हैं। एकरे अलावा का कहा थे जोन बाटे है कूड़ा करकट निपटावे के भी का प्रावधान कई हुआ तो किसान भाई अपने आसपास साफ सफाई रखें शौचालय का उपयोग करें इस नाते स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का खातिर योजना चलाई गई रही है। देखें आज जोन बाटे आज बहुत अच्छी बात बत कही बा हमार जोन फसल हो तो मैं तमाम तरफ कभों कभों दिक्कत आ ही जाता है चाहे दैबी हो चाहे कुछ भी हो तो उसे भरपाई के लिए तमाम तरह सरकार फसल बीमा योजना चलाए बा तो ऐसे एक बत कही सुनवाओ समावेशी फसल बीमा योजना मुनकरे पहले आवा एक ठीक गौनाई सुनवाई ले सुन ला राम प्रसाद और साथी के।

0: हाँ किसान भाई देखें गवर्नई सुनन राम प्रसाद उनके संघात इनके हम देखा बात बत कही करत रहे कि फसल अपन किसान भाई हर तरह का अनाज वाली फसल हो चाहे व्यावसायिक फसल हो लेकिन कुछ जन कभी दैवीय आपत्ति हो जैसे या कोनो भी नुकसान हो जात है तो भरपाई के लिए अगर फसल बीमा योजना किसान भाई ले रहा थी तो कर भरपाई हो जात फायदा हो जात है। तो आज बात बत कही में बा समावेशी फसल बीमा योजना उषा कुमारी से श्री दीपक राय के बात बत कही भाई बाटे है किसान भाई एक जानें समझें और फायदा लें।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज हमारे कार्यक्रम में। और आज हमारे कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं समावेशी फसल बीमा योजना। हम सभी इस बीमा से जरूर कभी न कभी रूबरू हुए होंगे, जरूर इसके बारे में सुने होंगे। आज उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। उसके लिए हमने आकाशवाणी में आमंत्रित किया है उषा कुमारी जी को। आप शुआर्ट्स प्रयागराज में कृषि के फील्ड में लगातार कार्यरत हैं और फसल बीमा पे आप एक लंबे समय से कार्य कर रही हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार।
1: सबसे पहले तो जो आज हमारा जो विषय है कि समावेशी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना क्या है और ये योजना अन्य योजनाओं से अलग कैसे है?
2: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 से चल रही है। समावेशी का मतलब है सबको शामिल करना। पहले बड़े किसान जुड़े थे, अब छोटे सीमांत, महिला, अनुसूचित जनजाति और बटाईदार किसानों को भी 100% जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, पहले किसान सोचते थे कि बीमा केवल कर्ज लेने वाले किसानों के लिए है, लेकिन अब सरकार ने इसे समावेशी बनाया है। इसका अर्थ है सभी को साथ लेकर चलना। अब छोटा किसान, सामान्त किसान, बटाईदार किसान, किराए पर करने वाले खेती, सभी इसका लाभ ले सकते हैं। यह योजना सभी के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। मतलब जिस किसान की मर्जी होगी वो कराएंगे, जिसकी मर्जी नहीं होगी वो नहीं कराएंगे। सामान्य योजना थी, जो आएगा उसका बीमा करेंगे। समावेशी योजना है, एक भी किसान छूटना नहीं चाहिए, सबका बीमा करेंगे।
1: इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक और सवाल है कि मैम, बीमा हम तब कराते हैं जब हमें ये कहीं ना कहीं अंदेशा रहता है, कहीं ना कहीं ये खतरा रहता है कि हमारी फसल या हमारी पूंजी जो है बर्बाद हो जाएगी, तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम एक बीमा कराते हैं। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से खतरे हैं और कौन से नए खतरे इसमें जोड़े गए हैं?
2: जी, नए खतरे जोड़े गए का मतलब होता है, पहले फसल बीमा सिर्फ कुछ ही नुकसान कवर होते थे,
1: जी
2: जैसे बाढ़, सुखाड़। अब समावेशी योजना में कुछ नए खतरों को जोड़ा गया है, जिसमें फसल खराब होती है और किसानों को पैसा मिलेगा।
1: जी
2: खरीफ 2026 में दो नए खतरे जोड़े गए हैं। पहला, जंगली जानवरों से नुकसान, जैसे नील गाय, जंगली सुअर, बंदर। धान के खेत में जल भराव से नुकसान, दोनों का क्लेम अब मिलेगा। आकाशीय बिजली नुकसान, कीट और रोगों का बड़ा हमला। बेमौसम बारिश से नुकसान का मतलब है, पहले जहां इन कारणों से फसल खराब होने पर पैसा नहीं मिलता था, अब इन नए खतरों से जुड़ने से पैसा मिलेगा।
1: यानी किसान भाइयों को अगर इन इन चीज़ों से नुकसान होता है, जैसे ने बताया कि नील गाय या जंगली सुअर या बंदर उनकी फसल बर्बाद करते हैं, तो उसका भी मुआवजा या उन्हें
2: हाँ
1: प्रतिपूर्ति उसकी की जाएगी।
2: जी, ये नुकसान जो होने पर 72 घंटे के अंदर में आपको फसल बीमा ऐप पर
1: जी
2: फोटो डालनी है या 1-444-7 नंबर पे सूचना देनी है।
1: आपने बताया कि 72 घंटे के अंदर हमारे
2: हाँ
1: किसान भाई जो भी सुन रहे हो अपनी फसल के नुकसान के 72 घंटे के अंदर फसल बीमा ऐप पर उसकी फोटो अपलोड करनी है।

0: और दूसरा एक जो नंबर जो बताया आपने 1447
1: 7
0: पे उसकी सूचना भी देनी है।
1: जी
0: हम फसल बीमा पे आते हैं तो सबसे पहले जो इसका की टर्म है, जो है जो प्रमुख शब्द है इसमें, फसल है। तो इसमें कौन कौन सी फसल सम्मिलित हैं, और बीमा जब भी कोई व्यक्ति लेता है तो उसको भी प्रीमियम देना पड़ता है, क्या इसमें किसानों को भी कोई अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता है?
1: जी देना पड़ता है। इसमें खरीफ की सभी फसलें
0: जी
1: जैसे धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, कपास और रबी की फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, आलू सभी शामिल हैं। खरीफ में 2%, रबी में 1.5%, बागवानी में 5%, बाकी केंद्र और राज्य सरकार देती हैं। धान के लिए लगभग 1632 रुपये प्रति हेक्टेयर जो है किसान उनको देना होता है। बाकी पूरा पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार आधा आधा देती है। उससे 1 लाख रुपए से अधिक सुरक्षा कवर करती
0: अच्छा,
1: है,
0: ये
1: देती है।
0: किसानों के लिए जो है एक सुरक्षा भी मिलती है।
1: जी
0: अब आपने बताया कि सरकार ने जो है खरीफ 2026 के सीजन से उनमें कुछ नए खतरों को भी शामिल किया है। तो एक उदाहरण स्वरूप कि कोई किसान ने खेती कर रहा है और उसके खेत को नील गाय या जंगली सूअर अगर उसे बर्बाद कर लेता है, खा लेता है, तो किसान की फसल तो बर्बाद हो गई, तो क्या उसे वहाँ भी बीमा का लाभ मिलेगा, और
1: जी
0: मिलेगा तो कैसे मिलेगा?
1: बहुत आसान प्रक्रिया है। जैसे ही नुकसान हो 72 घंटे के अंदर 3 काम करने हैं। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर खेत की फोटो और वीडियो डालें। 1447 हेल्पलाइन पर कॉल करें। अपनी पटवारी या कृषि विभाग को सूचित करें। उसके बाद बीमा कंपनी का समवेयर 48 मतलब 48 घंटे में आपके खेत पर आएगा और नुकसान का आकलन करेगा।
0: जी, आपने ये काफ़ी विस्तार से बताया कि किस कौन से ऐप है और कौन से प्रमुख नंबर है जिस पे कि कॉल करके अपने बीमा की डिमांड की जा सकती है
1: जी
0: या मांग की जा सकती है। मैम, कई बार ऐसा होता है कि कई बटाईदार किसान भी होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके पास स्वयं के ज़मीन के कागज़ भी नहीं होते हैं, तो क्या ऐसे में उनको भी बीमा का लाभ मिल सकता है?
1: बिल्कुल मिलेगा। यही तो समावेशी का असली मतलब है। बटाईदार को सिर्फ एक स्वयं स्वयं घोषणा पत्र और ग्राम प्रधान या पटवारी से एक प्रमाण पत्र देना होगा उस खेत का जो कि खेती कर रहे हैं।
0: जी
1: जमीन की खेतौनी होना जरूरी नहीं है।
0: जी अच्छा, अगर खतौनी नहीं भी है लेकिन वो ग्राम प्रधान या पटवारी से एक प्रमाण पत्र देता है
1: जी
0: तो वो बीमा प्राप्त, बीमा का लाभ लेने के लिए एलिजिबल या उसके लिए जो है योग्य हो जाता है।
1: जी
0: हमारे प्रयागराज के किसान जो हमारे यहाँ खेती कर रहे हैं, वो कैसे आवेदन करें, और आवेदन के लिए कौन कौन से प्रमुख कागज़ या पेपर वर्क कहें, कौन कौन से कागज़ लगेंगे, कौन कौन से कागज़ उनको सबमिट करने होंगे, या कौन कौन से कागज उनको अपने पास रखने होंगे, इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं
1: जी
0: को।
1: खरीफ मौसम के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जिसे इस बार बढ़ाकर अगस्त तक किया जा रहा है। रबी के लिए 31 दिसंबर अंतिम तिथि है। आवेदन के 3 आसान तरीके हैं। pmfby.gov.in पर जाकर अपने नज़दीकी बैंक या सहकारी समिति में अपने गांव के जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जाके कर सकते हैं। सिर्फ 4 कागज चाहिए। आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक, जमीन की खतौनी या बटाईदार प्रमाण पत्र और बुआई का प्रमाण पत्र और कुछ नहीं।
0: आपने खरीफ के लिए बताया कि अंतिम तिथि बढ़ाकर अगस्त की गई, अगस्त का महीना तो बीत चुका है,
1: जी
0: लेकिन हमारे किसान भाई जो है रबी के लिए जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई 31 दिसंबर, उसका लाभ ले सकते
1: जी
0: हैं। और इसी से जुड़ा हुआ जब सवाल एक आता है कि जब हम बीमा के लिए, उसके जो मुआवजे के लिए हम आवेदन करते हैं या किसान भाई हमारे आवेदन करते हैं, तो उनके मन में भी एक सवाल रहता है कि जो पैसा है वो किस माध्यम से आएगा, कहाँ पे आएगा, क्या इसके बीच में कोई कटौती भी होगी?
1: नहीं, पैसा सीधे किसान के आधार से जुड़े बैंक खाते में आएगा।
0: जी
1: इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कटौती नहीं है। पहले फसल कटाई प्रयोग से नुकसान तय होता था, अब सैटेलाइट से यस टेक्निक से भी आकलन होता है, जिससे पैसा जल्दी आता है।
0: अब आखिरी में मेरा जो है दो सवाल और रहेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा और मौसम आधारित बीमा में क्या कोई अंतर है, अगर है तो उसके बारे में हमें बताएं।
1: जी फसल बीमा में आपकी पैदावार कम होने पर पैसा मिलता है, जबकि मौसम आधारित बागवानी फसलों जैसे केला, मिर्च, टमाटर के लिए इसमें अगर बारिश ज़्यादा हुई, तापमान ज़्यादा हुआ तो आपको नुकसान

0: के हिसाब से पैसा मिलता है, पैदावार देखने की जरूरत नहीं है।
1: सबसे आखिरी में मेरा सवाल चलते चलते कि हमारे किसान भाई जो भी इस प्रसारण को सुन रहे हैं, जो भी प्रधानमंत्री जो समावेशी फसल बीमा योजना उसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगी, क्या जरूरी बातें जो आप उनके साथ हमारे माध्यम से बताना चाहती हैं?
0: जी, मेरा सभी से यही निवेदन है कि अंतिम तिथि का इंतजार मत करिए, आज ही अपने जनसेवा केंद्र पर जाएं। 2% में आपकी अपनी 6 महीने की मेहनत को सुरक्षित कर रहे हैं, या खर्च नहीं है, आपकी फसल सुरक्षा है।
1: धन्यवाद उषा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने छोटी छोटी चीज़ों को बताया कि हमारे किसान भाई अगर समावेशी फसल बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कौन कौन से प्रमुख कागज, कौन कौन से प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, किस ऐप पे और किस फ़ोन नंबर पे जाकर अपनी शिकायतें कर सकते हैं, अपने बीमा का आवेदन कर सकते हैं जिससे उनका लाभ मिले। और किसान भाइयों से हम कहेंगे कि आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आपकी फसल में किसी भी तरह की कोई समस्या आए और आपने उसका बीमा ले रखा है तो आप अपना जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन जरूर करें, ताकि जो प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना है उसके लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, मिल सके। धन्यवाद उषा जी हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए, बात करने के लिए। और किसान भाइयों, अगली बार हम फिर किसी और विषय पर जो आपकी खेती किसानी से जुड़ा हुआ उससे किसी और विषय पर बात करने के लिए किसी और एक्सपर्ट को हम आमंत्रित करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, धन्यवाद।
2: हाँ किसान भाई, देखें ये जोन बात बत कही, कितनी बढ़िया बात बत कही भाई, समावेशी फसल बीमा योजना पे उषा कुमारी से श्री दीपक राय बात बत कही भाई। किसान भाई सुनें तो गुने कहे कि फसल अक्सर तर देखे में और कहीं ज़्यादा बारिश से या कीड़ा मकोड़ा से, रोग से, या तमाम तरह के जानवर से, जंगली जानवर से भी नुकसान हो जाता तो पछताए के होत। अगर फसल बीमा योजना किसान भाई ले रही तो भाई उकर भरपाई हो जाए, कोनो दिक्कत ना होए, तो इसके बारे में अच्छी जानकारी किसान भाई सुनन। एक बात और कि हमारे सबके जो भी कार्यक्रम होते हैं, किसान भाई सोचत तो ही कि का अच्छा व का खराब, हम कैसे संदेश भेजी जोन बाटे का सलाह दी, देखिए नंबर बा लिख लें जो उनका का आजकल मोबाइल हर जगह चलिए बाबा, तो अपने नंबर बा 800-4926250 पे संदेश भेज सकते हैं। अब देखा चले कि बेला होगी तो बैजू आज्ञा द पंचो, राम राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: पंचो जय हिंद।
1: रेनू बहनी।
0: हाँ विनय भैया।
1: देखो हम पंच खेती किसानी करी थे और उके हर चरण में बहुत मेहनत करी थे और जो फसल अवशेष होते थे उका हम लोग बोझ समझे थे।
0: बिल्कुल भैया, और जब यही कहीं बोझ समझ ली थे और का सही से करित नहीं है तो हमका उके दुष्परिणाम झेलेक पड़ जाते हैं।
1: और हमका तो जो कुछ उसका दुष्परिणाम मिले थे तो मिलते हैं, इसके साथ साथ तमाम और लोग भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि आजकल जैसे अभी खरीफ की फसलें समापन की तरफ हैं तो बहुत सारी फसलें उठ रही हैं और खास करके जो धान की फसल है तो कई बार लोग धान का उत्पादन लेने के बाद में है और का जो पराली होते हैं पुआल होते हैं उसका समस्या के रूप में लेते हैं।
0: बिल्कुल भैया, लेकिन समस्या के रूप में ना लेक चाहिए और का देखो बहुत जने तो जलाए देते हैं, ये तो एकदम ना करे चाहिए। कहे कि यहाँ जो है इससे सबसे बड़ी बात प्रदूषण बहुत होते हैं, अपने पर्यावरण का जो है खराब करते हैं।

0: और जब प्रदूषण हुई तो देखो अपन सेहत भी खराब हुई। तो इस वजह से सबसे बड़ी बात क्योंकि जलाए ना उके सही तरीके से प्रबंधन करें और कंपोस्ट वगैरह बनाए के उके बढ़िया अपनी खेतन में यहाँ जो है उके इस्तेमाल करें, तो खाद के रूप में यहाँ बहुत बढ़िया काम ही करत है।
1: बिल्कुल सही कहे बहनी कि कई बार होते है कि जो पराली जलाना है भाई वो कानूनन रूप से भी जो है अपराध माना गया है और अपन पर्यावरण का भी बहुत नुकसान पहुंचा हुआ था, अपने स्वास्थ्य के यहाँ भी विपरीत प्रभाव डालते है। इसके साथ साथ जो अपन मिट्टी में यहाँ मित्र जीवाणु होते हैं उन्होंने का नुकसान पहुंचा हुआ था। एक ही का उपयोग हो सकता है कि जैसे मल्ची के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते कोई फसल लगाया है तो उसके लाइन के बीच में अगर उसका बिछाए दो तो काफी कुछ फायदा होते है, नमी भी बचत है और इसके साथ साथ जो घास फूस होते है उसका जमाव नए होते है और धीरे धीरे जो होते है वो फसल में यहाँ सड़ के खाद के रूप ले लेते।
0: भैया आजकल का मशरूम के उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल करा जाते हैं?
1: बिल्कुल, जब धान के पुआलों की कुट्टी बनाए गए हैं बहुत पंचभाई मशरूम का भी उत्पादन कर रहे हैं। तो कहे का मतलब है कि जहाँ चाह हुआ रहा, अगर आप सोच लिया हो कि करना है तो रास्ते निकलत हैं। तो भाई इका हम सब अपने पंचभाई से निवेदन करवे कि जो फसल अवशेष प्रबंधन है इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, इका लापरवाही में ना लें। और देखो एक बात और कि हम पंच चाहे जो कुछ करी लेकिन उसकी जानकारी अपने पास पुख्ता हो चाहिए।
0: भैया बिल्कुल जानकारी हो चाहिए और जानकारी हमेशा जब आप आसपास से जुड़ाव रखो तो तब होता है, या फिर खबरें होती हैं उनका सुनत रहो तब होता है।
1: तो भैया आज की खबरें सुना जाए।
2: केंद्र सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विपणन सीजन 2027-28 के लिए गेहूं का MSP 25 रुपए बढ़ाकर 2,610 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं दलहन और तिलहन पर सरकार ने ज्यादा जोर दिया है। मसूर के MSP में 390 रुपए, रेपसीड सरसों में 413 रुपए, कुसुम में 675 रुपए, चने में 83 रुपए और जौ में 136 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सरकार का साफ संकेत है कि किसानों को सिर्फ धान और गेहूं पर निर्भर रहने के बजाय दलहन और तिलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
1: रेणु बहनी,
0: हाँ विनय भैया,
1: तो देखो एक बहुत अच्छी जानकारी मिली आज की खबरें के माध्यम से ने। और एक बात और है कि जैसे हम पंच खेती में तमाम फसलों की खेती करी थे लेकिन कुछ फसलें होती हैं वो बड़ी आम होती हैं और लगभग सबकी जरूरत की होती है। वह मैं अपन सब्जी फसल में आलू आवत है।
0: बिल्कुल भैया, आलू तो देखो अपने सब्जियन के राजा कहा जाता है और सब सब्जियन के साथी कहा जाता है,
1: सबका मित्र है। चाहे आप परवल के साथ बना लो, चाहे आप गोभी के साथ बना लो, मटर के साथ बना लो, टमाटर के साथ बना लो, सबका साथ देते।
0: बिल्कुल भैया सबका साथ देते और हमारे सबके तो साथ बहुत देते है कि जब लड़का खाना नहीं खाते हैं तो ये आलू ऐसी सब्जी है जिसका सबको ही खा लेते
1: हैं। और आलू से सब्जी के अलावा और भी चीजें तैयार हो जाती हैं, उनका जो है आजकल तो प्रसंस्करण करके भी तमाम चीजें बनाई जा रही हैं। तो कहे का मतलब है कि आलू की खेती एक लाभकारी काम हो सकता है किसान के लिए, लेकिन सही बात यह है कि जब तक उन्नत वैज्ञानिक जानकारी न होते तब तक कोई भी खेती उतनी लाभप्रद न होते।
0: तो भैया सुन ली जाए आज की बात।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आइए आज आपको ले चलते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम मेरठ परिसर, जहां प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर आर के सिंह साहब टेलीफोन लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
4: नमस्ते
3: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आलू उत्पादन करना चाहते हैं इस बार किसान भाई बहन, तो उनके लिए क्या सलाह है आपकी?
4: किसान भाइयों, आलू एक बहुविकल्पी फसल है। आप इसको फसल सघनता के तौर पर राइस और व्हीट सिस्टम में लगाते हैं और कम अवधि में अच्छा उत्पादन, अच्छी उत्पादकता होने के कारण किसान इसे कैश क्रॉप के रूप में भी लेते हैं। समय ऐसा आया कि अब प्रसंस्करण युक्त प्रजातियों का विकास हुआ तो प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी हम इसकी बात करते हैं। कुछ किसान भाई हमारे बीज उत्पादन में भी आलू को एज ए व्यवसाय उपयोग कर रहे हैं। कुछ किसान भाई जो अगेती फसल लगाते हैं उसमें अर्ली बल्किंग और साथ में अगर हम बात करें तो जो हीट टॉलरेंट वैरायटी है जैसे कुफरी सूर्या, उस किस्म को भी लगाते हैं क्योंकि उसमें जो ट्यूबराइजेशन थोड़ा सा ज्यादा तापमान पर हो जाता है और जब तापमान गिरता है तो उसकी ग्रोथ चेक होती है। तो इन तमाम विकल्प हैं किसान को कि जिस भी किस्म को और जिस भी विकल्प के रूप में लगाना चाहें। और एक मैं और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश लगभग अगर मैं बात करूं तो 7 लाख हेक्टेयर के ऊपर ही यहाँ पर आलू की खेती किसान करते हैं और 2.25-26 टन अगर उत्पादकता है उसको अगर हम देखते हैं तो 18 से 19-20 मिलियन टन के करीब आलू भी होता है जो कि पूरे भारत वर्ष का करीब 35-36% के करीब है। तो किसान भाइयों आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारा उत्तर या पश्चिम उत्तर

0: प्रदेश है वहां पर बीज उत्पादन के लिए वो क्षेत्र काफी मुफीद। सेंट्रल यूपी हमारा बनता है कि हम आगरा से अगर कानपुर तक जाएं तो वहां टेबल पोटैटो पर हमारे किसान भाई करते हैं, और हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत अधिक हैं प्रसंस्करण युक्त किस्मों का। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं स्टेब्लिश है जिसके साथ की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसान अपने उत्पाद को और अपने जो रॉ मटेरियल है उसको उस इंडस्ट्री को दे करके अच्छा लाभ प्राप्त करें।
1: डॉक्टर साहब, इस साल बारिश अधिक हुई है लगातार, तो उसके चलते बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या रहेगा?
0: किसान भाइयों, बुआई के लिए यदि अगेती फसल की हम बात करें तो अगेती फसल का समय लगभग निकल चुका है, या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अगर कोई लगा सकते हैं तो लगा लें। और अगेती फसल का भविष्य भी, जब से हमारे लोग शुगर फ्री आलू के तौर पर CIPC ट्रीटमेंट के आलू खाने लगे, तब से नया आलू का प्रचलन हमारे जो बाजार में भी है वो उस समय आ रहा है जब दिसंबर के जनवरी के माह में, वह भी एक कारण है आलू में ग्लट आने का। क्योंकि शुरू में 8 से 10% जो अगेती फसल होती थी उसकी जो उत्पाद है उसका उत्पादन है वो अक्टूबर के आसपास आना शुरू हो जाता था। जैसे जो पहाड़ों की और प्लेटू रीजन की खरीफ फसल थी उसका सितंबर अक्टूबर में आता था, और जो हम सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगाते थे वो दिसंबर माह से 65-70 दिन पर हमें मिलने लगता था। जैसे कन्नौज में लोग करते थे, अगर हम बात करते हैं हिमाचल की तो वहाँ ऊना है, पंजाब में होशियारपुर है, और जो छोटे मझोले सीमांत कृषक हैं वो भी एक अतिरिक्त फसल लेने के लिए इसको लगा लेते थे। तो अब जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो अब मुख्य फसल लगाने का समय आ चुका है, 15 अक्टूबर से लेकर के और लगभग नवंबर का प्रथम सप्ताह। और जो लगाए भी होंगे, बारिश बहुत अधिक हुई है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूपी में बारिश का बहुत अधिक प्रभाव रहा है, उसमें अब उनका जमाव कैसा होता है इस पर निर्भर करेगा। और आलू अगर नहीं जमेगा, आलू का अगर खेत पूर्ण रूप से अगर पानी से भरा हो गया होगा तो पूरा का पूरा आलू सड़ जाएगा। तो हम अब बात करें मुख्य रूप से मुख्य फसल की, क्योंकि अब अक्टूबर का आज पहला दिन है और खेत की तैयारी करें। खेत की तैयारी करने के बाद अपनी अच्छी किस्मों का चयन करें, अच्छी किस्मों का चयन करके और आलू की बुआई की शुरुआत करें।
1: डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
0: किसान भाइयों, खेत की तैयारी में सामान्य रूप से अच्छी तरह से जुताई कर लें जिससे कि जो टिलेज है वो अच्छा हो जाए, फाइन टिल्थ हो। और इसके उपरांत आप इस बात का जरूर ध्यान दें कि आलू की जो बुआई करते हैं वो लो लेवल का फील्ड ना हो, क्योंकि कभी कभी जो जाड़ों में ठंडक में भी कोई तगड़ी बरसात हो जाती है या खुदाई के समय तगड़ी बरसात हो जाती है तो फसल को नष्ट होने की संभावना होती है। तो चुनाव करें कि जो ऊपरवार जमीन हो जहां पानी लगने की संभावनाएं कम हो और सैंडी लोम हो,
1: यानी बलुई
0: मतलब
1: दोमट।
0: बलुई दोमट हो, और उसमें इस बात को ध्यान में रखें। और अगर ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है तो हम इस बात पर भी जोर दें कि ग्रीन मैन्योरिंग अगर कर लिए हैं तो बेहतर है, और नहीं तो गोबर की खाद की अगर संभावनाएं हैं उनके पास तो कम से कम 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर खेत में डालें, क्योंकि
1: यानी चालीस
0: ऑर्गेनिक
1: कुंतल प्रति एकड़।
0: जी। तो ये होगा कि जीवाश्म की मात्रा अगर अच्छी होगी तो मिट्टी में उपलब्ध जो फास्फोरस और पोटास की जो जरूरत है उसकी मिनरलाइजेशन और उसके न्यूट्रिएंट का अपटेक अच्छा होगा और किसान को कम उर्वरक और खाद को डालने की आवश्यकता पड़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में?
0: किसान भाई, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो तीन प्रमुख किस्मों की हम बात करते हैं। एक कुफरी बहार, जो किसान उसको 37-97 भी बोलता है, एक कुफरी चिप्सोनावन, ये दो एक प्रसंस्करण और टेबल पोटैटो में भी आती है, और कुफरी बहार मुख्य रूप से टेबल पोटैटो में है लेकिन मजबूत किस्म है इसका उत्पाद। और इसके उत्पादन के पश्चात किसान भाई इसको आगरा से और फिरोजाबाद से वहां के आसपास से इसको चेन्नई मुंबई तक इसको भेजते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में इसमें लॉसेस कम है। और दो तीन और किस्में हैं, कुफरी मोहन है, अगर अगेती में किसी को लगाना है 60-65 दिन में 70 दिन में सबसे अधिक उपज पाना

0: है तो ये अर्ली बल्किंग है, इसको लगा लें। कुफरी ख्याति है, उसमें भी अर्ली बल्किंग की स्थिति है, उसको भी हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। और दूसरी हमने जो चर्चा किया है कि हीट टॉलरेंट की, उसमें कुफरी सूर्या बहुत पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी प्रजाति है, और चार पांच किस्में हमारे संस्थान द्वारा और जारी की गई हैं। कुफरी किरण, कुफरी भास्कर, कुफरी तेजस, इन किस्मों को भी किसान भाई अगर उपलब्ध बीज हो तो लगा सकते हैं। इसके बाद अगर प्रसंस्करण के क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें भी चिप्सोना 1, चिप्सोना 3, चिप्सोना 5, इन किस्मों को भी किसान भाई, कुफरी फ्राई ओम, कुफरी फ्राई सोना, इन किस्मों को भी किसान भाई लगा सकते हैं, जो जैव संवर्धित किस्में हैं। तो किसान भाई, इस किस्म को हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे संस्थान द्वारा विकसित एक कुफरी नीलकंठ, कुफरी जमुनिया, और तीसरी हमारी है जिसमें कि जिंक और आयरन बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, कुफरी मानिक बोलते हैं। और जो कुफरी नीलकंठ है, इसमें विटामिन सी और टोटल बायोकैरोटीनाइड और एंथोसाइनिन ये मिलता है, और जो हमारा कुफरी नीलकंठ है वो रिच एंथोसाइनिन। तो किसान भाई, इन किस्मों को पहले तो मैं ये सुझाव दूंगा कि आप अपने जो किचन गार्डन लगाते हैं, अगर थोड़ा बीज मिले तो इसको लगाएं और स्वतः खाने के लिए प्रयोग करें। नीलकंठ बहुत अच्छी किस्म है, खाने में भी बहुत अच्छी है, उपज भी बहुत अच्छी है। और अगर हम कुफरी जमुनिया की बात करें तो इसको किसान भाई, अंदर से कलर इसका जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसका कलर उसी तरह का होता है जिस तरह से इसकी स्किन होती है, जामुन की तरह का। तो उसकी सब्जी तो उतना अच्छे से नहीं, लेकिन सलाद के तौर पर उसको अगर रायते में डाल करके इस तरह से अगर हम प्रयोग करें तो अच्छा कर सकते हैं। मानिक बहुत अच्छी है, जिंक का और आयरन का रिच सोर्स है। किसान भाई, इस किस्म को भी उपयोग में लाएं और अपने किचन गार्डन में जरूर लगाएं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आलू की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके मोदीपुरम परिसर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 94-51-91-45-42, 9451-91-4542, 94-51-91-45-42।
1: डॉक्टर आर के सिंह साहब, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई। जो आलू उत्पादन के किसान भाई बहन हैं, आपके सुझाव पर अवश्य ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब एक बात और,
3: उका भैया,
2: बात वह है कि देखो अपने कार्यक्रम में है गीत गौनई न हो तो कार्यक्रम का रंग जो है थोड़ा अधूरा रहता है, आनंद कम हो जाता है।
3: बिल्कुल भैया, तुम तो हमारे मन की बात कह दियो। जब तक गीत गौने ही ना हुई तो काम मनो नहीं लागत है भैया।
2: बिल्कुल, जो है एक तरह से मानसिक खुराक होते, व्यक्ति का जो है थकान दूर हो जाते हैं, मन आनंदित हो जाते हैं। तो भाई का प्रयास अपने कार्यक्रम में कीन गवा है, और हीरा लाल सैनी उनके साथी भैया ये गौने लाए हैं, चांद कबले लुकयो बदरिया माँ, तो एक सुना जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: देखो अब एक बात और है कि हम पंच सब खेती किसानी में खूब मेहनत करी थे और कोशिश होता है कि हमारा काम बढ़िया से बढ़िया हो, कोशिश सबकी होती है, लेकिन कुछ लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं और उनका काम ऐसा होता है जो दूसरे के लिए प्रेरणा हो सकता है।
7: बिल्कुल भैया, प्रेरणा हो सकता था, ऐसा लोगन का यहाँ हम लेके आए थे आज के किसान क्रम में। यहाँ
8: किसान भाइयों बहनों, आज के किसान क्रम में आइए आज आपको ले चलते हैं झांसी जनपद के गुरसराय ब्लॉक के टोड़ी फतेहपुर गांव, जहां किसान उत्पादक संगठन से जुड़े पुष्पेंद्र यादव भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। पुष्पेंद्र भैया नमस्कार।
9: नमस्कार सर, आपको बहुत बहुत नमस्कार, सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार सर।
8: पुष्पेंद्र भैया, आप किसान भाइयों बहनों का संगठन यानी FPO के माध्यम से आपने औषधि फसलों की खेती का बीड़ा उठाया है, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और इससे जुड़ाव हुआ कब से?
9: पढ़ाई लिखाई की बात करें तो हम कृषि विज्ञान से MSc हैं, तो कृषि विज्ञान का छात्र होने के नाते मैंने सोचा कुछ ऐसा अभिनव प्रयोग करें जिसमें हमारा भी भला हो, क्षेत्र के किसानों का भी भला हो, उनकी आय बढ़े, समृद्धि आए। तो इस विषय में हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम करें कि किसान ये सोचे कि नहीं, किसानी जो है वो फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा नहीं है। इसी को लेकर के हमने फिर वो काम छोड़ करके खेती में एक अभिनव प्रयोग किया और औषधि फसलों की खेती शुरू की। औषधि फसलों में मुख्य फसल हमने तुलसी की खेती शुरू की और 2 एकड़ से इसको स्टार्ट किया। पहले हमने जब हमने लगाया तो लोगों ने हंसी की कि तुलसी को तो गमले में लगाते हैं, तुलसी की तो हम पूजा करते हैं, खेत में 2 एकड़ में तुलसी कैसे होगी। तो उसमें ये हुआ कि जब लोगों ने हमारा देखा कि 2 एकड़ में हमें लगभग 1 लाख से ऊपर का फायदा हुआ, तो आसपास के किसानों ने भी सोचा कि नहीं यार, ये तो अच्छा काम है और हमें भी करना चाहिए, तो फिर उनका जुड़ाव शुरू हुआ। पहले तो लोग भाग रहे थे।
8: तो कितने साल पुरानी बात है ये?
9: ये 2014 से हमने शुरू किया था,
8: यानी 12 साल हो गए।
9: 12 साल हो गए हैं और पिछले 12 सालों में देखेंगे तो 2 एकड़ से शुरू किया और आज 4,000 एकड़ में हम एक संगठन के रूप में, कृषक उत्पादक संगठन के रूप में, क्लस्टर के रूप में इसको कर रहे हैं।
8: तो तुलसी से आपने शुरुआत किया और कौन कौन सी औषधि फसलों को जोड़ा है आपने?
9: देखिए, तुलसी की जो हम फसल ले रहे हैं ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, बरसात में लगाते हैं। अभी देखेंगे तो हमारे खेतों में तुलसी खड़ी हुई है, जुलाई और अगस्त में इसका प्लांटेशन करते हैं, पहले सीडलेस तैयार करते हैं, पौध बना के मुख्य खेत में रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद में ये 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और अक्टूबर लास्ट और नवम्बर फर्स्ट वीक में इसकी कटाई हो जाती है। इसकी कटाई होने के बाद जब खेत खाली होते हैं तो हम लोग फिर इसमें अश्वगंधा लगा देते हैं।
8: जो तुलसी की कटाई होती है क्या डिस्टिलेशन करते हैं क्या?
9: नहीं नहीं, देखिए दोनों चीजें करते हैं डॉक्टर साहब, इसमें हम डिस्टिलेशन भी करते हैं और आपको बताएं इसकी जो आज बात करें तो हम देखने में आ रहा है कि ग्रीन टी का बड़ा चलन आ गया है, सब लोग

0: चाय को थोड़ा सा किनारे करके, दरकिनार करके और ग्रीन टी की तरफ जा रहे हैं। और जितनी भी ग्रीन टी कंपनियां बनाती हैं उन ग्रीन टी में 70-80% आपको बताए तुलसी की पत्ती होती है। तो जितनी ग्रीन टी बनाने वाली कंपनियां हैं उनको तुलसी की पत्ती की आवश्यकता होती है, तो सूखी पत्ती और हमसे ले जाती है।
1: अच्छा, तो जैसे अक्टूबर में आपका खेत खाली हुआ, फिर आपने अश्वगंधा की बुआई की, फिर
0: पहले तो तुलसी की पत्ती की बात करें तो हम तुलसी की कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद 2-3 दिन में इसको सुखाते हैं, एक प्लास्टिक की जो सीट होती है उसमें डाल देते हैं। जब सूख जाती है तो पत्ती को झड़ा लेते हैं। झड़ाने के बाद में जो सूखी पत्ती है वो अलग हो जाती है, डंठल और उसकी जो तना है वो अलग हो जाता है। और जब झड़ाते हैं तो बीज और पत्ती दोनों उसी एक ही जगह सीट पे आ जाते हैं। फिर हम छन्ने की सहायता से बीज को अलग करते हैं और पत्ती को अलग कर लेते हैं। तो जो बीज होता है वो बीज में चला जाता है और जो तुलसी की पत्ती है वो ड्राई लीफ के रूप में चली जाती है, कंपनियां ले जाती है। तुलसी की बात करें एक एकड़ में, तो हम बताना चाहेंगे एक एकड़ में हमारे किसान भाइयों को तुलसी का जो लागत खर्चा है वो 15,000-20,000 रुपए खर्चा आता है पूरी फसल तैयार करने में। और शुद्ध मुनाफा की बात करें तो ये तुलसी की पत्ती और तुलसी का बीज, तुलसी की पत्ती लगभग 5-6 क्विंटल प्राप्त हो जाती है, जो मार्केट में आज बात करें तो 120-130 रुपए किलो जा रही है, यानी कि 12-13,000 रुपए क्विंटल। तो अगर 6 हो गई तो 72,000 रुपए की हमारी तुलसी की पत्ती आ गई है। और बीज की बात करें तो एक एकड़ में करीब 25-30 किलो बीज भी मिल जाता है, लगभग 500 रुपए किलो बीज मार्केट में बिकता है। कंपनियां तो बड़ा महंगा बेचती हैं, 2,000 और 3,000 रुपए किलो बेचती हैं, लेकिन किसान जब मंडी में जाता है तो बीज की कीमत 400-500 रुपए किलो, 600 रुपए किलो ही मिल पाती है उसे। तो अगर हम बात करें कि 30 किलो बीज हो गया तो 15,000 का बीज हो गया, 70-72,000 की हमारी पत्ती हो गई है, ऐसे करके लगभग 85-87,000 रुपए हो गया। अगर इसमें से हम 20,000 रुपए लागत खर्चा काट देते हैं तो लगभग हमें 63,000 रुपए शुद्ध मुनाफा एक एकड़ से किसान को हो जाती है, ये खरीद की बात
1: जी।
0: अब इसको काट के हमारे किसान भाई सारे जो है ना वो अश्वगंधा लगाते हैं, अश्वगंधा की सीधी बुआई करते हैं। एक एकड़ में लगभग 10 किलो हमें बीज की आवश्यकता होती है। खेत को अच्छे से तैयार करके ब्रॉडकास्टिंग रूप से उसकी हम बुआई करते हैं, हल्का पानी लगाते हैं और ये 4 महीने की फसल है। हम इसको नवंबर में लगाएंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक में इसको हम लोग अप्रूव करते हैं, इसकी जड़ काम में आती है।
1: जी।
0: एक एकड़ में हम बात करें तो लगभग 3-4 क्विंटल अश्वगंधा प्राप्त हो जाता है और अश्वगंधा इस समय मार्केट में चल रहा है 25,000-30,000 रुपए क्विंटल, तो लगभग 1.25 लाख रुपए का अश्वगंधा रबी में किसान को मिल जाता है।
1: पुष्पेंद्र भैया, आपके किसान उत्पादक संगठन में कुल कितने किसान भाई बहन जुड़े हैं?
0: देखिए, जो हमारे शेयर होल्डर है वो 913 किसान है इसमें, लेकिन जुड़ने की बात करें तो लगभग 4,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं क्षेत्र के।
1: किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से औषधि फसलों की खेती में तुलसी और अश्वगंधा उत्पादन करके सब खुशहाल हैं?
0: बिल्कुल खुशहाल है। और आपको बताएं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, सारे किसान भाइयों को ऐसा अभिनव प्रयोग करना होगा, खेती में विविधीकरण अपनाना होगा, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाना होगा, तभी आय दोनी होगी। सारा हम अपना झांसी का जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, माननीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब, SDM, सारे अधिकारी हमारे खेतों पे आए हैं, विजिट किया है किसानों के साथ में, और किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं ताकि और किसान देखें और औषधि खेती करें, फलों की खेती करें, फूलों की खेती करें ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके।
1: पूरे साल में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से कितनी आमदनी हो जाती है?
0: देखिए, अब किसान की बात करें तो एक किसान अपनी अपनी फसल का उपज लेता है, लेकिन अगर पूरे उत्पादक संगठन की बात करें तो संगठन का जो पूरे साल का जो टर्नओवर है वो लगभग 15-16 करोड़ रुपए का टर्नओवर है एक साल।
1: और उसका शेयर सबको मिलता होगा?
0: हाँ, उसका जो डिविडेंड फंड है, जो लागत काट के, खर्चा काट के जो बचता है, वो सारे किसानों को किसी ना किसी रूप में या गिफ्ट के रूप में या उनको हम लोग कुछ सामान के रूप में या यंत्र के रूप में उनको हम लोग बांटते हैं और उनको लाभान्वित करते हैं।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मोबाइल नंबर है 9936010022, 9936010022, 9936010022।
1: पुष्पेंद्र यादव भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप MSc कृषि की पढ़ाई के बाद सीधे खेती में जुड़ गए और आज किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से औषधि फसलों की खेती करके पूरे मंडल में क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। कुल मिला जुला करके आप

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अब अगर हो तुम्हारे लगे मौसम के हाल तो बता दो, कहे कहीं अपनी खेती बाड़ी में अगर मौसम पहले से पता रहते हैं तो भाई बहुत लाभ मिला था हमका।
4: भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से ने जो मौसम की जानकारी है उसका अनुमान यू है कि अगले समय में मौसम अधिकांश जगह पर शुष्क रहने की संभावना, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सके, तो कोई भारी बारिश के कोई जो है चेतावनी अपने पास नहीं है।
3: और हमका उम्मीद है कि आप सब किसान भाई बहन इनके यहाँ यू अंक बहुत पसंद आवा हुई है।
4: और अब यह के साथ हमका यानी विनय के यहाँ
3: और हमका यानी रेणु के यहाँ
4: देव अनुमति
3: जय हिंद।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 FM आकाशवाणी प्रयागराज के साथ, धड़कन हर दिल की।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सह प्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश व्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्य जीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ।

0: नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लोकभवन सभागार में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक संघर्ष का विमोचन भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब 7 पुलिस कमिश्नरेट काम कर रहे हैं। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है।
1: राज्य सरकार की जो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, इस नीति को यूपी पुलिस पूरे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करेगी। वर्षों से, दशकों से जो मांग हो रही थी कि यूपी पुलिस के भी कुछ कमिश्नरेट बनने चाहिए, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 7 पुलिस कमिश्नरेट हम यूपी के अंदर बना चुके हैं और जो सफलतापूर्वक अपनी सेवाएं आज देश को, प्रदेश की 25 करोड़ जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं।
0: श्री योगी ने बताया कि कार्यक्रम में 16 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार तथा 10 पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यमंत्री वीरता पदक से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने सभी वीर पुलिस कर्मियों को बधाई दी। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने आज लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने क्षेत्रीय अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक कर बूथों से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक की तैयारियां परखी। इससे पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि उनके दौरे के दौरान आगामी चुनाव की तैयारियों को संगठन मजबूती पर विचार विमर्श होगा।
2: तावड़े भी संगठन के प्रभारी हैं तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में आना जाना उनका रहेगा ही, और चुनाव निकट है तो निश्चित तौर से हम लोग कार्यकर्ताओं का संगठन हमारा बूथ तक कैसे मजबूत हो उसकी चर्चा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ सभी संबंधित विभागों और आमजन की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, जागरूकता और समय पर रोग की पहचान के माध्यम से संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। श्री पाठक लखनऊ स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: इस अभियान के दौरान हम सभी घरों में दस्तक अभियान भी चलाएंगे। सबसे पहले जो गंदगी की सफाई करना है, फिर उसके उपरांत हमें मच्छर मारने की दवा की फॉगिंग करनी है। इसके अलावा लार्वा मारने के लिए भी हम दवाइयां डालेंगे।
0: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर और दस्तक अभियान 12 से 31 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। इस अधिनियम का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकना और लोगों को समय पर पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिनियम में प्रावधान है कि अगर किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार को 1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट, उप विभागीय मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में वन विभाग 2 से 8 अक्टूबर तक वन्यजीव सप्ताह मनाएगा। पूरे सप्ताह भर पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीवों पर आधारित मास्क मेकिंग, छद्म आवरण अनुकरण पर चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, फैंसी ड्रेस, फेस पेंटिंग, रंगोली

0: मेहंदी जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस दौरान प्रदेश के बच्चे वन्यजीव के संसार में अपने मनोभाव से रंग भरेंगे। इस अवधि में प्रतिभागी व 12 वर्ष तक के बच्चों का चिड़ियाघर में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और पशु कल्याण के प्रति जागरूक करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने किस तरह उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है, जिसके पहले चरण को PPP मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। 28 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यहाँ से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों की कनेक्टिविटी को नई उड़ान मिलेगी।
2: नोएडा का एयरपोर्ट आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, इस पूरे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने वाला। एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों, छोटे और लघु उद्योगों, यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला।
1: नोएडा के निवासी मोहित कुमार ने कहा कि यह एयरपोर्ट पूरे क्षेत्र की नई पहचान बनेगा।
3: इससे रोजगार, व्यापार, उद्योग, पर्यटन और युवाओं के लिए नए अवसर बढ़ेंगे। आसपास के गांव और कस्बों में सड़क परिवहन, अन्य सुविधाओं के विकास को गति मिलेगी।
1: यह हवाई अड्डा देश में एविएशन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशाल दरदुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन लखनऊ के गांधी सभागार में आयोजित क्षमावाणी पर्व एवं त्यागी व्रति सम्मान मिच्छामी दुक्कड़म कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने त्यागी व्रति जनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत एक जीवंत संस्कृति है और विविधताओं का उत्सव है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आज लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में आयोजित समारोह में 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके 3 वर्ष जनों को शतायु सम्मान और समाज में रचनात्मक योगदान दे रहे 4 वरिष्ठ जनों को सीनियर अचीवर्स सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि बुजुर्गों का सम्मान केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में 87 इंटरसेप्टर वाहनों को दिखाई हरी झंडी, कहा सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। भाजपा प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने लखनऊ में सहप्रभारियों और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों के साथ की बैठक, आगामी चुनाव को लेकर परखी तैयारियां। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का किया शुभारंभ, कहा रोगों की रोकथाम के लिए सामूहिक भागीदारी आवश्यक। और कल से 8 अक्टूबर तक प्रदेश में मनाया जाएगा वन्यजीव सप्ताह। वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बरेली में वॉकथॉन फॉर वाइल्ड लाइफ के साथ कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। हिंदी कार्यक्रम में प्रस्तुत है निशा।

0: यादव की कहानी सुनहरी सांझ।
1: आज फिर एक कहानी निशा की जुबानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। आज की कहानी सुनहरी सांझ। मिसेज अवस्थी, आपकी चाय ठंडी हो रही है, बाहर लॉन में ही लेकर आ जाऊँ? आ रही हूँ राय साहब, पूजा तो कर लेने दीजिए सुकून से। आंटी की उम्र 65 से तो ऊपर ही होगी, लेकिन काले सफ़ेद बालों का ढीला सा जूड़ा, सलीके से बांधी गई साड़ी, गोरा रंग, सुनहरा चश्मा, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। और अवस्थी अंकल, वो प्रोफेसर कम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ज़्यादा लगते हैं। ट्रैक सूट हो या फॉर्मल्स, लेकिन कैप हमेशा पहने रखते हैं। स्पोर्ट शूज़, हाथ में छोटा सा रूलर, 70+ में भी चुस्त दुरुस्त, जिंदा दिल्ली से भरपूर। और हाँ, सुगंधा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सुगंधा जैन।

नमस्ते, आपकी चाय ठंडी हो रही है? बाहर लॉन में ही लेकर आ जाऊं? आ रही हूँ राय साहब, पूजा तो कर लेने दीजिए सुकून से। आंटी की उम्र 65 से तो ऊपर ही होगी, लेकिन काले सफ़ेद बालों का ढीला सा जूड़ा, सलीके से बांधी गई साड़ी, गोरा रंग, सुनहरा चश्मा, बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनका। और अवस्थी अंकल, वो प्रोफेसर कम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ज़्यादा लगते हैं। ट्रैक सूट हो या फॉर्मल्स, लेकिन कैप हमेशा पहने रखते हैं। स्पोर्ट्स शूज, हाथ में छोटा सा रूलर, 70+ में भी चुस्त दुरुस्त, जिंदा दिल्ली से भरपूर। और हाँ, सुगंधा के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। सुगंधा जैन अभी कुछ दिन पहले ही अवस्थी आंटी के घर में किराए पर रहने आई है, फर्स्ट फ्लोर पर। पति सुनील भी बैंक में हैं, लेकिन अलीगढ़ में, अपने शहर में। सुगंधा का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया तो 4 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रहना तो ज़रूरी था कि ऐसी जगह घर लिया जाए जहाँ से बैंक और नव्या का स्कूल ज़्यादा दूर ना हो। अपने कलीग अभिनव की मदद से उसे आंटी का घर रहने को मिल गया। घर जितना खूबसूरत है उतना ही अच्छा है अंकल आंटी का व्यवहार। आज सेकेंड सैटरडे की छुट्टी थी तो सुगंधा ने अंकल आंटी को ब्रेकफास्ट के लिए ऊपर ही बुला लिया था। अंकल आते ही बोले, तो भाई सुगंधा, कब आ रहे हैं आपके मिस्टर सुनील? शाम तक आ जाएंगे अंकल। तभी इतनी खुश लग रही हो, बिटिया जो आ रही है। जी आंटी, पहली बार इतने दिनों के छोड़कर आई हूँ ना। ब्रेकफास्ट के दौरान बैंक की, स्कूल की बातें होती रहीं। आंटी, नव्या का एडमिशन तो सेंट जॉन्स एकेडमी में हो जाएगा, लेकिन कोई क्रेश देखना होगा आसपास, या फिर कोई फुल टाइम मेट। यदि कोई विश्वसनीय हो जिसे आप जानती हो, बच्ची दोपहर से शाम तक घर में अकेली तो नहीं रह सकती ना। सुगंधा परेशान सी लग रही थी। लेकिन बेटा, घर में दादी नानी कोई तो होगा ना, वहाँ कौन संभालता है बच्ची को? वहाँ तो पुरानी अम्मा हैं, पूरा घर वही देखती हैं। बीच बीच में गांव से माँ जी भी आ जाती हैं 2-4 महीने के लिए, लेकिन फिर शहर से ना जल्दी ही मन उठ जाता है उनका। और मेरी मम्मी तो कई साल पहले ही नहीं रहीं, बोलते बोलते आंखें भर आई थी सुगंधा की। अरे तुम परेशान मत हो सुगंधा, वो मेरे पास ही रहेगी, जैसे 3-4 बच्चे और रहते हैं। मतलब? चौंक कर पूछा सुगंधा ने। अरे भाई, मैं और मिसेज अवस्थी क्रैच भी चलाते हैं। अपने आंगन को गुलजार रखने का सबसे प्यारा तरीका है हमारा। सुबह पेड़ पौधे पक्षियों के साथ होते हैं, दिन में प्यारे प्यारे बच्चे, और शाम को सैर सपाटा। दोनों जोर से हंसने लगे। बहुत खुश मिजाज है अंकल आंटी, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा खुश थी सुगंधा। उसकी सारी समस्याओं का समाधान जो हो गया था, नव्या का एडमिशन हो गया था, सुनील भी अक्सर वीकेंड पर आ जाते हैं, ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। पर सुगंधा को फिक्र होती थी माँ जी की, जो बाबूजी के देहांत के बाद अकेली सी पड़ गई थी। सुगंधा जब अलीगढ़ में थी तब तो 2-4 महीने के लिए उसके पास आ भी जाती थी, लेकिन फिर जल्दी ही गांव जाने की जिद करने लगती थी। लेकिन सुगंधा और सुनील अब उनको गांव में अकेले नहीं रहने देना चाहते, डरते हैं ना कहीं कोई परेशानी ना हो, बीमार ना हो जाएं। और यही हाल सुगंधा के पापा का भी है। सुगंधा उनकी इकलौती संतान है, माँ तो बहुत पहले ही चली गई थी, फिर भी ससुराल और मायका दोनों अलीगढ़ में ही हैं तो अक्सर पापा घर आ जाते थे। त्यौहार पर या छुट्टी वाले दिन वो पूरी कोशिश करती कि पापा उनके साथ रहें, माँ जी को भी बुला लेती थी। लेकिन अब दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से सब दूर दूर और अकेले से हो गए थे। मिसेज अवस्थी, आपकी कोल्ड कॉफ़ी गर्म हो रही है भाई ड्राइंग रूम में, आप कहाँ हो? सैंडविच बनाकर रखे हैं फ्रिज में राय साहब, प्लीज़ आप निकाल लें, मैं बस दियावती करके आ रही हूँ। सुगंधा फ़ोन पर माँ जी से बात कर रही थी, आवाज़ सुनकर बाहर बालकनी में आ गई। अंकल के बात करने का ये अंदाज़ उसे पुरसकून कैसे एहसास से तृप्त कर जाता है। सुगंधा को यहाँ रहते हुए 6-7 महीने हो गए थे, अब तो अवस्थी आंटी की फैमिली मेम्बर जैसी हो गई थी। आज 7 सितंबर है, संडे है तो क्रैच भी बंद है, लेकिन आंटी ने सुबह से ही कुक को बुलाकर ढेर सारा खाना बनवाया है।

कहीं जाने की तैयारी कर रही थी शायद। सुगंधा उठकर कुछ पूछती तब तक आंटी ने आवाज़ लगा दी। अरे सुगंधा बेटा, आज फ्री हो क्या? मेरे साथ चलोगी मानसिक विकलांग केंद्र तक? जी आंटी, बस 20 मिनट में आती हूँ। थोड़ी देर बाद केंद्र पहुँच गए। नव्या तो बच्चों के साथ खेलने में मस्त हो गई। डॉक्टर सुधांशु अवस्थी की स्मृति में आंटी ने यहाँ हॉल, शेड, पानी मशीन आदि की व्यवस्था कराई थी और हर साल आज के दिन स्वयं बच्चों को खाना खिलाने आती थी, ये पता चला वहाँ के स्टाफ की बातों से। वापसी में पूरे रास्ते आंटी खामोश थीं, लेकिन उनकी बार बार नम होती आँखें सुगंधा को बेचैन कर रही थीं। वो उनकी हथेली पर अपना हाथ रखकर तसल्ली जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को पहली बार इस कदर आंसुओं से सराबोर देखना, दिल रो पड़ा था उसका भी। घर आकर आंटी सुगंधा को अपने बेडरूम में ही ले आई थी। इससे पहले सुगंधा जब भी आती तो ड्राइंग रूम, हॉल या किचन तक ही आना हो पाता था। बेडरूम में एक बड़े से फ्रेम में आंटी और डॉक्टर सुधांशु अवस्थी का फ़ोटो देखकर चौंक गई वो। डॉक्टर सुधांशु का फ़ोटो अभी भी केंद्र पर देख कर आई थी। ये तुम्हारे अंकल हैं मिस्टर अवस्थी, आज इनका जन्मदिन है, कहकर आंटी फूट फूट कर रोने लगी। सुगंधा ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया और देर तक दिलासा देती रही। तभी मोबाइल के स्क्रीन पर राय साहब का नाम चमका। आंसू पहुंचकर फ़ोन उठाया। जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। फिर उधर से शायद और लोगों ने भी बात की। आंटी सबको बेटा बेटा करके बात कर रही थी। अब सबको तो नहीं जानती थी वो, लेकिन समझ में आ रहा था कि परिवार के सदस्य ही हैं। फिर बेटियों का भी फ़ोन आ गया। खाना खाकर नव्या को लेकर सुगंधा ऊपर चली आई। सुबह बैंक भी जाना था, लेकिन देर रात तक नींद नहीं आई सुगंधा को। बिस्तर पर लेटी देर तक सोचती रही। तो क्या राय साहब आंटी के पति नहीं हैं? उसे तो लगा था अवस्थी अंकल को मजाक में राय साहब कहती हैं। ओ अच्छा अच्छा, आंटी ने दूसरी शादी की होगी राय साहब से। मैं भी ना, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है भला। सुगंधा ने खुद को समझाया और सो गई। मिसेज अवस्थी भी सुगंधा की उलझन को समझ रही थी। कई बार होता है ना, इंसान जाने अनजाने अपने मन में कोई धारणा बना लेता है। यूँ तो हर किसी को सफाई देना या समझाना पसंद नहीं था उनको, अपनी ज़िंदगी को बेहद आत्मसम्मान से जिया है उन्होंने। लेकिन सुगंधा की निगाहों में उठते सवाल, उनके आंसुओं के साथ भीगती उस बच्ची की आँखें, उसका अपनापन देखकर उनका दिल मजबूर हो गया था सुगंधा से सब कुछ साझा करने को। शाम को उसके बैंक से आते ही चाय बनवा कर ऊपर ही ले आई थी आंटी। आंटी ने बात वहीं से शुरू करी। बेटा, मेरे पति मिस्टर अवस्थी की मृत्यु 10 साल पहले ही हो गई थी, तब दोनों बेटियां पढ़ रही थीं। मेरे रिटायरमेंट में भी 4 साल बाकी थे। एक एक करके दोनों बेटियों की पढ़ाई पूरी हुई, फिर शादी करके बड़ी बेटी US में सेटल हो गई और छोटी मुंबई में। रिटायरमेंट के बाद अकेलापन अखड़ने लगा। मेरी और सुधांशु की लव मैरिज थी, एक ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हम दोनों। ये घर हम दोनों ने बड़े प्यार से बनाया था। नहीं जानती थी कि एक दिन अचानक मौत यूँ ने खींच कर मुझसे दूर ले जाएगी। यादों में खोई आंटी भावुक हो उठी थी। बेटियाँ तो बहुत चाहती हैं कि मैं यहाँ से सब बेच बाज कर वहीं उनके साथ रहूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता ना उस भीड़ भरे शहर में, और ना विदेश की आबो हवा में वो अपनापन। हाँ, घूमने जाती हूँ 1-2 महीने के लिए दोनों के पास, कभी कभी बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं। और वैसे भी जब तक शरीर संभल रहा है तब तक तो खुद को संभाल ही सकते हैं, बाद में देखा जाएगा। जब किसी दूसरे का दुख देख लो ना तो अपना दुख छोटा लगता है। राय साहब का बेटा नितिन मेरी बड़ी बेटी का बैचमेट है, 2 साल पहले वहीं US में मुलाकात हुई हमारी। 3 साल का था नितिन जब राय साहब की पत्नी नहीं रही, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, अकेले ही परवरिश की नितिन की।

0: बहुत ख्याल रखते हैं बहू बेटा इनका, लेकिन लाख मार मनोबल के बावजूद भी ये वहाँ रहने को तैयार ही नहीं हुए। अब जीवन की सांझ में अकेलेपन का डर तो सताना ही लगता है ना, तो अपने दो तीन जानने वालों के साथ ओल्ड एज होम रहने चले गए। बच्चों को पता लगा तो दौड़े आए बेचारे। जानती हो सुगंधा, फूट फूट कर रोया था नितिन मेरे सामने। वो और उसकी पत्नी तो जॉब छोड़कर इंडिया वापस आने को तैयार हो गए थे। वैसे भी 3-4 साल बाद तो वापस यहीं सेटल होंगे अपने देश में। फिर मेरी बेटियों ने मुझसे बात की और इस तरह अब हम लोग एक घर में साथ साथ रह रहे हैं। इतना बड़ा घर भी खाली पड़ा था। मैं तो जल्दी किसी को किराए पर भी नहीं रखती थी, बंधन हो जाता है ना। लेकिन जब अभिनय से तुम्हारे बारे में पता चला तो लगा चलो अच्छा है, बच्ची के साथ तुम भी सुरक्षित रहोगी और हमारा भी मन लगा रहेगा। सुगंधा बड़े ध्यान से सुन रही थी। और अब राय साहब के आ जाने से एक रसोई में दो लोगों का खाना बनवाते हैं तो स्वाद भी बदलता रहता है और अकेले खाना खाने की सजा भी नहीं झेलनी पड़ती। हंसती थी अपनी ही बात पर। सॉरी आंटी, मुझे लगा आपने राय साहब अंकल से शादी। अरे नहीं नहीं बेटा, कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उम्र बीत रही है सुधांशु की यादों के साथ, उनकी खुशबू, उनकी रूह का एहसास जैसे तन मन में इस घर में, इस घर के कोने कोने में समाया हुआ है। और फिर कोई शादी एग्रीमेंट तो है नहीं, दो आत्माओं का मिलन है परिणय। अब हम और राय साहब एक साथ एक घर में रह रहे हैं, पेइंग गेस्ट्स कह सकते हो। सुख दुख हरी बीमारी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। दोनों परिवारों का तीज त्योहारों पर आना जाना लगा रहता है। बच्चे भी संतुष्ट हैं कि हमारे माँ बाप अकेले नहीं हैं, सुरक्षित हैं। अरे इतना कम है क्या? अब जीवन के बचे हुए दिन खुशी से बिताने हैं, किसी पर बोझ नहीं बनना, किसी बंधन में नहीं रहना चाहते बेटा। मंत्रमुग्ध सी सुन रही थी सुगंधा, जीवन से भरी नई सोच नई राहें। मिसेज अवस्थी की सोच ने, उनकी दिखाई राह ने सुगंधा के घर में एक खूबसूरत सुनहरा फ्रेम सजा दिया था, जिसमें सुगंधा अपने पति, अपनी बेटी, माँ जी और पापा के साथ खुशियों के झूले में बेफिक्र झूल रही है। एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अपनों के साथ जुड़े रहना।
1: सुनहरी सांझ, आपने सुनी अभी निशा यादव की ये कहानी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं नीरज शुक्ला। सुनते हैं इनके स्वर में भजन। पहले आपको सुनवा रहे हैं मीराबाई की रचना।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं नीरज शुक्ला के स्वर में भजन। अब आपको सुनवाते हैं रसखान की रचना, गायक कलाकार नीरज शुक्ला।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत और इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार थे नीरज शुक्ला। रस खान की इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब आपको सुनवाते हैं गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर रूपक स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत महात्मा गांधी। इसके लेखक हैं नर्मदेश्वर उपाध्याय।

0: पश्चिमी भारत के काठियावाड़ क्षेत्र में पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसे तेजस्वी पुरुष का उदय हुआ जिसके प्रभाव मंडल से न केवल आसेतु हिमाचल भारतवर्ष अपितु समस्त संसार उद्भासित और आलोकित हो उठा।
1: पोरबंदर के एक परम वैष्णव संपन्न गुजराती परिवार में जन्मे उस बालक का नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। वही साधारण बालक आगे चलकर शुभ संस्कार, सदाचार और सद्विचारों को धारण कर कर्मवीर गांधी, महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता बापू के रूप में लोक विख्यात हुआ।

0: मोहनदास करमचंद गांधी बारेट लॉ होकर जब विलायत से स्वदेश लौटे तो उन्हें सन 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां जाकर उन्होंने देखा कि प्रवासी भारतीय वहां के गोरे शासकों के अत्याचार और रंग भेद नीति से बुरी तरह त्रस्त हैं, मूल नागरिक अधिकारों से सर्वथा वंचित हैं और उनकी दशा गुलामों जैसी है।
1: गांधी जी ने उनके उद्धार का संकल्प लिया और जो हर बात में हर प्रकार से दुर्बल थे ऐसे लोगों को साथ में लेकर उन्होंने अन्याय के विरुद्ध सत्य तथा अहिंसा के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया।
2: वहां की क्रूर गुरी सरकार से लगातार 9 बरस तक लड़कर गांधी जी ने विजय हासिल की और जिनके साथ लड़े उनके साथ दोस्ती भी कायम की।
1: लगभग 22 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के बाद गांधी जी को सन 1915 में स्वदेश लौटने का संयोग प्राप्त हुआ। यहां आकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई शुरू की। दक्षिण अफ्रीका की तरह यहां भी निहत्थे असंगठित अशिक्षित और असहाय लोगों को जगाकर उन्होंने संसार के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य का मुकाबला किया।
0: स्वदेश लौटने पर सबसे पहले वे श्री गोपाल कृष्ण गोखले से मिले जिनके आग्रह पर इतने लंबे प्रवास के बाद वे वापस आए थे और जिन्हें वे अपना मार्गदर्शक गुरु मानते थे। श्री गोखले ने उन्हें यही सलाह दी कि वे कम से कम साल भर तक विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश की दशा देखें और किसी तरह के राजनैतिक काम में हिस्सा न लें।
1: कर्मवीर गांधी ने गोखले के परामर्श का अक्षरशः पालन किया। आचार्य काका साहब कालेलकर के अनुसार
3: उन्होंने देश का दौरा किया, आसेतु हिमाचल घूमे और देखते देखते गांधी जी के हृदय का तार राष्ट्र हृदय के तार के साथ एक राग हो गया। चिराग से चिराग जलता है, यही न्याय उस जमाने में चरितार्थ हुआ।
1: देशवासियों के हृदय में उनके प्रति जिस आदर भाव का उदय हुआ वो अद्भुत था।
3: स्वतंत्रता के लिए जिस तेजस्विता की जरूरत होती है वह अपने दृष्टांत से पैदा करने की उन्होंने कोशिश की। दक्षिण अफ्रीका के अपने सब तरह के अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने काम की दिशा निर्धारित की। उन्होंने एक अच्छा तरीका हमें बताया कि मौत का डर छोड़ो, स्वतंत्रता का अनुभव करो।
1: गांधी जी के अनन्य अनुयायी आचार्य काका कालेलकर और कर्मवीर पंडित सुंदरलाल उनके संपर्क में आने के पहले क्रांतिकारी हिंसक उपायों से आज़ादी हासिल करने के हिमायती थे और क्रांतिकारियों के साथ गुप्त रूप से जोखिम भरे काम कर चुके थे।
4: 1915 के शुरू में भारत आने के बाद गांधी जी जब कुछ दिनों के लिए शांति निकेतन गए तो वहां गुरुदेव रवीन्द्रनाथ के सानिध्य में काका कालेलकर पहले से ही निवास कर रहे थे। वहीं उनकी गांधी जी से पहली भेंट हुई।
3: जब हमने बापू के दर्शन किए, जब भी मौका मिला दिन रात उनसे बहस चलाई, तब जाकर हमने देखा कि ये भगवान का ऐसा आदमी है जो शांति और क्रांति दोनों का पैगाम दुनिया को एक साथ दे सकता है।
1: गांधी जी की धारणा थी कि सत्याग्रही में ज्ञान और तपस्या होनी चाहिए, बलिदान की बहादुरी होनी चाहिए और धन कमाने तथा व्यय करने की कला में उसे निपुण होना चाहिए। वे तो ये भी कहते थे,
5: मैं मोक्ष पाने के लिए ही राजनैतिक काम करता हूँ। आज के ज़माने में अधर्म राजनैतिक क्षेत्र में घुस गया है, उसे वहाँ से हटाकर मुझे वहाँ धर्म को प्रस्थापित करना है। यह ईश्वर का दिया हुआ काम है।
0: इसी तरह सारे काम वे ईश्वर का ही काम समझकर करते थे। देशभक्त कर्मवीर पंडित सुंदरलाल जब पहली बार गांधी जी से अहमदाबाद में उनके कोचरब आश्रम में मिले तो उन्होंने भी कुछ वैसा ही अनुभव किया।

0: जैसा कि काका साहब को हुआ था।
1: मुझे अब तक याद है, वो एक छोटे से कमरे के अंदर, जिसका फर्श बीच बीच में उखड़ा हुआ टाट का एक छोटा सा टुकड़ा बिछाए उस पर बैठे हुए थे। एक छोटी सी घुटनों तक की धोती बांधे हुए थे, बाकी बदन नंगा था। मैं कमरे में घुसा, मालूम करके कि यही श्री गांधी हैं, कुछ अचंभा सा लगा। उन्होंने टाट का एक टुकड़ा मेरी तरफ करके मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया, बातें शुरू हुईं। मैंने अपना और उस समय की देश की आज़ादी की कोशिशों का हाल, जो मैं जानता था, सब उन्हें तफसील से कह सुनाया। मालूम होता था मेरी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न भी पूछते जाते थे। बातचीत में कई घंटे लगे। जब मैंने उनसे उनकी राय पूछी और आगे के लिए सलाह लेनी चाही, तो लगभग हर बात पर वो कुछ ऐसा जवाब देते थे।
2: मैं तो राजनीति नहीं समझता, मैं तो धर्म जानता हूँ। सबको अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए, किसी को मारना पाप है।
3: नवंबर सन 1939, चीन के महान नेता डॉक्टर सुन यात्सेन के अनन्य सहयोगी श्री ताई ची ताओ बापू से मिलने सेवाग्राम पधारे। बातचीत के दौरान गांधी जी ने चीन के उस स्वतंत्रता सेनानी को अपने स्वाधीनता आंदोलन के बारे में बताया, जो उनके नेतृत्व में अहिंसात्मक सत्याग्रह के सहारे चल रहा था।
2: मैं जो उपाय काम में ला रहा हूँ, राजनैतिक क्षेत्र में उसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। मुझे यह अस्त्र सन 1906 में दक्षिण अफ्रीका में मिला। वहाँ के भारतीयों को बचाने के जब सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, तब मुझे यह उपाय सूझा। सन 1920 से यही उपाय कमोबेश कामयाबी के साथ हम इस्तेमाल करते रहे हैं।
4: गांधी जी ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए चीन के उस धर्मनिष्ठ नेता से कहा था,
2: यदि हम भारतीय जनता को बगैर हाथ उठाए बहादुरी से मरना सिखा सकने में कामयाब हुए, तो न सिर्फ हमें अपनी खोई हुई आज़ादी वापस मिल जाएगी, वरन दुनिया से हिंसात्मक युद्ध मिट जाएंगे और दुनिया को उसकी जगह एक नया अहिंसात्मक उपाय मिल जाएगा, जो हमारे आंदोलन का सूत्र है।
3: गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत की व्याख्या काका कालेलकर ने कुछ इस प्रकार की थी।
5: सौम्यता और सज्जनता की पराकाष्ठा करके विरोधी को थकाना, हराना और उस पर सच्ची विजय पाना, यही तो उनके सत्याग्रह शास्त्र की खूबी थी। शुरू शुरू में जब गांधी जी सत्याग्रह में हार जाते, तब तो उनकी शक्ति दुगनी बढ़ जाती थी। जब कड़े सत्याग्रह के बाद गांधी जी की विजय होती थी, तब वे विनम्रतापूर्वक यही कहते थे कि सत्याग्रह के अंत में विजय तो दोनों पक्षों की होती है।
3: आज़ादी की लड़ाई के दिनों में भारतवासियों ने एक बात अच्छी तरह सीख ली थी कि कोई अगर धमकी दे, भारी हानि उठानी पड़े, तो भी किसी भी हालत में दबना नहीं। निर्भय का अर्थात भय वर्जनम का ये भाव भी लोगों में गांधी जी की प्रेरणा से ही पैदा हुआ।
6: वे ये भी मानते थे कि असहयोग सफलता के साथ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके रोम रोम में सहयोग का भाव भरा हुआ हो। गांधी जी में एक और खूबी थी, सब धर्मों का रहस्य वे अच्छी तरह समझ सकते थे। उन्होंने लोगों में सर्वधर्म समभाव के लिए जीवन भर प्रयास किया। राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने जितना उनसे हो सका सब दलों के बीच आपसी सद्भाव स्थापित किया।
3: एक बार विलायत में अनेक हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के साथ सशस्त्र क्रांति की काफी चर्चा करने के बाद वहां से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय जहाज के सफर में गांधी जी ने एक काल्पनिक संवाद लिखा। मूल पुस्तक गुजराती में लिखी। लिखते लिखते जब दाहिना हाथ थक जाता, तब बाएं हाथ से लिखते थे।
4: हिंद स्वराज नामक उस पुस्तक को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया।

0: तब गांधी जी ने जल्दी ही उसका अंग्रेजी अनुवाद कर उसे भी प्रकाशित कर दिया। वो भी हाथों हाथ खूब बिकी। उस किताब के बारे में गांधी जी ने कहा था,
1: दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव का निचोड़ उस किताब में है। भारत के लिए स्वराज हासिल करने का पूरा तरीका उसमें आ जाता है। उस छोटी सी किताब में मेरे सारे जीवन सिद्धांत निहित हैं।
0: हिंदुस्तान आने पर उन्होंने अंग्रेजी में यंग इंडिया और गुजराती में नवजीवन नामक दो साप्ताहिक निकाले। बाद में हरिजन और हरिजन सेवक नामक साप्ताहिक पत्र उन्हीं की देखरेख में प्रकाशित होते रहे। तब से आखिर तक 33 बरस उनकी लेखनी की धारा चलती रही। बापू कहते थे,
1: मनुष्य का सारा जीवन हमेशा विचारमय होना चाहिए। बिना सोचे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहिए, न एक कदम ही उठाना चाहिए।
2: स्वराज आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी को देश के विभिन्न प्रांतों और सुदूर अंचलों की अनेक परिक्रमाएं करनी पड़ी, और तब उन्होंने सुबह शाम की अपनी प्रार्थना सभा में करोड़ों देशवासियों को राम नाम की दीक्षा दी। वे कहते थे कि देश में फैली द्वेष बुद्धि और असहिष्णुता का इलाज करने में उन्होंने राम नाम से ही बल पाया।
3: गांधी जी जहां भी जाते या रहते, अथवा सरकार जहां उन्हें रखती, वहां वे पास पड़ोस के लोगों के साथ, वहां के सारे समाज के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते थे और बिना किसी लाभ हानि के विचार के समाज सेवा में जुट जाते थे।
2: गांधी जी के हृदय लोक में भगवत भक्ति और देशभक्ति की पवित्र धाराएं समान गति से निरंतर प्रवाहित होती रहती थीं। एक पुण्य तीर्थ के समान वे इस धरती पर अवतरित हुए थे।
0: गांधी जी के भारत आगमन के पहले भारतीय राजनीति में एक दल ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए देश और समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने का उपाय कर रहा था,
2: और दूसरे विचार के लोग स्वदेश और स्वराज की प्यास लोगों में जगाकर हिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन हो चुका था। उसके बाद लोकमान्य तिलक के कारावास और तेजस्वी क्रांतिकारी श्री अरविंद के पांडिचेरी चले जाने के बाद उस दल के लोग लुक छिप कर अपने दिन काटते रहे।
3: पहला विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले भारतीय क्षितिज पर एक नई राजनीतिक चेतना उदय हो रही थी। उसे दबाने के लिए बड़े लाट की काउंसिल में रॉलेट एक्ट के नाम से दो काले कानून पास किए गए। फिर क्या था, सारा देश गुस्से और बेचैनी से भर गया।
2: गांधी जी उस समय अहमदाबाद में गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, लेकिन अपना सारा कष्ट भूलकर उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशवासियों को सत्याग्रह और सभाएं कर सरकारी कानून तोड़ते हुए जेल जाने की सलाह दी। उस कठिन समय की याद करते हुए कर्मवीर पंडित सुंदरलाल जी लिखते हैं,
4: गांधी जी यह भी चाहते थे कि सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने के पहले लोग उपवास और प्रार्थना से अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें। 6 अप्रैल सन 1919 की तारीख हड़ताल के लिए तय की गई। ये ऐतिहासिक घटना है कि उस दिन हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक दूर से दूर किसी गांव में किसी किसान ने हल को हाथ नहीं लगाया। करोड़ों लोगों ने उपवास किए, जगह जगह आम सभाएं हुई।
3: उसके बाद गांधी जी देश के सबसे बड़े और अनन्य नेता के रूप में उभर कर सामने आ गए। पंडित सुंदरलाल, जो कभी स्वयं क्रांतिकारी रह चुके थे, उन दिनों को याद करते हुए लिखते हैं,
4: अपने नए तरीके से गांधी जी ने जो जान, जो जोश और जो त्याग की भावना देश भर में पैदा कर दी थी, वो हम अपने पुराने तरीकों से नहीं कर पाए थे और न कर सकते थे। मेरा उनसे बार बार मिलना, साथ रहना और साथ सफ़र करना तेजी के साथ बढ़ता चला गया। गांधी जी के निकट संपर्क में आकर हिंसा के प्रति मेरी निष्ठा अहिंसा में बदल गई।
2: सन 1919 में बैसाखी के पर्व पर अमृतसर के जालियांवाला बाग में ब्रिटिश शासन की ओर से जो बर्बर नरसंहार हुआ, उसके बाद

0: पंजाब के कई शहरों में मार्शल लॉ लगाकर हिंदू मुसलमान और सिखों पर अमानुषिक अत्याचार किए गए, जघन्य यातनाएं दी गईं और सैकड़ों लोगों को आजन्म कारावास की सजाएं दी गईं।
1: सितंबर सन 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के अहिंसात्मक असहयोग का प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया। उस प्रस्ताव में 5 तरह के बहिष्कारों की बात शामिल की गई, काउंसिल और असेंबली का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार,
0: सरकारी उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और विदेशी माल का बहिष्कार।
1: कर्मवीर गांधी ने सन 21 के असहयोग आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति के मंच पर जिस अहिंसात्मक सत्याग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की, उसका सूत्रपात वे सन 1917 में बिहार के चंपारण सत्याग्रह और सन 18 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह के नेतृत्व के साथ सफलतापूर्वक कर चुके थे।
0: सन 21 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में गांधी जी को 6 साल की सजा देकर यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। सन 22 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में उत्तेजित भीड़ ने वहां के थाने में आग लगा दी और कुछ सिपाहियों की हत्या कर दी।
1: चौरी चौरा के उस दुखद कांड से मर्माहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। उन्हें लगा कि देशवासी अभी अहिंसात्मक सत्याग्रह के योग्य नहीं बन पाए हैं।
0: उधर ब्रिटिश हुकूमत डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत के अनुसार हिंदू मुसलमानों के बीच विद्वेष और वैमनस्य पैदा करती रही। सन 24 में देश के कई नगर सांप्रदायिक उपद्रव के चपेट में आ गए।
1: गांधी जी को उससे बेहद सदमा पहुंचा। उन्होंने 21 दिनों का अनशन आरंभ कर दिया। बीमारी के बाद उनका वो पहला लंबा उपवास था जिससे सारा देश उद्विग्न हो उठा।
0: दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। वहीं आधी रात को रावी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई और सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया।
1: मार्च सन 1930 में बापू ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा के साथ देशव्यापी नमक सत्याग्रह का शुभारंभ किया। उन्हें 6 महीने की कठोर कारावास की सजा मिली। सारे देश में आजादी के लिए एक नई उमंग, नए उत्साह की लहर दौड़ गई। नमक सत्याग्रह के साथ जगह जगह विदेशी कपड़ों और नशीले पदार्थों की दुकानों पर पिकेटिंग के कार्यक्रम चलते रहे। सैकड़ों सत्याग्रही लाठी गोली खाकर घायल हुए, शहीद हुए और हजारों लोगों को जेल की सजा हुई।
0: अंत में ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा। गांधी जी जेल से रिहा किए गए। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना गया।
1: मार्च सन 31 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन होना था। उसके पहले सॉन्डर्स हत्याकांड को लेकर लाहौर में जो षड्यंत्र केस चल रहा था, उसके अभियुक्तों में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा और बाकी लोगों को 5 साल से लेकर आजन्म कारावास का दंड मिला। पंडित सुंदरलाल के अनुसार,
2: गांधी जी ने बहुत चाहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के प्राणदंड की सजा को आजन्म कारावास में बदल दिया जाए, लेकिन वायसराय इसके लिए तैयार नहीं हुए। अंततः 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर के किले में फांसी दे दी गई और फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे उनके शवों को अत्यंत गोपनीय तरीके से अग्नि के सुपुर्द किया गया।
0: भारत माता के उन वीर सपूतों के बलिदान से शोकमग्न देशवासियों ने 25 मार्च को शांतिपूर्वक हड़ताल की। गोरे शासकों ने कानपुर में उस हड़ताल को हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल दिया। उसी दंगे में निर्भीक स्वाधीनता सेनानी श्री गणेश शंकर विद्यार्थी संकट में पड़े लोगों की प्राण रक्षा करते हुए खुद शहीद हो गए।
1: सितंबर 1939 में

0: दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो ब्रिटिश शासन ने अपनी मर्जी से भारत को युद्ध में भागीदार बना लिया। गांधी जी ने 1947 में विदेशी सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने पहला सत्याग्रही विनोबा जी को चुना, उसके बाद नेहरू जी गिरफ्तार हुए। कुछ गिने चुने लोगों को ही सत्याग्रह करने की सलाह दी गई थी, फिर भी 1,00,000 लोगों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया।
1: दूसरे महायुद्ध की लपटों की आंच देश की सरहदों पर आने लगी थी। कलकत्ता और पूर्वी समुद्र तट पर जापान ने बमबारी की। उधर विलायत से क्रिप्स मिशन आकर असफल हो चुका था। पंडित सुंदरलाल जी के अनुसार
2: गांधी जी बेचैनी के साथ किसी रास्ते की तलाश कर रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों से अपील की कि वे भारत छोड़कर चले जाएं और हमारे देश को अपनी किस्मत पर छोड़ दें। देशवासी सीधी कार्रवाई के लिए बेचैन हो रहे थे। गांधी जी का हाथ देश की नब्ज पर था।
0: 7-8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की असाधारण बैठक हुई। उसमें गांधी जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया जो भारत छोड़ो के नाम से जाना गया। उस अवसर पर महात्मा जी ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि सत्याग्रह का यह आंदोलन शॉर्ट और स्विफ्ट होगा, यानी इसकी अवधि क्षणिक होगी और अपनी गति में यह अत्यंत द्रुतगामी होगा। उस वक्त गांधी जी ने कहा था,
3: इस आंदोलन के शुरू होते ही सभी नेता गिरफ्तार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति स्वयं अपना नेता होगा और उसे स्वयं अपना मार्ग निर्धारित करना होगा। मैं आप लोगों को एक छोटा सा मंत्र देता हूँ, इसे आप अपने मन पर लिख लें और आपकी हर सांस से इसकी अभिव्यक्ति निकलनी चाहिए। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने प्रयास में हम या तो आज़ाद हो जाएंगे या मर जाएंगे। इस क्षण के बाद हर पुरुष या स्त्री अपने आप को आज़ाद समझे और यहाँ तक कि काम भी करे जैसे कि आप आज़ाद हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी में अब नहीं हैं।
1: स्वाधीनता के उस अंतिम संग्राम के आरंभ होने से पहले ही गांधी जी के साथ देश भर के सभी प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को बंदी बना लिया गया।
4: देखते ही देखते विद्यार्थियों, मजदूरों और किसानों ने अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन की बागडोर खुद संभाल ली। जो लोग फरार हो गए वे भी गुप्त रूप से अपना योगदान करते रहे।
1: 1942 के उस आंदोलन को दबाने के लिए क्रूर शासन ने बड़ी बर्बरता से काम लिया। अगस्त सितंबर में ही लगभग 1,500 सत्याग्रही गोली से उड़ा दिए गए। पुलिस और सेना का दमन चक्र उत्तर भारत के अनेक जिलों में महीनों तक चलता रहा। कितनों के घर जला दिए गए, कितने गांव तबाह कर दिए गए और जाने कितने बच्चे, बूढ़े और नौजवानों ने स्वाधीनता के उस महायज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे डाली।

0: अंततः 15 अगस्त 1947 को वो शुभ घड़ी आई जब भारत माता पराधीनता के बंधन से मुक्त हुई, हमें स्वराज का जन्मसिद्ध अधिकार मिला। किंतु राष्ट्रपिता बापू ने करोड़ों भारतवासियों के लिए स्वराज का जो सपना देखा था और जिसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, वो सपना आधी सदी बीतने के बाद भी पूरी तरह साकार नहीं हो सका।
1: जो भी हो, संसार की आने वाली पीढ़ियां जब भी महात्मा गांधी का स्मरण करेंगी, तब उनके मन प्राणों को बापू का ये अमोघ मंत्र एक मणिदीप के समान अखंड आलोक प्रदान करेगा और सहज ही अनुप्राणित करेगा।
2: तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने

0: दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी कि क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और जिनकी आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है।
1: दरिद्र नारायण की उपासना के इसी अमोघ मंत्र में बापू के सर्वोदय से अंत्योदय तक की समस्त मंगल कामनाएं समाहित हो चुकी थीं।

गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अभी आपने सुना रूपक स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत महात्मा गांधी। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे विजय बोस, सुनील कुमार श्रीवास्तव, सतीश चंद्र माथुर, नर्मदेश्वर उपाध्याय, रूपम नारायण पांडे और अभिनय श्रीवास्तव। आलेख और प्रस्तुति नर्मदेश्वर उपाध्याय की थी।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

अनूप जलोटा के स्वर में आपने सुनी ये भक्ति रचना। सबरस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। आमिर मिनाई का कलाम अभी आप सुन रहे थे। फनकार थे जगजीत सिंह। आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनाते हैं कैलाश खेर के स्वर में ये गीत।

0: कैलाश खेर के गाए इस गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव

0: उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए। यह तभी संभव है।
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
4: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
0: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय

0: पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
1: वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ द ब्रेवरी एंड द करेज।
2: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
1: वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड वी आर रियली रियली एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ।
0: गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
5: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
6: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहां लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यहां उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
5: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
7: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा

0: हुआ है।
1: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और CBC आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमरीका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. Stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast-tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities, including Pakistani businessmen, over Iran military procurement. And in Asian Games in Japan, India bags 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. Indian men's hockey and cricket teams enter final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said, the country is moving rapidly on the reform express, and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office, but to public service.
4: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
3: The Prime Minister said

0: कोसी हैव ऑल्सो इनंडेटेड सेवरल विलेजेस इन दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल एंड सहरसा डिस्ट्रिक्ट्स। आशीष रंजन फॉर आकाशवाणी न्यूज पटना।
1: India Meteorological Department or IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh tomorrow. IMD said conditions are likely to become favorable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, entire Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 48 hours. The Met Department predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over southern states, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast tomorrow. On to sports. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today, with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Sivaj today bagged silver medal in men's 97 kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Indian pair of Manu Francis and Princess Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. It is India's first sailing medal of the Asian Games. The team of Harshita Tomar and Sheetal Verma won the bronze medal in the women's skiff sailing event. Ganesh Mani Ratnam Tirumuru got bronze in the individual compound archery. India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance, stresses to bring youth in government jobs oriented to serve people. Home Minister Amit Shah chairs meeting with chief ministers of Chhattisgarh and Odisha to resolve long-standing Mahanadi water dispute. Government extends validity of exempted fast tag for Divyangjan from 1 to 5 years. Floods continue to affect Bihar with several rivers flowing above danger level. US sanctions 10 individuals and entities including Pakistani businessman over Iran military procurement. And in Asian Games, India bagged 6 medals today, including historic silver medals in sailing and Greco-Roman wrestling. That is all in the news at 9. Good night.
2: आधा ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। अमरीका ने ईरानी फौज के लिए खरीदारी की पादाश में पाकिस्तानी कारोबारियों समेत 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयत कर दी है। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कश्ती रानी और ग्रीको रोमन कुश्ती मुकाबलों में चांदी के तारीखी तमगों समेत आज 6 तमगे जीते हैं। मर्दों की ये हॉकी और क्रिकेट टीमें भी फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेशकदमी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाले इदारों को भी मुल्क की जरूरी असलाहत पर काम करना चाहिए। आज नई दिल्ली में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की सदसाला तकरीबात से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया जो सरकारी ओहदों की नहीं बल्कि अवाम की खिदमत की ख्वाहिश रखते हैं।
3: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।

0: वज़ीर आज़म ने कहा कि इम्तिहान को सिर्फ एक अमल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह नौजवानों के मुस्तकबिल से वाबस्ता होता है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि महज कुछ महीनों की ताखीर नौजवानों के लिए मुश्किलात की वजह बन सकती है और इसीलिए इम्तिहान निज़ाम को मुकर्रर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने देरीना महानदी आबी तनाज़े को हल करने के लिए आज नई दिल्ली में एक मीटिंग की सदारत की। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़रा आला और दीगर सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। गांधी जयंती के मौके पर कल मुल्क भर में खुसूसी ग्राम सभाओं का इनेकाद किया जाएगा जहां कलीदी देही हुक्मरानी असलाहत पर बातचीत की जाएगी। बातचीत के दौरान पंचायतों को तकवीत देने, अवामी खिदमात को बेहतर बनाने और देही भारत में मजमूई मयार जिंदगी को बुलंद करने पर मरकूज बदलाव लाने वाली हुक्मरानी को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी। देही तरक्यात की वजारत ने बताया कि इन खसूसी ग्राम सभाओं के जरिए अवाम की मनसूबाबंदी मुहिम 2026-27 सबकी योजना सबका विकास का भी आगाज होगा। इसके तहत ग्राम पंचायतें शमूलियाती और शवाहिद पर मबनी मनसूबाबंदी के जरिए माली साल 2027-28 के तरक्याती मनसूबे तैयार करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का अमन और अदम तशद्दुद का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे तनाजे और जंग की सूरत हाल के तनाजुर में मजीद अहमियत का हामिल हो गया है। गांधी जयंती के मौके पर अपने पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने बाबाए कौम महात्मा गांधी को उनके 157वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के हयात और नजरियात का आलमी बिरादरी में बहुत एहतराम किया जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत 2047 तक विकसित भारत बनने की जानेब पेशरफ्त कर रहा है जिसमें हमदर्दी और शमूलियत को तरजीह दी जा रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी शहरी तरक्की के फवाइद से महरूम ना रह जाए। सदर जमहूरिया ने कहा कि यह नजरिया महात्मा गांधी के सर्वोदय के जज्बे की अक्कासी करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बड़े हादसे को टालने और बेशकीमती जिंदगियों को बचाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ की है। इसराइली वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़े हादसे को टालने पर कप्तान स्मिथ मच्छार को हीरो करार दिया। जनाब नेतन्याहू ने तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई परवास पर सवार 174 लोगों की जिंदगियां बचाने पर कप्तान स्मिथ मच्छार का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कप्तान स्मिथ को हीरो करार दिया है और कहा है कि भारत को उन पर फख्र है।
1: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: वजीर आजम जनाब मोदी ने कप्तान स्मिथ के वालदेन और उनकी अहलिया से भी बात की। कॉकपिट हमले में 174 मुसाफिरों की जान बचाने के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जख्मी हुए फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी और लंबी जिंदगी के लिए गुजरात के सभी अहम मजहबी मकामात पर खुसूसी दुआ की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के रहने वाले बहादुर कप्तान स्मिथ मच्छार की जल्द सेहतयाबी के लिए सोमनाथ और अंबाजी के पवित्र मंदिरों में वैदिक मंदिरों के साथ खसूसी पूजा जारी है। कप्तान के लिए मुल्क की दुआओं में शामिल होते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कप्तान मच्छार की गैर मामूली शुजात की तारीफ की और उनकी दिलेराना कोशिशों के एतराफ़ में उनके लिए बावकार विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड का ऐलान किया। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुबई तेल अभी परवास जारी रखने और जिंदगियां बचाने पर फ्लाई दुबई के कप्तान स्मिथ मच्छार की तारीफ करते हुए उन्हें सच्चा हीरो करार दिया है। एक्स पर अपनी पोस्ट में जनाब फडणवीस ने कहा कि मच्छार ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का सबूत देते हुए मुश्किल सूरत हाल को संभाला। जनाब फडणवीस ने उनकी जल्द सेहतयाबी और बेहतर सेहत की ख्वाहिश का इजहार किया। फ्लाई दुबई की परवाज FZ1073 के कॉकपिट में मच्छार पर उनके को पायलट ने चाकू से हमला कर दिया था जिसके बाद वो शदीद जख्मी हो गए थे। ये परवाज कल दुबई से तेल अवीव जा रही थी। इसराइली वजीर आजम के तर्जुमान डेविड मेंसर ने कहा है कि फ्लाई दुबई तैयारे के अगवा की कोशिश अमरीका में हुए 9/11 हमलों से मुमासिल दिखाई देती है। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहादुर भारतीय

0: टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी आयद किए गए अफराद में एक पाकिस्तानी कारोबारी समेत उससे मुंसलिक 3 कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा मस्कूरा कारोबारी पाकिस्तान में कायम केविलियर ग्रुप का चेयरमैन है। ये एक प्राइवेट दिफाई कंपनी है जो पाकिस्तान और दीगर ममालिक में सरगर्म अमल है। इसके साथ ही अमरीकी हुकाम ने इल्जाम लगाया है कि यह कारोबारी कंपनी ईरान की वजारत दिफा के लिए बिचौलियों के तौर पर काम कर रहे थे और हथियारों के खरीद और तकसीम में मदद कर रहे थे। इसके अलावा सऊदी अरब में कायम केविलियर डायनेमिक्स फॉर टेक्नोलॉजीज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई सऊदी हुकाम के तावुन से अंजाम दी गई। अमरीकी वजीर खजाना बेसेंट ने कहा कि अमरीका इक्तसादी बायकॉट की कार्रवाई के तहत ईरान को मदद फराहम करने वाले अफराद और कंपनियों को निशाना बनाना जारी रखेगा। यह मुहिम ईरानी हुकूमत के इक्तसादी नेटवर्क को कमजोर करने के लिए अगस्त में शुरू की गई थी। और जापान में जारी एशियन गेम्स 2026 में आज भारत ने 2 चांदी और 3 कांसे के तमगों समेत 5 तमगे हासिल किए। ग्रीको रोमन पहलवान नितेश सिवाच ने मर्दों के 97 किलोग्राम के जुमरे के फाइनल में जापान के पहलवान यूरी निकाजातो से 0-4 से हारने के बाद चांदी का तमगा हासिल किया। इससे पहले सुबह में भारत के कश्तीराम मनु फ्रांसिस और प्रिंस नोबेल ने मर्दों के कश्तीराम मुकाबले में पहला चांदी का तमगा जीता। तीरंदाजी के मर्दों के कंपाउंड इन्फरादी मुकाबले में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु ने कांसे का तमगा जीता, जबकि स्क्वाश में भारतीय मर्दों और खवातीन की टीमों ने कांसे का तमगा हासिल किया। मर्दों की हॉकी में भारत अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 4-3 से हराकर फाइनल में पहुंच गया है और दूसरी तरफ खातीन की हॉकी टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। तमगों की फहरिस्त में भारत 10 सोने, 23 चांदी और 32 कांसे के तमगों समेत कुल 65 तमगे अपने नाम कर चुका है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत अवाम नवाज और बेहतर हुक्मरानी के नजरियों के साथ सरगर्मी से पेश कदमी कर रहा है। वजीर आजम ने अवाम की खिदमत का जज्बा रखने वाले नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों में लाने पर जोर दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने महानदी के पानी की तकसीम से मुतालिक दरीना तनाजे के हल के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वज़राए आला के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने दिव्यांग अफराद के फास्टैग से इस्तिस्ना की मुद्दत को 1 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। और बिहार में कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम कहकशा। श्रोताओं, कभी कभी इंसान अपने दर्द से इतना गहरा रिश्ता बना लेता है कि उसे मिटाने की कोशिश भी अच्छी नहीं लगती। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त के साथ जीना ही बेहतर लगता है और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी ही एक बेहद संवेदनशील और दिल को छू लेने वाली गजल आपको सुनवाते हैं, जिसे अपनी मखमली और भावपूर्ण आवाज से सजाया है चित्रा सिंह ने।

भी एक खूबसूरत गजल, और जब दिल पर लगी चोट पुरानी ना हो तो शायद दर्द की एक और करवट बाकी रहती है। इसी एहसास को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवाते हैं तलत अजीज की आवाज में एक बेहद दिलकश गजल, एक सितम और मेरी जान अभी बाकी है। इस गजल में मोहब्बत, शिकवा और इंतजार बहुत ही खूबसूरती के साथ पिरोए गए हैं। सुनते हैं ये गजल और महसूस करते हैं उस दिल की दास्तान जिसके लिए अभी एक सितम और बाकी है।

कुछ दर्द श्रोताओं ऐसे होते हैं जिन्हें हम दिन की भीड़ में छुपा सकते हैं, लेकिन रात की तन्हाई में वही दर्द आंखों से अश्क बनकर बह निकलते हैं। मोहब्बत में मिली दूरी और जुदाई का यही एहसास इस खूबसूरत गजल में बड़ी सादगी से महसूस होता है, जो अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। चंदन दास की मखमली आवाज में पेश है एक ऐसी गजल जिसमें तन्हाई भी है, इंतजार भी है और दिल की अनकही पीड़ा भी है।

मोहब्बत में कभी कभी सबसे खूबसूरत बात वो होती है जो कहीं नहीं जाती, बस निगाहों में महसूस होती है। सामने रहकर भी किसी का पर्दे में रहना और उस पर्दे के पीछे छिपे एहसासों को समझने की कोशिश, यही तो इश्क की एक खूबसूरत कश्मकश है। अब आपको सुनवाते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में वो गज़ल जिसमें मोहब्बत भी है, इंतज़ार भी है और एक मीठी सी शिकायत भी है।

भूपेंद्र सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही आज का कहकशा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम हमारा होगा बस थोड़ी ही देर बाद।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक। सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
2: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुछ दिन सोवा को 6-1 से

0: हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
1: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरू ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में गजब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अशफरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 से हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
1: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं, और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
3: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता, तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब एक दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच, 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूटआउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी

0: डिफेंडर की स्टिक से टकराकर डिफ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया। भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट, जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को, और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हरा कर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी, जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: I think just keeping it simple, you know, you don't think so much. We played today, we know the conditions are not going to be so easy, especially they are also spinner friendly team. At the same time, you know, you just don't think like what's going to happen after 2 days. You just keep calm, you play your shots, you be in the moment and just enjoy those crunch moments.
0: सिपेक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: India secured a medal in men's quadrant sepak takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across 3 group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant group A match of the sepak takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
0: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों के फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स, जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहाँ भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
0: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान

0: रन को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
1: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
0: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
0: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
2: India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after two rounds, carding 11 under 129 to set two strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी, और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
2: India's campaign in the women's individual Pomse event in Taekwondo ended as Rupa Bayor bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish among the 8 stars who qualified for the final.
0: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
2: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मलिया राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 26 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं, और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे, और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: ये एशियाई खेल अब अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है, और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे हमारे साथ रहिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1

0: से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10:00 हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रेम पर्वत फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं जानिसार अख्तर और संगीतकार हैं जय देव।

अब आपको सुनवाते हैं जहरीला इंसान फिल्म का गाना, जिसे गाया है किशोर कुमार ने। गीत रचना है मजरू की और संगीत है आर डी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित जसराज का राग बागेश्वरी में ख्याल गायन। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे हैं केदार पंडित।

अभी आप सुन रहे थे पंडित जसराज का राग बागेश्वरी में खयाल गायन। तबले पर आपके साथ संगत कर रहे थे श्री केदार पंडित। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
2: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है।
1: The Prime Minister said an examination should not be considered just as an event as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President CP Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Mutcher for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US President Donald Trump have also hailed Smith Mutcher as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Mutcher for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Meanwhile, External Affairs Ministry today said it continues to closely follow the health condition of Captain Smith Mutcher. It said in a statement that after receiving initial medical treatment in a hospital in Tabuk, Saudi Arabia, he has now been shifted to Abu Dhabi for continued medical attention and recovery. Indian ambassador in UAE met Captain Mutcher in hospital and inquired about his well-being. Earlier, the ambassador also met his family and assured all possible support for the captain's health and well-being. The Indian Embassy in Abu Dhabi and Consulate in Dubai are in close touch with the local authorities in the matter. Union Home Affairs Minister Amit Shah today chaired a meeting in New Delhi to resolve the long-standing Mahanadi water dispute. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil, the Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha and other senior officials were present at the meeting. The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. The government has extended the validity of exempted fast tags from existing 1 year to up to 5 years for Divyangjan, depending on the degree of disability. The centre has revised the guidelines for issuance and renewal of the exempted fast tags for eligible Divyangjan and persons with disability beneficiaries. The guidelines will